और FM 100.5 MHz पर। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। सुबह के प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के

0: अलतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी। विषय है वर्मी कंपोस्ट। वाचन स्वर है अनीता तिर्की का।
2: केचुओं के द्वारा बनाए खाद को केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केचुए सूखे पत्ते, डंठल, जलकुंभी, गोबर या अन्य कार्बनिक पदार्थ को खाकर अपने पाचन के बाद जो अपचित पदार्थ है मल के रूप में बाहर निकालते हैं, इसे ही केचुआ खाद कहते हैं। यह केचुआ खाद बनाने हेतु इसिनिडिया फिटिडा तथा यूड्रिलस यूजुनो का प्रयोग होता है। यह केचुआ की प्रजाति है। केचुआ खाद में साधारण मिट्टी की अपेक्षा 5 गुना नाइट्रोजन, 11 गुना फास्फोरस, 7 गुना पोटास और 3 गुना मैग्नीशियम होता है। यदि खाद बनाते समय कार्बनिक पदार्थ में अजोला, एक जैविक खाद है, इसे मिला दिया जाए तब उसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसमें राख मिलाने से पोटाश की मात्रा बढ़ेगी और अम्लीय मिश्रण समायोजित रहेगा। केचुओं से कंपोस्ट बनाने की विधि इस तरह से है। केचुए से कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सुरक्षित छायादार जगह का चुनाव करना है। सुरक्षित स्थान का मतलब है वो स्थान जहां कीड़े मकोड़े या चिड़िया ना आए, क्योंकि ये केचुए का भोजन करते हैं। छायादार स्थान इसलिए क्योंकि केचुओं की बढ़ोतरी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छी तरह से होती है। कंपोस्ट के लिए 5 मीटर चौड़ी और 12 मीटर लंबी झोपड़ी नुमा छत बना दें। स्थान के चयन के बाद जमीन को साफ करके उसमें पानी से नम कर ले। 4 से 5 फीट चौड़ा और 10 से 15 फीट लंबी डंठल, सूखे पत्ते, गोबर व मिट्टी को आकार दे दे, शैया का आकार दे दे। शैया के लिए सर्वप्रथम सूखे पत्ते, डंठल, नारियल की पत्ती आदि की लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई सतह जो होगी 15 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है 1 मीटर और लंबाई करीब 10 मीटर वैसे बिछा दें। सूखे पत्ते डंठलों के सतह के ऊपर लगभग 5 सेंटीमीटर मोटाई तक, उसके बाद गोबर की खाद को बराबर मात्रा में मिला देना है, बिछा देना है। पानी से पत्ते की तरह नम करके 48 घंटे तक इसे छोड़ दें। अब इसमें केचुओं को उसके ऊपर समान रूप से 1000 से 1500 तक की संख्या में डाल दें। केचुए के स्तर के बाद फिर 15 सेंटीमीटर मोटी सतह के रूप में भुरभुरी मिट्टी को डाल देते हैं। इस मिट्टी के ऊपर गोबर की सलरी का फिर एक सतह डाल देते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर में भूसा, सूखे पत्तल, डंठल, उसकी एक सतह बिछा देते हैं। अब इस तैयार सैया को सुतली यानी जूट का बोरा से ढक दें और रोज सुबह शाम इस पर पानी

0: डालें ताकि बोरा हर समय नम रहे। सभी सतह को 15 से 20 दिन के बाद पलट दें तथा फिर बोरा से ढक दें और पानी से बोरा को नम कर दें। ये सब चीजें 60 से 70 दिनों में आपको करनी है और 60 से 70 दिनों के बाद खाद तैयार हो जाती है, उसे ही वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ का खाद कहते हैं। इसको बनाते समय कुछ सावधानियां भी रखनी है। सैया के किनारे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो केचुए जो है निकलकर बाहर भागने लग जाएंगे। और हमेशा गोबर के साथ साथ खरपतवार अवश्य दें ताकि खरपतवार मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखे, साथ ही साथ तापमान को नियंत्रित भी करके रखे। नमी 25 से 40 प्रतिशत तक बनाए रखना है। गोबर हमेशा 8 से 10 दिन पुराना या बायोगैस सैलरी का ही उपयोग करना है।
1: खेती किसानी में आप सुन रहे थे वर्मी को कंपोस्ट के बारे में, बता रही थी अनीता तिर्की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन।

0: इंसान की मौलिक इच्छाओं से पहली इच्छा भोजन की होती है। भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे एक ऐसा रसायन बनता है जो प्राण ऊर्जा बनकर संपूर्ण शरीर तंत्र का संचालन करता है। हमारे भोजन से ही प्राण शक्ति पैदा होती है जो शक्ति केंद्र को संचालित करती है। इसलिए भोजन का महत्व है और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हो। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन तीन प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन जहां मन को शुद्ध करता है, वहीं तामसिक और राजसिक भोजन मन में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा करते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसलिए आहार शास्त्र में सात्विक भोजन की सिफारिश की गई है और तामसिक तथा राजसिक भोजन से बचने का आग्रह किया गया है। एक दिन पवनार आश्रम में विनोबा भावे ने उपवास की उपयोगिता पर कहा कि भगवान महावीर ने जितने दिन खाया उससे अधिक दिन नहीं खाया, तभी वे अपनी साधना में सफल हो सके। भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मनियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है भोजन। भोजन सुस्ती लाता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि जो भोजन का संयम नहीं करता वो सुस्ती को कैसे मिटा सकेगा। जो आलस्य, सुस्ती और प्रमाद को नहीं मिटा पाता वो आत्मनियंत्रण कैसे कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं। यदि हम उन इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते तो इन इच्छाओं के आधार पर चलने वाली दूसरी जटिल इच्छाओं को भी कभी समाप्त नहीं कर सकते। जीने की कामना, भोजन की कामना, ये मौलिक इच्छाएं हैं। यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता तो इनके आधार पर चलने वाली अन्य जटिल इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक सबसे पहले अपनी मौलिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे, उन पर नियंत्रण करे। भोजन का संयम ना हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। भोजन में कम खाने का महत्व है। कहा गया है कि जितने आदमी भूख से मरते हैं उससे अधिक ज्यादा खाने से मरते हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है।
1: ये था आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। और आइए अब सुनते हैं आराधना। इसमें सबसे पहले हम सुनेंगे ये देशभक्ति गीत जो है अनूप जलोटा के स्वर में।

और अब इस देशभक्ति गीत के बाद हम याद करते हैं अपने ईश्वर को, अपने आराध्य देव को, जो कुछ भक्ति रचनाओं के जरिए। श्रोताओं, हमें ये बचपन से ही सिखाया जाता रहा है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम अपने भगवान को नमन करें, जिसने हमें ये खूबसूरत नया दिन दिया। और जब हम सच्चे मन से ईश्वर को स्मरण करते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत ही श्रेष्ठ हो जाती है।

प्रार्थना कीजिए इसलिए कि आप कुछ चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, पर इसलिए कि आप शुक्रगुजार हैं जो कुछ आपके पास है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड नंबर 158 158।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमक कर मुनियों के वस्त्र माला मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बताते चलें। सात बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। भेंटवार्ता का विषय होगा तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अभिजीत सिंह और भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। सात बजकर पंद्रह मिनट पर सुबह सुरीली, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सात बजकर पैंतालीस मिनट पर गांधी कथा, संकलन गौरव शिखर राय का और प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। आठ बजे समाचार प्रभात और आठ बजकर पंद्रह मिनट पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आठ बजकर तीस मिनट पर। आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर लोक रंग के अंतर्गत आप सुनेंगे संताली भाषा में लोकगीत, कलाकार होंगे मनोहर महतो और साथी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन आप सुनेंगे सुबह नौ बजे। नौ बजकर तीस मिनट पर शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आप सुनेंगे राग अल्हैया बिलावल में ध्रुपद गायन, रचना चार ताल में निबद्ध है, कलाकार सुरेश प्रसाद गुप्ता हैं। सुबह दस बजे कार्यक्रम होगा उर्दू कार्यक्रम, चर्चा होगी वन महोत्सव सप्ताह पर। सूत्रधार हैं हिदायतुल्ला और फौजिया तजी। प्रस्तुति होगी श्री प्रभु शरण की।

10:30 पर कार्यक्रम होता है जोहार रांची। 11:30 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद के अंतर्गत फरमाइशी गीत।

12 बजे गृहलक्ष्मी, चर्चा होगी बारिश यादों की बरसात और जानकारी होगी आयोडीन की कमी और उपाय के बारे में, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

दिन में 1:20 पर आप सुनेंगे अनुरंजनी, कलाकार होंगी शिप्रा बोस। सुगम संगीत आप सुनेंगे दिन में 1:45 पर।

0: और अब से अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र का प्रसारण।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुं आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मन्त्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मन्त्रिणाम् एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजितम्।

0: प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला 20-प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकै पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक को और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।

0: हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। भेंटवार्ता का विषय है तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अभिजीत सिंह और भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
2: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी कमी होती है तो फिर बहुत सारी परेशानियां आपके अंदर आने लगती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का सही ध्यान देते हैं और किसी भी नशा का सेवन नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए बिल्कुल स्वस्थ हैं। और कोई व्यक्ति यदि तंबाकू का सेवन करता है, पान बीड़ी गुटखा का सेवन करता है तो वो तो अपना नाश करता ही है और साथ साथ देश और समाज को भी गलत दिशा देने की कोशिश करता है। तो आज हम बात करेंगे कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है और कैसे हम इन बुराइयों से बचें। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर अभिजीत सिंह। आप कोऑर्डिनेटर हैं नशा मुक्ति केंद्र केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची। डॉक्टर अभिजीत स्वागत है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है, क्या सिनेरियो है भारतवर्ष में अभी?
3: अगर हम भारतवर्ष की सिनेरियो का बात करें तो ये जो तत्व हैं ये बहुत ही दर्दनाक हैं, क्योंकि देखा गया है कि 256 मिलियन लोग आज के समय में इस नशा का सेवन कर रहे हैं और हमारा भारतवर्ष इससे जूझ रहा है। इसमें जो तत्व है वो ये बताती है हमें कि जो युवा वर्ग हैं वो इस नशा का सबसे ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, जो 15 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो भी इस नशा का सेवन कर रहे हैं।
2: तो युवाओं की कितनी संख्या है जो तंबाकू बीड़ी पान गुटखा का सेवन करते हैं?
3: अगर हम सिर्फ भारत देश की बात करें तो इसमें 10% लोग जो हैं आज के समय में ये नशा का उपयोग कर रहे हैं, नशा का सेवन कर रहे हैं, जिसमें हमारा युवा वर्ग भी है और साथ साथ में छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है वो भी इस नशा का सेवन कर रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें कि इसके क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो सबसे पहले इसमें आते हैं फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें कि माउथ कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं देखी गई है, और साथ साथ में मेंटल प्रॉब्लम्स भी इसमें देखे गए हैं, जैसे कि इरिटेशन होता है, इरिटेबिलिटी होता है। और डेटा की बात करें अगर हम तो 256 मिलियन लोग इससे ग्रसित हैं आज के डेट में, और अगर हम डेथ की बात करें तो 10 में से 1 लोग आज के समय में टोबैको से मर रहे हैं या टोबैको के शिकार हैं। प्रतिदिन अगर हम बात करें तो 10 में से 5 लोग हैं जो कि टोबैको का शिकार हर दिन हो रहे हैं। जो छोटे बच्चे, युवा वर्ग के बच्चे हैं, वो अपने बड़ों को देखकर सीख रहे हैं नशा करना। स्कूल में दोस्तों के साथ पीयर प्रेशर में आके वो नशा कर रहे हैं। घर पे जब जा रहे हैं तो वो अपने बड़ों को देख रहे हैं, बुजुर्गों को देख रहे हैं, वो नशा ले रहे हैं, उन्हें देखकर वो नशा कर रहे हैं। इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज है वो होता है पहली बार यूज़ करना, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल फेज बोलते हैं, जहाँ पर हम दोस्तों के संगति में या किसी के संगति में आके पहली बार उस नशा को छूते हैं, चाहे वो सिगरेट हुआ, खैनी हुआ, तंबाकू, किसी भी तरह की नशा को। दूसरा जो फेज़ होता है वो होता है रिस्की यूज़, जहाँ पर हम उसके आदि हो जाते हैं, हमें वो करना अच्छा लगता है और फिर चाहे दोस्त रहे ना रहे हम उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। और जो आखिरी फेज़ है वो है डिपेंडेंट फेज़। इस फेज़ में आपको पता होता है कि नशा करने से आपको बीमारी हो सकती है, नशा करने से आपको शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी हम नशा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके हम आदि हो गए हैं, इसे हमें छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके 3 फेज होते हैं
2: जी। तो क्या क्या घातक परिणाम हो जाते हैं डॉक्टर साहब?
3: इसके परिणाम को अगर देखा जाए तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो परिणाम है वो है फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें कि मैंने पहले भी कहा कि माउथ कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ जो हैं वो हमें हमारे बच्चों के यहाँ हमें हो सकती है, और अगर मेंटल प्रॉब्लम की बात

0: करें तो उसमें इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीजों को भी के साथ भी हम जूझ सकते हैं।
1: शुरू शुरू में जो हमारे युवा साथी हैं इसको शौक के तौर पर अपनाते हैं कि चलो आज इसका हम सेवन कर लेते हैं, लेकिन यही शौक धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है और फिर वो विनाश की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा युवाओं का समूह है वो नशे के आदि हो चुका है, तो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए, कैसे हमारे युवा साथी इस गलत राह से दूर हों और राष्ट्र और देश की सेवा में अग्रणीय भूमिका निभाए।
0: अगर इस बड़े समस्या से हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका लिए हमें प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से आके मिले, आप संपर्क करें अपने जो आपके नज़दीकी नशा मुक्ति केंद्र है उसमें संपर्क करें। और इसका जो इलाज है ये दो तरीका से किया जाता है। पहला जो होता है ये होता है दवाई के थ्रू, जिसमें हम बहुत सारे एंटी क्रेविंग ड्रग्स देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा विंग है वो होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम थेरेपी देते हैं, जिसमें बहुत सारी थेरेपी, मोटिवेशनल इनहेंस थेरेपी, रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी, ये सब थेरेपी देख के हम इस चीज़ का इलाज करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दवा के साथ साथ थेरेपी दोनों एक साथ चलनी चाहिए, तभी जाके इस बड़ी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात कि यदि हम चाह लें कि हमें नशा नहीं करनी है, मन में एक आत्मबल हो, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल, अगर हम चाह लें, हमारा अगर मोटिवेशन स्ट्रांग हो जाए, हमारा विल स्ट्रांग हो जाए कि हमें छोड़ना है, तो फिर हर कुछ मुमकिन है। वो हम कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे।
1: सरकार भी काफ़ी पहल करती है इस ओर, जहाँ जहाँ विद्यालय है वहाँ के आसपास किसी भी तरह की दुकान तंबाकू की नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी योजनाएँ सरकार के पास है और क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, और साथ साथ समाज का इसमें कितना बड़ा भूमिका हो जाता है, खासकर हम घर परिवार की बात करें।
0: देश, समाज, परिवार तीनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं देश से स्टार्ट करूं तो बहुत सारे कार्यक्रम हमारे पास चल रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जहां पर सरकार योजनाएं बनाती हैं जिसके तहत, जैसे कि आपने कहा कि स्कूल के आसपास जो है वो कोई भी तरह का नशा का दुकान नहीं होना चाहिए, हाईवे में कोई भी तरह का नशा का दुकान नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े बैनर्स नहीं होने चाहिए नशा के। आजकल आप अगर आप ध्यान से सिगरेट के पैकेट को देखेंगे तो उसमें भी एक बड़े बड़े फोटो बने रहता है जिसमें लिखा रहता है कैंसर एक बीमारी है, घातक बीमारी है, और तो ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं। लेकिन बात है कि इस चीज़ से हमें जागरूक होना है कि देश हमारे साथ है तो हमें भी देश के साथ होके इस चीज़ से लड़ना है। जहाँ तक परिवार की भूमिका की बात आती है तो ये देखा गया है कि जो लोग बहुत अकेलेपन में रहते हैं वो नशा ज़्यादा करते हैं। हमारा ये कोशिश रहती है कि हम परिवार के साथ रहें, दोस्तों के साथ रहें, अच्छे संगति में रहें, ताकि हम इस चीज़ को छोड़ सके और जो अकेलापन है उससे हम दूर जा सके। अगर हम अकेला पर्सन दूर जाएंगे तो हम नशा को छोड़ सकते हैं
1: जी। और जब कोई बच्चा नशा का सेवन करता है तो उसके घर वाले का क्या भूमिका हो जाती है, उस पर कैसे एक नज़र रखें ताकि बच्चा इस ओर नहीं जाए?
0: बच्चे की जो भी दिनचर्या उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, माँ पिताजी को या जो भी घर में लोग रह रहे हैं, उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आ रही हैं, उसको समझना ज़रूरी है। और अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा नशा कर रहा है तो उसे मना करें, मना करने के साथ उसे एक रीज़न दे कि आप उसको क्यों मना कर रहे हैं। मारने से, डांटने से कुछ नहीं होगा, आप उन्हें समझाएं कि नशा करना क्यों खराब है। समझाएंगे तो बच्चा समझेगा, अगर आप मारेंगे तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा और आपसे दूर हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा है कि अकेलापन नशा का एक बहुत बड़ा पूरक है।
1: क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को, खासकर ऐसे युवा साथियों को जैसा आपने बताया कि प्रतिदिन 10 में से एक लोग इस बीमारी से जान गंवा बैठते हैं, तो क्या कहेंगे इस नशे से दूर हो, तम्बाकू बीड़ी गुटखा का सेवन जितनी जल्दी हो सके इससे हम दूरियां बनाएं।
0: इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा युवा वर्ग है वो दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। सिगरेट पीना, खैनी खाना कोई स्टाइल नहीं है। आप अपने करियर में आगे बढ़िए, देश समाज को आगे बढ़ाइए, वो आपका स्टाइल है। अगर आप सिगरेट पिएंगे, नशा करेंगे, तो आप अपने आप को तो खो रहे हैं, आपके साथ साथ हमारा जो समाज है वो अपनी जो ऊँचाई है उसको खो रहा है। हमारा युवा वर्ग हमारे देश का स्तंभ है, इसको कमज़ोर ना करें, नशा छोड़ें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एक खुशहाल जीवन को अपनाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत सिंह, नशा छोड़िए और एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़िए। आज आप ऐसे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम के बारे में। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अभिजीत सिंह और भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का सुबह सुरीली में। मैं हूं मीनाक्षी। श्रोताओं, सुबह की मधुर बेला, ये जो वक्त होता है ना, सबसे शांत, ऊर्जावान और सकारात्मक पल होता है। यह प्रकृति की ताजगी और मानसिक शांति का प्रतीक है। सुबह के समय उठने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह वो समय होता है जब वातावरण में शांति होती है, जिससे ध्यान लगाने और अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करने में हमें मदद मिलती है। ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट मानसिक तनाव को कम करके हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। इस समय की गई प्रार्थना, व्यायाम या अध्ययन हमारे मस्तिष्क को पूरे दिन तरोताजा रखते हैं। दिन की एक अच्छी शुरुआत हमें जीवन में अनुशासन और सफलता की ओर ले जाती है। तो आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाइए कुछ मधुर गीत संगीत के साथ।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी की चूड़ियां, इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत था सुधीर फड़के का और शब्द रचना थी पंडित नरेंद्र शर्मा की।
1: यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का सुबह सुरीली में। आइए अब सुनते हैं मान अभिमान फिल्म का ये गाना, येसुदास की आवाज में। रविंद्र जैन के बोल हैं और संगीत भी है रविंद्र जैन का।

रविंद्र जैन के गीत संगीत से सजा। एक और नगमा है राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

आप सुन रहे हैं सुबह सुरीली, और आइए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। एसडी बर्मन का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अभिमान।

लता मंगेशकर की आवाज़ में चुपके चुपके फिल्म से ये गीत था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और धुन बनाई थी SD बर्मन ने। और आइए अब सुनते हैं शागिर्द फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी कथा, संकलन है गौरव शिखर राय का और प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा, संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की। वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

सत्याग्रह का विचार पहली बार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही आया था। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, और सत्याग्रह आंदोलन का मतलब है सभी प्रकार के त्याग और कष्टों को झेलते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इसमें सामने वाले को चोट पहुंचाए बिना उसके मन में न्याय की भावना जागृत करना और उनका दिल जीतना, यही सत्याग्रह का मूल उद्देश्य होता है। और ऐसे सत्याग्रह करने वालों को सत्याग्रही कहा जाता है।

गांधी जी के अनुसार यह सत्य और अहिंसा से पैदा हुआ एक नैतिक बल है। इस सत्याग्रह को मध्यम बनाकर गांधी जी ने लोगों के मन के साथ साथ कई आंदोलन जीते। प्रस्तुत है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अंश। स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। सन 1915 के मई महीने की 25 तारीख के दिन सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। श्रद्धानंद जी की इच्छा थी कि मैं हरिद्वार में बसूं। कलकत्ते के कुछ मित्रों की सलाह बैद्यनाथ धाम में बसाने की थी। कुछ मित्रों का प्रबल आग्रह राजकोट में बसने का था, किंतु जब मैं अहमदाबाद से गुजरात आया तो बहुत से मित्रों ने अहमदाबाद पसंद करने को कहा और आश्रम का खर्च खुद ही उठाने का जिम्मा लिया। उन्होंने मकान खोज देना भी कबूल किया। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी कि चूंकि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहीं अधिक अच्छी तरह से हो सकेगा। साथ ही आशा भी थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। अहमदाबाद के मित्रों के साथ मैंने जो चर्चाएं की, उनमें अस्पृश्यों का प्रश्न भी चर्चा का विषय बना था। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि कोई योग्य अंतज्य भाई आश्रम में भर्ती होना चाहेगा तो मैं उसे अवश्य भर्ती करूंगा। आपकी शर्तों का पालन कर सकने वाले अंतर्जी कौन रास्ते में पड़े हैं? यूं कहकर एक वैष्णव मित्र ने अपने मन का समाधान कर लिया और आखिर में अहमदाबाद में बसने का निश्चय हुआ। मकानों की तलाश करते हुए श्री जीवनलाल बैरिस्टर का मकान

किराए पर लेने का निश्चय हुआ। श्री जीवनलाल मुझे अहमदाबाद में बसाने वालों में अग्रणी थे। तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रम का नाम क्या रखा जाए। मैंने मित्रों से सलाह की, कई नाम सामने आए, सेवाश्रम, तपोवन आदि नाम सुझाए गए थे। हमें तो सत्य की पूजा करनी थी, सत्य का शोध करना था, उसी का आग्रह रखना था। और दक्षिण अफ्रीका में मैंने जिस पद्धति का उपयोग किया था उसका परिचय भारतवर्ष को कराना था तथा यह देखना था कि उसकी शक्ति कहाँ तक व्यापक हो सकती है। इसलिए मैंने और साथियों ने सत्याग्रह आश्रम नाम पसंद किया। इस नाम से सेवा का और सेवा की पद्धति का भाव सहज ही प्रकट होता था। आश्रम चलाने के लिए नियमावली की आवश्यकता थी, अतएव मैंने नियमावली का मशविदा तैयार करने उस पर मित्रों की राय मांगी। बहुत सी समितियों में से सर गुरुदास बैनर्जी की समिति मुझे याद रह गई है। उन्हें नियमावली तो पसंद आई, पर उन्होंने सुझाया कि व्रतों में नम्रता की व्रत को स्थान देना चाहिए। उनके पत्र की ध्वनि यह थी कि हमारे युवक वर्ग में नम्रता की कमी है। यद्यपि नम्रता के अभाव का अनुभव मैं जगह जगह करता था, फिर भी नम्रता को व्रतों में स्थान देने से नम्रता की नम्रता न रह जाने का भय लगता था। सेवक के प्रत्येक कार्य में नम्रता न हो तो वह मुमुक्ष नहीं है, सेवक नहीं है, वह स्वार्थी है, अहंकारी है। आश्रम में इस समय लगभग 13 तमिल भाई थे। दक्षिण अफ्रीका से मेरे साथ 5 तमिल बालक आए थे और लगभग 25 स्त्री पुरुषों से आश्रम का आरंभ हुआ था। सब एक रसोई में भोजन करते थे और इस तरह रहने की कोशिश करते थे कि मानो एक ही कुटुंब के हों। आश्रम को कायम हुए भी कुछ ही महीने बीते थे कि इतने में जैसी कसौटी की मुझे आशा नहीं थी वैसी कसौटी हमारी हुई। भाई अमृतलाल ठक्कर का पत्र मिला। एक गरीब और प्रमाणिक अतंज परिवार है, वह आपके आश्रम में रहना चाहता है, क्या उसे भर्ती करेंगे? मैं चौंका। ठक्कर बाबा जैसे पुरुष की सिफारिश लेकर कोई अतंज परिवार इतनी जल्दी आएगा, इसकी मुझे जरा भी आशा न थी। मैंने साथियों को वह पत्र पढ़ने के लिए दिया, उन्होंने उसका स्वागत किया। भाई अमृतलाल ठक्कर को लिखा गया कि यदि वह परिवार आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार हो तो हम उसे भर्ती करने के लिए तैयार हैं। दादा भाई, उनकी पत्नी, दानी बहन और दूध पीती तथा घुटनों चलती बच्ची लक्ष्मी तीनों आए। दूधा भाई बंबई में शिक्षक का काम करते थे, नियमों का पालन करने को वे तैयार थे, उन्हें आश्रम में रख लिया। सहायक मित्र मंडल में खलबली मच गई। जिस कुएं के बंगले के मालिक का हिस्सा था उस कुएं से पानी भरने में हमें अड़चन होने लगी। चरस वाले पर हमारे पानी के छींटे पड़ जाते तो वह भ्रष्ट हो जाता। उसने गालियां देना और दूधा भाई को सताना शुरू किया। मैंने सबसे कह दिया कि गालियां सहते जाओ और दृढ़ता पूर्वक पानी भरते रहो। हमें चुपचाप गालियां सुनते देखकर चरस वाला शर्मिंदा हुआ और उसने गालियां देना बंद कर दिया, पर पैसे की मदद बंद हो गई। जिन भाई ने आश्रम के नियमों का पालन करने वाले अंत्यजों के प्रवेश के बारे में पहले से ही शंका की थी, उन्हें तो आश्रम में अत्यंत के भर्ती होने की आशा ही न थी। पैसे की मदद बंद होने के साथ बहिष्कार की अफवाहें मेरे कानों तक आने लगी। मैंने साथियों से चर्चा करके तय कर रखा था, यदि हमारे बहिष्कार किया जाए और हमें मदद न मिले तो भी अब हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे, अत्यंजों की बस्ती में जाकर उनके साथ रहेंगे और कुछ मिलेगा उससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे। आखिर मगनलाल ने मुझे नोटिस दी, अगले महीने आश्रम का खर्च चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं।
मैंने धीरे से

जवाब दिया, तो हम अत्यंजों की बस्ती में रहने जाएंगे। मुझ पर ऐसा संकट पहले ही बार नहीं आया था, हर बार अंतिम घड़ी में प्रभु ने मदद भेजी है। मगनलाल की नोटिस देने के बाद तुरंत ही एक दिन सवेरे किसी लड़की ने आकर खबर दी, बाहर मोटर खड़ी है और एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटर के पास गया। सेठ ने मुझे से पूछा, मेरी इच्छा आश्रम को कुछ मदद देने की है, आप लेंगे? मैंने जवाब दिया, अगर आप कुछ देंगे तो मैं जरूर लूंगा। मुझे कबूल करना चाहिए कि इस समय मैं आर्थिक संकट में भी हूं। मैं कल इसी समय आऊंगा, तब आप आश्रम में होंगे। मैंने हाँ कहा और सेठ चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर मोटर का भोंपू बोला। लड़कों ने खबर दी, सेठ अंदर नहीं आए। मैं उनसे मिलने गया, वे मेरे हाथ पर 13,000 के नोट रखकर विदा हो गए। मैंने इस मदद की कभी आशा नहीं रखी थी, मदद देने की यह रीति भी नहीं देखी। उन्होंने आश्रम में पहले कभी कदम नहीं रखा था। मुझे याद आता है कि मैं उनसे एक ही बार मिला था, न आश्रम में आना, न कुछ पूछना, बाहर ही बाहर पैसे देकर लौट जाना, ऐसा यह मेरा पहला अनुभव था। इस सहायता के कारण अत्यंजों की बस्ती में जाना रुक गया। मुझे लगभग एक साल का खर्च मिल गया, पर जिस तरह बाहर खलबली मची, उसी तरह आश्रम में भी मची। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में मेरे यहाँ अत्यंज यदि आते रहते थे और भोजन करते थे, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ अत्यंज कुटुंब का आना मेरी पत्नी को और आश्रम की दूसरी स्त्रियों को पसंद आया। दानी बहन के प्रति घृणा नहीं हो तो उनकी उदासीनता ऐसी थी जिसे मेरी अत्यंत सूक्ष्म आंखें देख लेती थी और तेज कान सुन लेते थे। आर्थिक सहायता के अभाव के डर ने मुझे जरा भी चिंतित नहीं किया था, पर यह आंतरिक शोक कठिन सिद्ध हुआ। दानी बहन साधारण स्त्री थी, दूधा भाई की शिक्षा भी साधारण थी, पर उनकी बुद्धि अच्छी थी, उनका धीरज मुझे पसंद आया। उन्हें कभी कभी गुस्सा आता था, पर कुल मिलाकर उनकी सहन शक्ति की मुझ पर अच्छी छाप पड़ी थी। मैं दूधा भाई को समझाता था कि वे छोटे मोटे अपमान पी लिया करें, वे समझ जाते थे और दानी बहन से भी सहन करवाते थे। इस परिवार को आश्रम में रखकर आश्रम ने बहुतेरे पाठ सीखे हैं और प्रारंभिक काल में ही इस बात के बिल्कुल अस्पष्ट हो जाने से ही आश्रम में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। आश्रम की मर्यादा निश्चित हो गई और इस दिशा में उसका काम बहुत सरल हो गया।

गांधी जी का लक्ष्य गलत करने वालों के विचार में बदलाव लाना था, ना कि उन्हें हराना, ताकि उनका विचार अच्छा हो जाए और वे अच्छा करें। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन में अहिंसा को सक्रिय हथियार बनाया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति थी गौरव शिखर राय की और वाचन स्वर था अवनीश कुमार सिन्हा का।
1: आप सुन रहे थे गांधी कथा, संकलन गौरव शिखर राय का और प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब थोड़ी ही देर में यानी 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15-27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के

0: पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Abhi.

0: Strategic Ties, leads the Statesman. Financial Express, in his editorial piece, Take Charge, writes, UPI can learn from Brazil's PIX, which exempts smaller merchants while allowing charges for larger businesses. The paper elaborates, a decade after its launch, the Unified Payments Interface, UPI, has become one of India's greatest digital public infrastructure success stories. The numbers continue to astonish. In June alone, UPI processed transactions worth 28.9 lakh crore rupees, about 20% higher than a year earlier, while average daily volumes touched a record 757 million. Digital payments have become an integral part of everyday commerce, from roadside vendors to organized retailers. Yet, beneath this spectacular growth lies a structural concern. Just two players, PhonePe and Google Pay, account for around 80% of all UPI transactions. Crude declines, but government hints won't cut fuel rates, reports the Tribune. Monsoon finally arrives in Delhi, ending weeks of heat and humidity, states the Pioneer. Sirsa Kino earns GI tag, decade of scientific farming bears fruit, informs the Tribune. And finally, simple but effective, Citizen Kane is fueling England's World Cup dreams, writes Hindustan Times about England's football skipper, Harry Kane. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shubhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at the FIFA World Cup. And BCCI announced a schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। छोटे प्रखंडों और अंचलों में अब एक ही पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी। झारखंड में एसआईआर अभियान के दौरान 50,000 कर्मियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लंबे समय तक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे से बचाए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घर पहुंचे। श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार। और झारखंड में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश और अगले दो दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 से कम पंचायतों वाले प्रखंडों और अंचलों में एक ही पदाधिकारी बीडीओ या सीओ के रूप में कार्य करेंगे, जबकि 12 से अधिक पंचायतों वाले प्रखंडों में दोनों पद यथावत रहेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी मतदाताओं से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
3: हम लोगों ने उसके नीतिगत रूप से सहमति भी दे दिया। स्पेशल प्रोविजन भी हम लोगों ने इसमें डालने का सहमति दिया। आप लोगों से तत्काल अब तैयारी चल रही है। समय आने वाला है। मैंने भी फॉर्म भरा। चुनाव आयोग पूरे देश के कई राज्यों में एसआईआर का काम आरम्भ। और मैं भी आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग इसका हिस्सा बने और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें।
2: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे करीब 50,000 कर्मियों और पदाधिकारियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि 7 अक्टूबर तक SIR कार्य में लगे किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का तबादला

0: फैसला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों और हेल्प डेस्क मैनेजरों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मिल रही शिकायतों के निवारण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी मतदाता को फॉर्म भरने या एसआईआर से जुड़ी कोई समस्या है तो वे टोल फ्री नंबर 1950 या बुक अ कॉल के जरिए संपर्क करें। मतदाता अपने बीएलओ से एसआईआर स्टिकर पर दिए गए नंबर, ईसीआई नेट ऐप पर बुक अ कॉल और कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स फीचर टोल फ्री नंबर 1950 या सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रांची के कांके में कांग्रेस की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर बैठक हुई। इसमें झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बीएलओ के साथ अभियान की समीक्षा की। मौके पर राजू ने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को जागरूक कर विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की।
1: कांग्रेस पार्टी हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, हर एक बूथ में वो एसआईआर प्रोसेस में बहुत अच्छी तरफ तैयार हुआ। लास्ट 6 महीने में ये प्रक्रिया के बारे में हम हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में बहुत अच्छी तरफ ट्रेनिंग दिया।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने पेंशन लाभ से जुड़े एक मामले में कहा है कि एडहॉक आधार पर लंबे समय तक कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया कि दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को केवल अस्थायी होने के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों तथा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर यह फैसला सुनाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे से रेस्क्यू किए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने विशेष राहत अभियान चलाकर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की, जबकि मृतका का पार्थिव शरीर भी सम्मानपूर्वक उसके गृह जिला पहुंचाया गया। सुरक्षित घर लौटने पर श्रमिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। झारखंड सरकार आगामी 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में औद्योगिक निवेश, आईटी, एआई, ई गवर्नेंस और पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं पर फोकस होगा। सचिव आईटी पूजा सिंघल और सचिव उद्योग अरवा राजकमल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। 2 दिवसीय आयोजन के दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जीआरडा रेगुलेशन और पीपीपी पॉलिसी समेत कई नीतियों के ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे और विभिन्न एमओयू पर हस्ताक्षर और डिजिटल पोर्टल्स की लॉन्चिंग होगी। गुमला सदर अस्पताल के ब्लड सेंटर को नई अनुज्ञप्ति मिल गई है। जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने इसे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि करीब 6-7 महीने के प्रयास के बाद लाइसेंस मिलने से अब जिले में रक्त उपलब्धता की समस्या दूर होगी।
2: सदर हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर पूर्व में वर्ष 2018 से चल रहे थे और 2022 में इसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने के कारण समाप्त हो गई थी। ब्लड सेंटर तो चल रहा था लेकिन अनुपति नहीं थी, जो बंद होने के उपरांत हमारे जिला में ब्लड को लेकर काफी परेशानी होने लगी।
0: रांची में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने कल रात कई बार और पब में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन स्थानों पर नाबालिगों का प्रवेश न हो और किसी भी तरह की अवैध या आपराधिक गतिविधियां न होने पाए।
3: स्पेशली जो अंडर एज ड्रिंकिंग है, कोई भी बच्चा अगर 21 साल से कम का है तो उसे किसी भी शॉप में या फिर वहाँ पे, चाहे वो सिगरेट हो या फिर लिकर हो, सब नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही है क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति सेवन करता है तो और रोड पे निकलता है, बाइक को चलाता है, उस टाइम पे एक्सीडेंट होने की भी चांसेस रहती है। तो एक लूप है, उसमें एक बच्चा कुछ भी गलत काम करता है तो उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा दायित्व बनता है कि उनसे इन सब चीजों में ना पड़ने दिया जाए और उनकी मदद की जाए इस तरह से।
0: झारखंड में मॉनसून सक्रिय होने से बारिश की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले तीन दिनों में राज्य में औसतन 40 मिनट वर्षा दर्ज की गई, जिससे बारिश की कमी घटकर 61% से 46% रह गई है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत कई जिलों में बारिश तथा अगले दो दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अखबारों की सुर्खियां, रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्री परिषद की बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, रिम्स 2 दो चरणों में होगा विकसित, 2800 बेड का होगा अस्पताल। प्रभात खबर की सुर्खी है, जमशेदपुर में हुए हिमांशु हत्याकांड के विरोध में आज भाजपा ने बुलाया बंद। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले मामले में दो आरोपी एनआईए की रिमांड पर। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति पर चल रहा है विचार। और अब अंत में मुख्य समाचार, झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, छोटे प्रखंडों और अंचलों में अब एक ही पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी। झारखंड में एसआईआर अभियान के दौरान 50,000 कर्मियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबे समय तक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे से बचाए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घर पहुंचे, श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार। और झारखंड में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश और अगले दो दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है।

भी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण मीनाक्षी के साथ।

श्रोताओं, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत हमारी भावनाओं को एक नई भाषा देता है, और इसकी खासियत भी यही है कि खुशी, दुख, प्रेम और उत्साह, हर तरह की भावना हम इसके जरिए व्यक्त कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का रसरंजन में। मैं हूं मीनाक्षी।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ताल फिल्म का ये गाना था, ए आर रहमान का संगीत और बोल थे आनंद बख्शी की।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं रस रंजन। आजा नचले अगला गाना इसी फिल्म से है, राहत फतेह अली खां की आवाज है, संगीत है सलीम सुलेमान का और गीत लिखा है जयदीप साहनी ने।

रसरंजन का अगला गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, उदित नारायण की आवाज है, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम पापा कहते हैं।

और अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गाना। अनु मलिक का संगीत है और मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल।

और अब रस रंजन कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश है कुमार सानू की आवाज में। जतिन ललित का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, फिल्म का नाम कभी हाँ कभी ना।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आप सुनेंगे राग अल्हैया बिलावल में ध्रुपद गायन, रचना चार ताल में निबद्ध है। कलाकार हैं सुरेश प्रसाद गुप्ता, संगतकार हैं पखावज पर रामवचन पाठक और हारमोनियम पर हैं गायत्री चक्रवर्ती।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग अलहया बिलावल में ध्रुपद गायन, रचना चार ताल में निबद्ध थी। कलाकार थे सुरेश प्रसाद गुप्ता, संगतकार थे पखावज पर रामवचन पाठक और हारमोनियम पर थे गायत्री चक्रवर्ती। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, आपको बताएं कि 3 जुलाई को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने और लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है और ये एक बड़ा खतरा बना हुआ है, तो हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना होगा। श्रोताओं, हमें जागरूक होना होगा।

आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। चर्चा का विषय है वन महोत्सव सप्ताह। सूत्रधार हैं हिदायतुल्ला और फौजिया तजी, और कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

आकाशवाणी रांची से नशर उर्दू प्रोग्राम में हम अपने तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करते हैं। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपके दोस्त फौजिया तजीन। सामईन को प्यार भरा आदाब।

0: जी हाँ,
1: तो ये जरूरी है कि हम अपना खास ख्याल रखें। ये कहा जाए कि बहुत सारी बीमारियों का दस्तक होता है।
0: बिल्कुल। तो सामईन, आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मौसम में बरसात में होने वाली बीमारियों से आप कैसे बचें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है फौजिया, और इसके लिए एक तरह से बेदारी पैदा करना नहायत ही जरूरी है। मौसम बरसात में आम तौर से छतों के ऊपर पानी का जमाव होता है, पानी का संचार सही नहीं होता है, तो उसके वजह से मलेरिया के, डेंगू के बहुत सारे मच्छर जो है ना जन्म लेते हैं।
0: बरसात में हिदायतुल्लाह, सबसे पहले तो इन मच्छरों से और मक्खियों से ही बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं, तो हम अपने सामईन से यही कहेंगे कि वो पानी का जमाव जो होता है उसे ना होने दें। और हम ये भी कहना चाहेंगे अपने सामईन से कि आप ज्यादातर हो सके तो आप घर के खाना खाने की कोशिश करें, बाहर के खाने से बचें, क्योंकि बाहर ठेले पर जो इतनी सारी मक्खियां भनभनाती हैं उससे बहुत सारे जरासीम होते हैं जो हमारे अंदर चले जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल फौजिया, ये बात तो है, इन साथ में ये बात भी है कि अगर आप अपने घर का भी खाना खाएं तो कोशिश करें कि ताजा खाना बनाकर ही खाएं, और अपने घरों को फेनाइल से जरूर पोछा लगाएं, यूं ही पानी से पोछा ना लगाएं। बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है होते हैं कोने में इधर उधर, तो जरूरी है कि पानी में फेनाइल डाल दें। और एक चीज और फौजिया हम अपने सामीन को कहना चाहेंगे, अपनी बहनों को, अपनी माओं को कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में जो बर्तन मलते हैं और उसका जो स्कॉच होता है उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप उस स्कॉच को हफ्ता रोज से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, या ये कहा जाए कि आप उसको इस्तेमाल करने के बाद एक बार खौलते हुए पानी में जरूर डालें,
0: या उसको सुखा कर रखें, नम रखने से भी उसमें
1: बिल्कुल सख्त धूप में जो है रखा जाए। जी
0: तो ये सब तो बातें हो गई हिदायतुल्लाह, अब हम बातें करते हैं हमारे 1 से 7 जुलाई तक हम मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह। तो सामईन, वन महोत्सव पेड़ों का एक बहुत बड़ा त्योहार है जो हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इसका आगाज 1950 में कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी ने किया था, ताकि लोगों में जंगलात की हिफाजत और शजरकारी यानी कि पेड़ लगाने के तई बेदारी पैदा की जा सके। इस खास मौके पर लाखों नए पौधे लगाए जाते हैं जिससे हमारी जमीन सरसब्ज और शादाब बनती है। वन महोत्सव हमें ये पैगाम देता है कि पेड़ पौधे न सिर्फ माहौलियात तवाजुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, बल्कि इंसानी जिंदगी की बका और आलूदगी के खात्मे के लिए भी बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल फौजिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इंसान तरक्की की आंधी और तरक्की के राह पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन इन तरक्की की राह में वो सबसे बड़ी जो गलती कर रहा है कि जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, और उसकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जा रही हैं। बेशक आप तरक्की के चाहे जिस पायदान पर कदम रख दें, लेकिन आप ये याद जरूर रखें कि अगर हमें ऑक्सीजन मिलता है तो पेड़ पौधों और हरियाली से ही मिलता है, और यही पेड़ पौधे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करते हैं। इस तरह से हमारी माहौलियात खूबसूरत बनती है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अच्छी रहें, सेहतयाब रहें, तो पेड़ पौधों की कटाई के बजाय आप उस पौधों को लगाने में ज्यादा तवज्जो दें।
0: बिल्कुल, मैं तो अपने सामईन से ये कहूंगी कि आप कोई भी खुशियां मनाते हैं, जैसे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो या कुछ भी आप करते हैं, तो उसमें आप ये एहतमाम करें कि एक पौधा भी आप जरूर लगाएं, ताकि वो एक तनावर दरख्त हो जाए जिससे हमारा माहौल खुशगवार हो, हमारे माहौल में आलूदगी कम हो, जो हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत बेहतर और कारामद होगी।
1: ये तमाम बातें तो है फौजिया, और हम और भी बातें करेंगे अपने सामईन से, लेकिन हम अपने सामईन को अभी लिए चलते हैं एक खूबसूरत नगमे की तरफ।
0: तो सामईन, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज चर्चा हो रही थी वन महोत्सव सप्ताह पर। सूत्रधार थे हिदायतुल्ला और फौजिया ताजीन और कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सभी दोस्तों को रेणु
1: और मीनाक्षी का नमस्कार
0: जोहार। तो मीनाक्षी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।
1: हाँ हाँ, और हमारे श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम का इंतजार रहता होगा।
0: हाँ, सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपने अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां और के नाम करना भी जिंदगी है।
1: वाह, सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है।
0: हाँ,
1: और अपनी खुदगर्जी पर गुरूर करके भी क्या हासिल होगी, कभी औरों के दर्द को अपना समझना भी जिंदगी है।
0: रास्ता भले बड़ा हो, छोटी शुरू हो, वो मायने रखती है।

0: मीनाक्षी, सुबह सुबह मौसम कैसा लग रहा था?
1: हाँ, मौसम में बदलाव तो है ही,
0: काफी बदलाव
1: और अभी सुनने को आ रहा है कि काफी जगहों पर बारिश हो रही है, यानी मॉनसून अब अपना रंग दिखा रहा है,
0: सक्रिय हो गया है। और जुलाई महीने में कहा जा रहा है कि उतार चढ़ाव मौसम के होंगे, कभी झमाझम बारिश तो कभी
1: हाँ, और जैसे कि आज से ही यानी 3 जुलाई को ही उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से महीने के पहले 10 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होगी, ऐसा अनुमान है। और लगातार बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट भी आएगी और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।
0: हाँ, हालांकि ये ब्रेक भी हो सकता है मीनाक्षी, क्योंकि लोगों का उमस का भी सामना करना पड़ सकता है जुलाई महीने में, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार पूरे जुलाई महीने के दौरान सामान्य और सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। शुरुआती 1.5 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन इसके बाद वर्षा की गतिविधियां में कमी आ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अलनीनो की स्थिति है, जिसका असर मानसून की रफ्तार पर पड़ सकता है। इससे किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।
1: हाँ, अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।
0: हाँ, तो मौसम का जो भी उतार चढ़ाव होता रहे, हम लोग को तो गीत संगीत की दुनिया में चलना है और झूमते रहना है।
1: बिल्कुल, मौसम और
0: हाँ
1: और

0: आप कुछ बोलना चाह रही हैं?
1: हाँ, कह रहे ना कि मौसम की बात करते हैं, तो थोड़ा ये मौसम जो सुहाने आ गए हैं अभी आज का दिन, तो उसपे एक गीत संगीत सुनते हैं
0: और फिर होने के बाद मौसम ऐसे
1: हाँ, उसके बाद फिर जानते हैं कि इसका आनंद और किसको किसको हो रहा है।
0: तो क्यों ना श्रोताओं को पहले गीत सुनवा दें।
1: हाँ।

0: मौसम की बात हो रही है रेणु दी,
1: हाँ।
0: तो हम एक ये भी बात अपने श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे कि वर्षा की फुहारों के बीच झारखंड में जीवंत होती है रोपा गीतों की परंपरा,
1: हाँ।
0: जो कि बहुत ही एक अच्छी परंपरा है और ये गांवों में ज्यादा देखने को मिलती है ये परंपरा, और हमारे झारखंड में तो
1: विशेष
0: बिल्कुल गीतों के साथ जो ये रोपा होता
1: गीत,
0: है
1: रोपा गीत लोग आते हुए झूमते हुए गाते हैं,
0: उसकी खूबसूरती ही
1: अलग है, एक उत्सव माहौल रहता है।
0: आसमान में काले बादल उमड़ते ही और बारिश की पहली बूंदों के साथ ही झारखंड के खेतों में रोपा गीत गूंजने लगते हैं। यह इस बात का प्रतीक भी है कि हमारे राज्य में खेती केवल अन्न उगाने का जरिया नहीं बल्कि लोक संस्कृति और सामाजिक एकता का एक खूबसूरत उत्सव है।
1: हाँ, और ये संस्कृति के जानकारों का कहना भी है कि आज के दौर में इन पारंपरिक गीतों को बचाना बेहद जरूरी है। ये गीत महज मनोरंजन नहीं है बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर, सामुदायिक एकजुटता और ग्रामीण जीवन की जीवंत पहचान है। सच में एकजुट होकर लोग कितना अच्छा लगता है ना, एकजुट होकर गाते हैं बजाते हैं।
0: हाँ, एक परिवार जैसे मतलब मिलना जुलना होता है, गीत गाते हैं तो ये पुरानी यादें भी ताज़ा
1: होती है। गीतों के जरिए ही सब जो किसान भाई बहन हैं अपने सुख दुख उल्लास और जीवन के गहरे अनुभवों को बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं। सच कहें तो ये गीत और संगीत ही हमारी माटी की असली आत्मा है। और इसी तरह से कई जैसे कि नागपुरी हैं, खोरठा हैं, पंचपरगनिया हैं, सब में अपनी अपनी गीतों की अपनी एक
0: एक भाषा की अलग अलग
1: खूबसूरती है।
0: और इसी से हमारे झारखंड की पहचान भी है।
1: हाँ, गीतों में मौजूद समृद्ध लोक संस्कृति की झलक भी मिलती है। तो भाई बारिश तो हो ही रही है और फिर भी इन गीतों के माध्यम से लिए हम लोग
0: बिल्कुल हम अपने श्रोताओं को एक गीत जरूर सुनवाएंगे।
1: हाँ।

0: मेघ बारिश बादल, यानी ये सब हैं पर्यावरण से जुड़े
1: हुए। सच में अभी तो ये सप्ताह भी चल रहा है ना,
0: वन पर्यावरण सप्ताह।
1: हाँ, वन महोत्सव का क्या चल रहा है जो, तो उसमें भी है कि हम लोगों को क्या करना है।
0: वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है।
1: हाँ, तो ये जो पृथ्वी है ना मीनाक्षी, वो हमारा बड़ा घर है। अपने घर की तरह इसे भी साफ सुथरा रखना है।
0: बिल्कुल, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर को के कचरे को बुहार देते हैं, लेकिन अपने बड़े घर यानी पर्यावरण को दूषित हम करते जा रहे हैं।
1: हाँ,
0: तो ये तो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है।
1: खतरा है, और
0: सचेत होने की जरूरत है।
1: हाँ, हरियाली आएगी कैसे जब हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, अच्छे से उसका रोपण नहीं करेंगे, तो
0: बहुत जरूरी है ये रेणु दी।
1: हाँ,
0: इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो जो घर होती है हमारी चार दीवारी होती है, जिसे हम अपना घर मानते हैं, उसमें हम सारी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, और इसी तरह हमारा एक बड़ा घर है जिसे हम धरती का वातावरण कह सकते हैं, जो वो भी हमारा एक बड़ा घर है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है।
1: सच में
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम सूर्य की तेज किरणों से भी नहीं बच पाएंगे, और इसके अलावा तेज़ हवा है या फिर प्राकृतिक कोई भी आपदा विपदा है, तो हमें ये जो पर्यावरण है ये हमें

0: सुरक्षित करता है।
1: हाँ सच में, लेकिन इसके बावजूद एक कारण और है कि हम अपने इस बड़े घर को ध्यान नहीं रखते। कारण होता है यदि पर्यावरण में बहुत अधिक गर्मी हो जाए, बहुत अधिक ठंड पड़ जाए या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो उसका असर हम पर पड़ता है। कुल मिलाकर पर्यावरण में कुछ भी होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं ना उसका प्रभाव भी पर्यावरण पर ही पड़ता है।
0: इसीलिए कहते हैं कि संतुलन, पर्यावरण का जो संतुलन है वो बेहद जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ेगा तो उसका प्रभाव जाहिर है कि हमारी जिंदगी पर पड़ेगा।
1: सच में ये पर्यावरण जो है ना, हमारा ये जो हमारा बड़ा घर है, जो पृथ्वी हमारा बड़ा घर है, हमें जीवन देता है। यही हमें हवा देता है, पानी देता है, भोजन देता है और जीवन जीने योग्य परिस्थितियां प्रदान करता है। लेकिन बदले में हम इसे क्या देते हैं? बस इसे गंदा करते हैं,
0: इसका संरक्षण नहीं कर पाते।
1: हाँ।
0: जो कि हमारे लिए ही ये नुकसानदेह
1: है और इससे जो होता है धरती के तापमान को बढ़ाने का काम भी करता है।
0: पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ लग नहीं रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। गर्मी बढ़ रही है और ग्लेशियर्स के हैं, जितने बर्फ हैं वो पिघलते जा रहे हैं, तो इसका असर वो हमें मौसम पर भी इसका असर दिखता है।
1: हाँ, जो भी हम लोग है, जो कचरा जो होता है हम धरती पर फेंक रहे हैं, उसकी सजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है।
0: उसका निपटान भी बहुत सही तरीके से,
1: जैसे हम लोग आज के लिए सोचते हैं कि आज हम लोग पानी बर्बाद किए, जिस तरह से हम लोग जी लिए, लेकिन भविष्य के बारे में हम लोग नहीं सोच पाते कि आने वाली पीढ़ी भविष्य में उसका क्या होगा।
0: तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें सोचना,
1: ध्यान में रखना होगा और घर को, वातावरण को, धरती को पेड़ पौधों से सजाना होगा।
0: बिल्कुल रेणु दी, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम अपने घर को सुरक्षित रखते हैं, घर में सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह हम अपने वातावरण को, अपने पृथ्वी को भी सुरक्षित रखें और इस तरह इस काबिल रखें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका
1: आनंद ले सके
0: और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सके।

0: हाँ रेणु दी, और एक और आज खास दिन है जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी है आज।
1: हाँ सच में, ये तो पूरा वैश्विक पहल का उद्देश्य भी है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग को उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना है और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है।
0: क्योंकि प्लास्टिक तो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ये हम सभी जानते हैं, तो उसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं ये भी अपने श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ सच में, जैसे हम कहीं बाजार ही जाते हैं ना, तो कपड़े का या जूट का थैला लेकर जाएं। अधिकांशतः क्या कि हम लोग अगर अपने मन से ये काम करेंगे और तो वो होगा। एक दिन के लिए लोग कहता है कि चलो एक दिन मान लेते हैं, लेकिन एक दिन का ये दिन नहीं, दिवस नहीं है, ये पूरे सालों हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं।
0: ये तो जागरूक करने के लिए या फिर याद दिलाने के लिए लोगों को ये दिन मनाया जाता है, लेकिन ये तो हमें अपने अपने बिल्कुल अपने हमें अपनी आदत में ये इसको
1: शामिल कर लें। कहीं भी निकल रहे हैं स्कूटी दोपहिया से या चारपहिया से, एक कैरी बैग, कपड़े का झोला या जूट का झोला अपने साथ जरूर ले जाएं। अब वहां नहीं मिलता है, लाचार होके वो भी नहीं भी देता है तो बोले दे दो दुकान वाले से, लोग

0: कि इसे अब आप अपनी आदत बना लें कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, और उसके दूसरे विकल्प हेल्दी विकल्प जो भी हैं वो
1: थैला उला लेकर अपने घर से निकले। हम और आप जब जागरूक होंगे ना मीनाक्षी, तभी ये पर्यावरण संरक्षण में ये हमेशा योगदान होगा। हमारा भी योगदान इसमें चाहिए, सबका योगदान चाहिए। छोटे बच्चों को ये बात सिखाएं
0: और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को त्यागना होगा, और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना ही सबका सबको बेहद जरूरी है।
1: हाँ, जैसे पहले बीच में होता था ना, पेपर का दोना है, ये पत्तल का दोना, ये सब यूज होता था, और बीच में अच्छा
0: लगा। अब फिर से इसका ये जो
1: एकल प्लास्टिक वाला, एकल प्लास्टिक वाला आने लगा कि फल सब
0: लेकिन जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे इसका फिर से ये परंपरा में आ रही है।
1: हाँ, समय लगेगा। तो प्लास्टिक को अपने जैसे है कि प्लास्टिक को ना कहें, पर्यावरण को बचाएं, कुछ कदम बढ़ाइए, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कीजिए,
0: और धरती की पुकार सुनिए, प्लास्टिक के को बहिष्कार कीजिए,
1: कपड़े का थैला अपनाया जाए और प्लास्टिक को दूर भगाया जाए।
0: बिल्कुल।

0: और अब जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का।
1: हाँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हैं।
0: बिल्कुल, इतिहास के पन्ने में देखते हैं कि आज प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं।
1: हाँ,
0: तो 1908 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। आज के दिन यानी कि आज है 3 जुलाई।
1: हाँ, और 1886 ईस्वी में रामचंद्र दत्तात्रेय अरानाडे का जन्म हुआ, जो दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे।
0: और 1941 ईस्वी

0: में अदूर गोपाल कृष्णन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ।
1: हाँ, और 1952 में रहिंगटन मिस्त्री का जन्म हुआ, जो प्रख्यात भारतीय कैनेडियन उपन्यासकार हैं। और 1979 में आरती सिंह राव का जन्म हुआ, जो भारतीय निशानेबाज हैं। उन सबको देते हैं जन्मदिन की बधाई। और भारत की बेटी पे, हाँ, भारत की बेटी पे ऐसे भी हम लोग को हमेशा गर्व रहा है।
0: बिल्कुल।

0: आज के दिन मीनाक्षी 1897 ईस्वी में हंसा मेहता का जन्म हुआ, जो भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थी।
1: और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हबीब उर रहमान लुधियानवी का जन्म भी आज के दिन 1892 ईस्वी में हुआ था।

0: और 1969 ईस्वी में दिगेंद्र सिंह का जन्म हुआ, जो महावीर चक्र से सम्मानित वीर भारतीय सैनिक हैं। अब नमन करते हैं उन्हें जो आज के दिन हम लोग से विदा हुए। 1948 ईस्वी में मोहम्मद उस्मान शहीद हुए, भारतीय सेना के उच्च अधिकारी जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध में शहीद हुए।
1: 1982 में केदार पांडे का भी निधन आज के दिन हुआ।
0: 1920 में सरोज खान का निधन हुआ, जो प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर थी।
1: अच्छा,
0: 1999
1: 2020 में और 1999 में मनोज कुमार पांडे भी आज के दिन शहीद हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे भारतीय सेना के अधिकारी थे, जिन्हें सन 1999 के कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: सभी को करते हैं शत शत नमन।

0: मीनाक्षी इतिहास का आखिरी पन्ना पलटते हैं और याद करते हैं राजकुमार को जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था।
1: तो हिंदी फिल्मों के अभिनेता राजकुमार का निधन 1996 ईस्वी में आज ही के दिन यानी 3 जुलाई को हुआ। इनका नाम कुलभूषण पंडित था लेकिन फिल्मी दुनिया में अपने दूसरे नाम राजकुमार के नाम से ये प्रसिद्ध हुए।
0: और पारंपरिक फारसी थिएटर के संवाद अदायगी को इन्होंने अपनाया और यही उनकी विशेष पहचान बनी।
1: और इनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध फिल्मों में पैगाम, वक्त, नीलकमल, पाकीजा, मर्यादा, हीर रांझा और सौदागर आदि हैं।
0: और फिल्मी दुनिया के सरताज अभिनेता राजकुमार 1996 में हमें छोड़कर चले गए लेकिन राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल और उनके सफेद जूते और उनके डायलॉग आज तक सबके जेहन में जिंदा है।
1: और वो डायलॉग या संवाद क्या था?
0: ये फिल्म पाकीजा का में जो राजकुमार का बोला गया एक संवाद था,
1: आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे।
0: हाँ, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज में नकल करने लगे। उन्हें दिल एक मंदिर और वक्त के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
1: फिल्म उद्योग का नोबेल, फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया।
0: हाँ।
1: और अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर ये राज करते आए महान अभिनेता राजकुमार।
0: हाँ। और आज ही के दिन मतलब 3 जुलाई 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह गए।
1: ये सौदागर फिल्म का गीत क्यों ना अपने श्रोताओं को हम सुनवा दें।
0: हाँ।

0: और जो हर रांची कार्यक्रम में कुछ ज्ञानवर्धक बातें यानी हाँ, जानकारियों से जुड़ी है।
1: तो
0: क्या बताना चाहेंगी रेणु दी?
1: अरे अभी तो सभी लोग एसआईआर से जुड़े संशय और शिकायत के लिए सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी पर जानना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे।
0: यानी कि एसआईआर के बारे में सबको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है।
1: हाँ।
0: और इसके लिए अगर आपको सहूलियत के लिए आपको बता दें कि टोल फ्री एक नंबर है 1950 या आप बुक ए कॉल ये कर सकते हैं, जिससे आप इसकी सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। यानी अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी अधूरी है या नहीं है तो आप एसआईआर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी ऐसा आया है कि घर घर जाकर बीएलओ इम्यूनेशन फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। यदि किसी मतदाता को फॉर्म भरने या इस अभियान से जुड़े कोई समस्या है तो वो 5 माध्यमों से निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल पे जाना है, एसआईआर स्टिकर पे जाना है या बुक ए कॉल आयोग के ESINET ऐप पर इस फीचर को वोटर आईडी नंबर डालते ही बीएलओ की सूचना आ जाएगी और जो 48 घंटे के भीतर कॉल बैक कर समस्या का समाधान करेगी। तो इस तरह से आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो इसके लिए अब

0: आगे
1: हाँ जरूरी है कि आप जाके अपने जीवी के वीलों से संपर्क करें और इकट्ठा करें। और चलते चलते देखो मीनाक्षी, ये जो
0: कार्यक्रम का वक्त बिल्कुल, हाँ अब घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही हैं कि अब कार्यक्रम से हम इजाजत लें।
1: हाँ तो चलते चलते,
0: चलते, चलते बस अब श्रोताओं को
1: सेहत से जुड़ी बातें कर लेते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि मानसून का समय है तो इस समय हमें अपना अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है। ज्यादातर हम खाने पीने में लापरवाह हो जाते हैं, तो जिसे लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है।
1: हाँ, खासकर बासी खाना को अवॉइड करना है, ताजा और फ्रेश,
0: हाँ
1: ताजा खाना खाना है।
0: जो ताज़ा खाना आपके घर में उपलब्ध हो, बना हो, आप खाएं, यानी कि आप बाहर के खाने को खाने से परहेज़ करें। और तीखी गर्मी के बाद मानसून की शुरुआत तो जैसा कि हम देखें कि हो चुकी है, तो ऐसे में डॉक्टर हमें बदलते मौसम में थोड़ा सावधान रहने की सलाह देते हैं। और
1: पानी भरपूर पिए,
0: हाँ पानी पिए, और पीने के पानी को उबालने के बाद गुनगुना करके पीना शुरू करें, तो इससे आप बाहर की बीमारियों से बच सकते हैं।
1: बातें छोटी छोटी हैं और सब लोग जानते भी हैं, लेकिन उसको बरतना जरूरी है, मतलब वो काम करना जरूरी
0: है। छोटी छोटी बातें हैं ही हैं, जैसे कि आप कटे हुए फल हैं या सब्जियां हैं उन्हें बहुत देर तक बाहर
1: ना छोड़े,
0: या फिर कच्ची सब्जियों खाने से भी परहेज करें।
1: इस मौसम में सलाद जो है काफी अच्छा से काट कर एकदम ताजा काटे और खाएं, उसको रख कर घंटा एक घंटा बाद खा रहे हैं वैसा न करें।
0: तो कुल मिलाकर केवल घर का गर्म सुपाच्य भोजन, खिचड़ी सूप और हरी सब्जियां आप लें और आप सेहतमंद रहें।
1: तो इसी तरह से आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, और इस कार्यक्रम से रेणु
0: और मीनाक्षी को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहर रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Party e cena.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बागी के इस गाने से। आवाज अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की है। इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने। इस गीत को सुनना चाहा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। ग्राम मुरुबंदा से कृष्ण कुमार, मनोज कुमार, रीना देवी, पिंकी, संजू कुमारी, मंजू, सोनी बिजलानी, रीता, गीता, सीता और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम चटक से संदीप कुमार एवं परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म बागी से ये गाना।

कार्यक्रम का अगला नगमा आप श्रोताओं के नाम बड़का गांव से दिनेश मालाकार, सुषमा मालाकार, नीरज मालाकार, विकास मालाकार, आशीष, संगीता मालाकार, रंजना, गुड़िया रानी एवं उनके मम्मी पापा, कुड़ू चौक कुड़ू से नसरीन सुल्ताना, निरोफर, नौसिन बाबू, सादिक मासूम, अशोक कुमार, अरुण, पप्पू, तौकीर और तौफीक। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म यारा दिलदारा से ये गाना। आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है, शब्दों में पिरोया है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म मुस्कान से, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की है, शब्द रचना समीर के, संगीतबद्ध किया निखिल विनय ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सीसीएल बड़का काना से रंजना, रविंद्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया, उर्वशी, अमन, बेबी, सोना बाबू, आर के अकेला और राम सिंह। कोड़ू से आप हैं मोहम्मद अंसार, मोहम्मद ब्यास इलियास, भाई इरशाद इमरान, जुनाब आलम और रोशन रामा। बड़का काना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, रेखा, सुनीता और पूनम। न्यू एरिया मोरावादी से आप हैं गौरी शंकर, राजकुमार, चितरंजन, नंदू, संजीव, संजय, दीपक, प्रदीप, विशाल और विक्की। रातू से विक्की पाठक, सुनीता, श्वेता, सौरभ, सुधांशु, निंजा, निकी और घर के सारे सदस्य। आप सबके पसंद से सुनते हैं फिल्म मुस्कान से ये गाना।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

फिल्म मुस्कान का ये गीत और भी लोग सुनना चाहते थे। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। और तो इसी के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है।

0: बहनों नमस्कार। बारिश के फुहार, ठंडे बयार, प्रकृति का श्रृंगार, हरियाली की बहार और ढेर सारा प्यार लिए हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी राखी, आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के साथ। हृदय तल से स्वागत है आपका और आपके चुलबुले सी हंसमुख सी सखी रानी भी है आज आपके साथ, जो आपसे मुखातिब होने के लिए बेताब है।
1: हाँ बहनों, तो स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ बारिश के इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी उठा रही होंगी।
0: दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था।
1: क्या बात है राखी। बहनों, कभी आपने महसूस किया है कि पहली बारिश की बूंदे जब धरती पर गिरती हैं तो मिट्टी की सौंधी सुगंध के साथ साथ मन का आंगन भी जैसे महक उठता है। ये बादलों का उमड़ना घुमड़ना पुरानी यादों के पिटारे खोल देता है ना।
0: बारिश जब अपनी अलहड़ता के साथ बरसती है तो चंचल मन थिरकने लगता है।
1: हाँ, गजब की ऋतु है ये, जिसके साथ उम्र की हर पड़ाव की अलग अलग यादें जुड़ी होती है ना राखी।
0: बचपन की बारिश, कागज की नाव पानी में तैराना, खेत की गीली मिट्टी में नंगे पांव उछलना कूदना, यौवन की बारिश, प्रियतम का इंतजार, सावन के झूले, मेहंदी लगे हाथ, बारिश की ठंडक के बीच छिपी वो ऊष्मा जिसे सिर्फ युवा मन ही समझ पाए।
1: हाँ, और प्रौढ़ावस्था की बारिश, हाँ, आपाधापी के बीच थोड़ा सा ठहर कर रिमझिम बरसती बूंदों को बैठ कर निहारना, कुछ पुरानी यादों की पोटली खोलकर आंखों के सामने थिरकने लगती है।
0: ठंडी हवा के सेहरन के साथ कुछ चेहरे, नाना कोई एक खास चेहरा जो बस

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बहनों कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और आज मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रानी,
7: और रानी के साथ मैं राखी। और रानी, अब बहनों को सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, बारिश के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां और बचाव, और इस संदर्भ में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिल्पीजा, और उनसे बातें की है बहनों रानी शुक्ला ने, जो अभी आपसे मुखातिब है।
8: बहनों, बारिश की रिमझिम फुहारें जब धरती को छूती हैं तो वातावरण में एक नई ताजगी और सुकून भर देती हैं। तपती गर्मी के बाद ये मौसम राहत, ठंडक और हरियाली का संदेश लेकर आता है। लेकिन इस खूबसूरत मौसम का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है सेहत से जुड़ी चुनौतियाँ। बारिश के दिनों में जरा सी लापरवाही कई बीमारियों को न्योता दे सकती है। ऐसे में परिवार की देखभाल, साफ सफाई और सही खान पान की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जागरूकता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बारिश के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां और उनसे बचाव। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विशेष अतिथि डॉक्टर शिल्पी झा। आप गांधीनगर अस्पताल रांची में डिप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार डॉक्टर शिल्पी जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
9: नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच।
8: मैम, बारिश का मौसम राहत और ठंडक लेकर तो आता है, लेकिन इसके साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है?
9: इस मौसम में बीमारियों बढ़ने का मोस्ट कॉमन रीजन होता है वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट। और इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए मैं इसमें तीन पैरामीटर्स बताना चाहूंगी। पहला हो जाएगा ज्योग्राफिक फॉर्म, जिसका मतलब कि हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिकल लगती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री से पास होता है, जिसकी वजह से ये हमारी कंट्री को ट्रॉपिकल साउथ रीजन और सब ट्रॉपिकल नॉर्थ रीजन में डिवाइड कर देता है। दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हमारा इक्वेटर जाता है, जिस वजह से हमारी कंट्री में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो देखा जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक टेम्परेचर होगी, बहुत गर्मी होगी और बहुत अधिक वर्षा होगी। तो इस सीजन में क्या होता है कि जब हमारी गर्मी ज्यादा होती है तो उस सीजन में वायरसेस, स्पोर्स, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वो डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही मानसून का सीजन आता है तो हमारा टेम्परेचर कूल डाउन होता है, तो ये सीजन ये स्पोर्ट्स, वायरसेस और बैक्टीरिया के रेप्लिकेट करने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है। और इसी टाइम पर हमारे स्कूल भी खुलते हैं, तो बच्चे जब तक घर पे रहते हैं तो वो एकांत में रहते हैं, सेक्लूडेड प्लेसेस में रहते हैं, तो उनको इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। पर जैसे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो मॉनसून सीजन आफ्टर समर वेकेशन आ जाता है, एक बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो वो दूसरे बच्चे के पास बैठकर अगर खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉप्स निकलते हैं या एरोसॉल से, तो उसके बेंच पर या उसके पेंसिल पर जाते हैं, जो वो अपने फेलो फ्रेंड के साथ जब शेयर करता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है और ये ट्रांसमिशन चेन शुरू हो जाता है। इसमें एक और पैरामीटर है जिसे हम कह सकते हैं पुअर सैनिटरी बैरियर, यानी कि जब बारिश होती है तो एक पर्टिकुलर रेंज होता है, कितनी बार वो रेंज हमारा क्रॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी अपने साथ जब बहता है तो वो काफी गंदगी, मल मूत्र, फीसल सब कुछ लेकर जाता है, और यही पानी जब आगे जाकर स्टैगनेंट वाटर में बदल जाता है तो इसमें मच्छर वगैरह अपना अंडा ले करते हैं, जिसकी वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं।
8: जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आखिर बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ जाता है। अब अगर हम उन बीमारियों की बात करें तो इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जिनसे सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
9: जी, तो इसी संदर्भ में बात करते हुए मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं कि जो बारिश के पानी के साथ अगर कॉन्टामिनेशन हो जाए आपके पीने के पानी का तो उसे वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो इसमें जैसे कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड या फूड पॉइजनिंग आता है। दूसरा हम कह सकते हैं वेक्टर बॉर्न, यानी कि जो बारिश का पानी हमारा एक जगह जमा हो जाता है तो उसमें मच्छर अपना अंडा ले करते हैं जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया हो सकता है। तीसरा हो सकता है हमारा वायरल इन्फेक्शन जिसमें कि कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर, फ्लू आ जाते हैं। चौथा हो सकता है स्किन पर हम देख सकते हैं फंगल इन्फेक्शन कि बारिश होती है आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, प्लस हमारे शरीर में एक दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे एक्सिला होता है या ग्रॉइन जहां ज्यादा पसीना होता है तो वहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन, एथलीट फुट वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आखिर में होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कि अगर घर में नमी है या फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो वहां पर एस्थमा या ब्रोंकाइटिस होने के केसेस दिखाई देते हैं।
8: जी, लेकिन अक्सर लोग शुरुआती संकेतों को समझ नहीं पाते, खासकर डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी बीमारियों में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ताकि लोग समय रहते इन्हें पहचान सके।
9: जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेंगू से। तो डेंगू होता है एडीज एजिप्टी नाम के एक मच्छर के काटने के द्वारा। तो ये मच्छर जो होता है हमारा यूजुअली ये दिन में या फिर अर्ली मॉर्निंग में इसके बाइट की वजह से आपको डेंगू के लक्षण दिख सकते हैं। डेंगू का लक्षण जैसे कि अचानक से बहुत हाई ग्रेड फीवर होना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे बहुत दर्द होना, बहुत जोर से हेडेक होता है, ज्वाइंट और मसल में भी बहुत पेन होता है। और इतना ये उसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि इसे हमारे लैंग्वेज में हम लोग मेडिकल टर्म्स में ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। स्किन में रैश होना, उल्टी होना। अब चलते हैं मलेरिया की तरफ। मलेरिया भी मच्छर के ही काटने से होता है, बट इसका जो मच्छर होता है वो एक फीमेल एनोफेलिस होती है। इसमें तीन स्टेज होते हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज मतलब मरीज को अचानक से बहुत जोर से ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है कि वो कंबल मांगता है और ये स्टेज आधे घंटे तक लास्ट करता है। इसके बाद होता है हॉट स्टेज, इसमें जो पेशेंट को अभी ठंड लग रही थी अचानक से उसको गर्म लगने लगती है और जो ब्लैंकेट उसने मांगा था वही ब्लैंकेट वो फेंक देता है। और आखिर में होता है स्वेटिंग स्टेज जिसमें कि पसीना बहुत तेजी से उसको बढ़ जाता है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है।
8: जी,
9: अब आखिर में आते हैं वायरल फीवर की तरफ।
8: जी,
9: वायरल फीवर जैसा हम नाम से समझ सकते हैं कि एक ऐसा बुखार है जो वायरस के इन्फेक्शन से होता है। तो ये जैसे हमारा वेदर चेंज हुआ इसकी वजह से देखा जाता है। इसमें भी वही फीचर्स होते हैं, मॉलस फटी चिल बॉडी एक, और ये जैसे मैंने बताया कि छींकने पर या हाथों में जब आपके ड्रॉपलेट्स पड़ जाते हैं तो फिर वही इन्फेक्शन हाथ अगर आप किसी और के साथ शेयर करते हैं या सामान का आदान प्रदान करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
8: बिल्कुल, तो ये कुछ अहम लक्षण है बहनों जिनकी समय रहते पहचान बहुत जरूरी है। अब अगर बचाव की बात करें तो खान पान और पीने के पानी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बारिश के मौसम में खान पान और पीने के पानी को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
9: जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारा। इसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमें बिल्कुल साफ और उबला हुआ पानी पीना है। बाहर का कोई भी जो सोर्स है वहां से हमें पानी नहीं पीना है। बाहर का खाना कम खाना है, घर का जो फ्रेशली कंज्यूम्ड कुक्ड फूड होता है उसे ही खाना है। हाथ हमेशा साफ करना है खाने खाने से पहले, और अगर कहीं पर आपके हाथ धोने की अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो हाथ में हमेशा कोशिश करें कि स्टेरिलियम या सैनिटाइजर जो हम कोविड एरा से आजकल फॉलो कर रहे हैं उसे यूज करना है। और कभी भी बाहर में अगर कोई मान लीजिए कट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सलाद है तो उसको बारिश के सीजन में बिल्कुल भी नहीं खाना है।
8: जी बिल्कुल, यानी सही खान पान और साफ पानी हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ घर और आसपास की साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है। घर और आस

0: आसपास की साफ सफाई का इस मौसम में कितना महत्व है और मच्छरों से बचाव के लिए लोग क्या उपाय कर सकते हैं?
1: जी, इसे हम डील करेंगे 4S से।
0: जी।
1: 4S में पहला S होगा सर्च एंड डिस्ट्रॉय। तो जहां पर भी हमारा पानी जमा है वहां पर पोटेंशियल ब्रीडिंग स्पॉट हो सकते हैं कि जहां मच्छर आपका अंडा लेकर सकता है, जैसे कि पुराना टायर, कोई गटर जहां से पानी निकल रही है वहां पे पानी जाम है, या फिर जैसे हम घर में देखते हैं कूलर्स में पानी पड़े होते हैं, या फ्लावर वास होता है, या प्लांट्स के जो रहते हैं पुराना ड्रम जिसमें हमने पानी स्टोर करने के लिए रखा था समर सीजन में। और उसके बाद मान लीजिए कितनी बार हम लोग अपने घर में आसपास देखते हैं कि कोई टिन हो गया, कोल्ड ड्रिंक का कोई कैन हो गया, या कोई प्लास्टिक की बॉटल हो गई जो हम यूं ही फेंक देते हैं, वो भी उसमें भी जाके बारिश का पानी जमा हो सकता है। ये था पहला कारण। दूसरा हम लोग कर सकते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन की। इस सीजन में हमें हमेशा पूरे कपड़े के पूरे फुल स्लीव क्लोथ पहनने हैं
0: जी।
1: और मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे ओडोमॉस हमारे यहाँ मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है
0: जी।
1: और मच्छर की एंट्री और को रोकने के लिए हम लोग मैश इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज में, डोर्स में। रात में मॉस्किटो नेट यूज करना है। ऑल्सो वेक्टर कंट्रोल के लिए हमारे यहाँ एक मछली आती है जो कि वो मच्छर के लार्वों पर फीड करती है
0: जी।
1: और अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत सुविधा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गांव में जैसे लोग हैं तो वहां पर अगर रोड टूटा हुआ है तो वहां पर भी बारिश का पानी जमा हो जाता है
0: जी।
1: तो वहां हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं कि केरोसिन ऑयल जो होता है वो उन गड्ढों के ऊपर डाल दें, ताकि अगर वहां पर मच्छर के अंडे होंगे और वो लार्वा होगा तो वो तेल जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देता है, तो वो मच्छर का लार्वा वहां जीवित नहीं रह पाएगा और मच्छर का संक्रमण से हम लोग बच सकते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई और मच्छरों से बचाव ही सबसे बड़ा बचाव है
1: जी।
0: अब अगर हम खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों की बात करें, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों की सेहत इस मौसम में ज्यादा प्रभावित होती है, तो उनके लिए क्या खास सावधानियां जरूरी है?
1: जी बिल्कुल, बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही वल्नरेबल एज ग्रुप में फॉल करते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। बच्चों के लिए सजेशन रहेगा कि वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अंदर खेलें, बाहर जहां पे पानी जमा है वहां ना खेलें, घर का साफ सुथरा खाना और पानी पिएं, फ्लू जो वैक्सीनेशन है अवेलेबल है हमारा वो चाहे तो लगवा सकते हैं, हैंड वॉश प्रैक्टिस करना है खाना खाने से पहले, रोज नहाना है, अगर बाहर खेलते वक्त या स्कूल से आते वक्त कपड़े गीले हो जा रहे हैं तो उनको आने के साथ घर में तुरंत बदलना है, और खुद के शरीर को ड्राई रखना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चों के नेल्स को ट्रिम करना चाहिए क्योंकि नेल्स में अक्सर गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, जर्म्स बैठ जाते हैं, फिर वो उसी हाथ से खाना खाएंगे तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस उनके टॉयज को भी क्लीन करना है
0: जी।
1: और एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि बुजुर्गों में हमें ध्यान रखना है कि हमें उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए हम जैसे फ्रूट्स हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं ऑरेंज गुआवा, खान पान में हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। और तो इस सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपको पसीना बहुत निकलता है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शरीर में बिगड़ जाता है, तो उसमें हम लोग नारियल पानी जैसा पेय पदार्थ यूज कर सकते हैं
0: जी।
1: एक और आखिर बात यह हो सकती है कि इस सीजन में हम कोशिश करेंगे कि उन्हें बाहर अकेले ना जाने दें, क्योंकि कितनी बार होता है कि घर में या आंगन में जब बुजुर्ग निकलते हैं तो पानी जो जमा रहता है उसमें फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं
0: जी।
1: तो उसकी वजह से उनको सर में चोट या कोई गंभीर फ्रैक्चर हो सकता है
0: जी। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शिल्पी जी, कई बार लोग सर्दी, जुकाम, गले की खराश या हल्के बुखार को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: तो मैं इस संदर्भ में हाईलाइट करना चाहूंगी ऐसे सिम्टम्स जैसे कि हाई ग्रेड फीवर, जिसमें कि आपको साथ में कंपन महसूस हो रही है या शिवर कर रहे हैं आप
0: जी।
1: अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, बॉडी एक यानी कि शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर परसिस्टेंट खांसी है, तो ऐसे सिम्टम्स को खुद से ना ट्रीट करें, कोशिश करें कि घर के आसपास अगर कोई क्लिनिक है या PHC, CHC कोई सेंटर है तो वहां जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी जाएंगे तो अर्ली अगर हम लोग डेंगू या मलेरिया का डायग्नोसिस कर पाएंगे तो उससे हम कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं और पेशेंट की स्पीडी रिकवरी हो सकती है।
0: बिल्कुल, यानी समय रहते सही कदम उठाना बहुत जरूरी है
1: जी। बिल्कुल,
0: चलते चलते हमारी श्रोता बहनों के लिए आपका कोई खास संदेश ताकि वे बारिश के मौसम में खुद को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके।
1: जी, आखिर में ये बात बताना चाहूंगी, फिर मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला हमारा खान पान यानी कि साफ पानी पीना है, घर का ही खाना खाना है, विटामिन सी और सीजनल फ्रूट खाने हैं। दूसरा हाइजीन हो जाएगा जिसमें कि हमें अपने शरीर को सूखा रखना है, गीले कपड़ों से बचाना है, अगर बारिश के सीजन में आपका सॉक्स या कपड़े गीले हो रहे हैं तो उसको इमीडिएटली चेंज करना है, हाथ धोना है, मच्छर को घर में एंट्री रोकने के लिए मेश लगाना है, ओडोमॉस वगैरह यूज करना है, और कहीं पर भी अगर

0: फ्लड वाटर पानी एक्यूमुलेटेड है हमारा, तो वहां पर हमें कोशिश करेंगे कि अवॉइड करना है। आखिर में एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, 7 से 8 घंटे का स्लीप लेना है
1: जी,
0: इससे आप खुद को स्वस्थ बना सकते हैं।
1: जी डॉक्टर शिल्पी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया। बारिश के मौसम में सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी श्रोता बहनों के साथ साझा की, उम्मीद है कि ये बातें सभी के लिए उपयोगी साबित होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता, बारिश के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां और बचाव, जानकारी दे रही थी डॉक्टर शिल्पी झा और उनसे बातें कर रही थी रानी शुक्ला। और जानकारियों के बाद फिर से चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में इस गीत के साथ।

0: बहनों बरसात में प्रेम विरह दुख सुख की सारी यादें सिमटी होती हैं। लगभग हर किसी के जीवन में कोई यादगार घटना घटी होगी जो बरसात से जुड़ी होगी। तो रानी, वैसे तो कई यादें और भी हैं, लेकिन एक संस्मरण है जो कि बहनों से साझा करती हूँ। कई वर्ष पहले की बात है, एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी मैं। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, प्लेटफॉर्म पर भागदौड़ मच गई और उसी भीड़ में मेरी नज़र एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। उनके पास एक कपड़े की गठरी, एक छोटा सा बक्सा और कुछ पौधे थे जिन्हें वो अपने गमछे से ढक रहे थे। उस छोटे से लकड़ी के बक्से में शायद कुछ किताबें थीं जो बारिश में भीग रही थीं, क्योंकि बक्से में थोड़ी सी दरारें थीं। मैंने उत्सुकतावश जाकर पूछा, इतनी बारिश में आप खुद को बचाने से ज़्यादा इस बक्से को बचाने की चिंता क्यों कर रहे हैं बाबा? उन्होंने कहा, बेटा इसमें मेरी पोती की किताबें हैं जो पढ़ना चाहती है। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर उसके लिए ये किताबें खरीद लाए हैं हम, और ये पौधे भी उसके लिए ही हैं जो लगाएगी वो अपने आंगन में। इतना कहते कहते उनकी आँखें चमक उठी। तभी सामने खड़ा एक नौजवान जो शायद हमारी बातें सुन रहा था, उसने उनका बक्शा और छोटे पौधे उठाया और अचानक से ले गया और उसे अपने बैठने वाली जगह पर सुरक्षित रख दिया। बुजुर्ग दंपत्ति को वो अधिकार से बोला, दादाजी आप चिंता न करें, ये बारिश अब आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी। आपकी पोती की किताबें और पौधे सुरक्षित उसके पास पहुंच जाएंगे। और ये सब होते होते ट्रेन भी आ गई। उस नौजवान ने सहारा देकर उन्हें ट्रेन में बिठाया। रानी, मैं सोच रही थी कि क्या ये बारिश अपने साथ इंसानियत की कुछ बूंदें भी बरसाती है कभी कभी। आज भी जब मैं यात्रा कर रही होती हूँ तो वो घटना पर बस ही याद आ जाती है।
1: इसलिए तो कहते हैं राखी की बारिश सिर्फ बूंदे नहीं बरसाती, यादें भी बरसाती हैं।
0: सच।

0: में
1: है ना।
0: और चलते चलते बहनों से बस कुछ कहना है, क्या कहना है?
1: आयोडीन की जानकारी देनी है बहनों को। बहनों, आयोडीन हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज है जो थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से गर्दन में सूजन, घेंघा और हाइपोथायराइडिज्म जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है, और इसकी कमी से बचने के लिए दैनिक आहार में आयोडीन युक्त नमक शामिल करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है।
0: हाँ, आयोडीन युक्त नमक खाएं, आयोडीन की कमी से बचें बहनों, क्योंकि इससे घेघा रोग जो होता है उससे भी बचना जरूरी है। और देखिए ना, चलते चलते अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। बता दें आपको कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्री गौरव पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और रानी को दे विदा,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं फिल्म न तुम जानो न हम के इस गाने से। आवाज उदित नारायण और पामेला जैन की है। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आइए सुनते हैं फिल्म कसूर से ये गाना, कुमार सानू की आवाज है।

आइए सुनते हैं फिल्म जुर्म से ये गाना। आवाजें मनहर उदास और साधना सरगम की है, शब्दों में पिराया है प्याम साईदी ने, संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म खुदगर्ज से, आवाजें मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की है, शब्दों में पिरोया है इंदिवर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश

तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस यानी के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं

0: of 16. Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in their round of 32 match in Toronto, Canada. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार परीक्षा परिणाम उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आज से 9 जुलाई की शाम 5 बजे तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने तथा आवेदन की हार्ड कॉपी 14 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करने को कहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के CCL डकरा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, CCL और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी मौजूद रहे। श्री सेठ ने कहा कि इस विद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिलेगी तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहूंगा। मुझे याद है जब 2019 में चुनाव में मैं आया था, मैंने वादा किया था अब केंद्रीय विद्यालय खुलेगा और उसके बाद 2020 में मैंने प्रश्नकाल में लोकसभा में कई मरतबा इस केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवाज उठाई और उसके बाद ये आश्वासन दिया कि केंद्रीय विद्यालय जरूर खुलेगा।
1: जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। जमशेदपुर के SSP एहतशाम वकारिब ने बताया कि SIT का गठन कर तकनीकी साक्षियों और CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
3: 2 जो नीद बालक है, जुनाइल बालक है, अराउंड 16 एंड 17 इयर्स के है, उन दोनों को है किया गया। अब प्रीवियसली लास्ट टाइम हम लोग 3 लोग को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक सोनू सरदार है और एक है राज लोहार और एक बालक जो कि 16 साल का था, वो भी उसको भी नियुक्त किया गया है जुनाइल जस्टिस के तहत।
1: इधर आदित्यपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भाजपा और समर्थित संगठनों के बंद का आज व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार समेत 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना है।
4: मशाल जुलूस के स्थल पर उतरे थे रोड पर और आह्वान किए थे आदित्यपुर बंदी का। लोग प्रशासन के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में हम लोग सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन हर जगह नाकाम है, इस पर उनका नाकामी साफ साफ दिख रही है और हम लोग स्पष्ट और कड़े शब्द से मैं विरोध करता हूं। हत्यारा को अविलंब गिरफ्तार करे, फांसी की सजा दे।
1: रांची में कांके राम मंदिर से प्रोजेक्ट भवन ध्रुवा तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त

0: जहां मुक्त, सुरक्षित, स्वच्छ और हरित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में कार्ययोजना पर चर्चा की गई। अभियान के तहत सड़क, फुटपाथ, पार्किंग, ऑटो स्टैंड और वेंडिंग जोन का सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार MBBS सीटें 176 से 250, PG सीटें 180 से 275 और सुपर स्पेशलिटी सीटें 11 से बढ़ाकर 100 करने की योजना है, जिसे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप भवन, हॉस्टल, प्रयोगशालाओं, उपकरणों, फैकल्टी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बोकारो जिले के तिलमुंगा गांव में एक बुजुर्ग दंपति और उनके दिव्यांग पुत्र को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है। परिवार की ओर से पेंशन नहीं मिलने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर पात्र लाभुकों को शीघ्र योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में चकला कोल माइंस क्षेत्र के दो आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बदला है। यहां बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र की सेविका ने बताया कि निजी कंपनी के सहयोग से आंगनबाड़ी की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
1: अभी जो है वैसा पहले नहीं था। अभी यहाँ पे टीकाकरण होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जाता है। हमारी सेंटर में यानी मेरे एरिया में जितना भी लाभुक है टोटल जुड़े हुए हैं। संख्या लगभग यहाँ पे टोटल जनसंख्या का आधार पर 1560 है।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 511 अंक चढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 160 अंक ऊपर आकर 24,336 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपये प्रति किलो है। ताइक्वांडो। झारखंड ताइक्वांडो संघ और जिला ताइक्वांडो संघ के तहत 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता लोहरदगा में आज से शुरू हो रही है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 700 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, टीम मैनेजर और रेफरी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त संदीप कुमार मीणा करेंगे और उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक और संघ अध्यक्ष सादिक अनवर रिजवी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज।

और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं शिप्रा बोस। इनसे सुनते हैं ठुमरी और दादरा।

अभी आप शिप्रा बोस से ठुमरी और दादरा सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, इसमें सुनते हैं हरिहरन की आवाज में चंद गजलें।

0: एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-97 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: आखिरी गजल सुनते हैं हरिहरन की आवाज में।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: आमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: बोलो बाबा अमरनाथ की जय।
2: बाबा अमरनाथ बम बम।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश वाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इस निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अनीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई।

0: अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया घटना अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में

0: गीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का

वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म उपकार से ये गाना। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज है, शब्दों में पिरोया है गुलशन बावरा ने, संगीतबद्ध किए कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए सुनते हैं फिल्म धूल का फूल से ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दों में पिरोया है साहिल लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किए इन दत्ता ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म गुमराह से। महेंद्र कपूर की आवाज है, साहिल लिध्यानवी ने इस गीत को लिखा, संगीतबद्ध किया रवि ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 पर। अगला प्रसारण बस थोड़ी देर में।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी 16 कमांडो स्पेशल ब्रांच के 3 अधिकारी 3 वाहन लौटा दिए हैं। मंत्री ने 2 माह पूर्व एक सुरक्षा वाहन मांगा था, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने जवाब देने के बजाय उनके काफिले से 1 गाड़ी कम करने का

0: आदेश दे दिया। इसे अपमानजनक मानते हुए मंत्री ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा वापस कर दी। अब वे बिना किसी बॉडीगार्ड के चल रहे हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। यात्रा नुनवान, पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से सुचारू रूप से चल रही है। सुबह सुबह बेस कैंप से निकले हजारों यात्री बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच कठिन रास्तों पर पैदल यात्रा करते हुए देखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: बाबा अमरनाथ बम बम। हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वो खूबी बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए इस यात्रा को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से 5 संकल्प, स्वच्छता नियमों का पालन, स्थानीय उत्पादों पर 10% खर्च, पौधे उपहार में देने और राष्ट्र प्रथम की भावना को अपनाने का आग्रह किया। झारखंड हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत NHM कर्मियों के नियमितीकरण मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अंतिम आदेश तक कर्मियों को नौकरी से हटाने पर रोक लगा दी है। साथ ही नियमित वेतन देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त तय की है। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा द्वारा बुलाए गए जमशेदपुर बंद को एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और आजसू पार्टी का पूरा समर्थन मिला है। विपक्षी दलों की इस एकजुटता के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। बंद के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय परिवहन पर व्यापक असर पड़ा है। जेडीयू विधायक सरयू राय ने बंद को सफल बताया है।
4: जिन लोगों ने अपने ही दुकानों को बंद रखा है, ऐसा स्कूल बंद ही है। हम देख रहे हैं कहीं भी कोई दुकान खुला हुआ नहीं है और व्यवसायी संघ ने भी बंद का समर्थन किया है। तो अभूतपूर्व बंद हुआ है, लोग अपने ही बंद के तौर पर अपना दुकान परेशान बंद करके रखे हैं। इससे सरकार को समझना चाहिए कि जमशेदपुर के लोग कितना दुखी है।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद एनआईए ने मुख्य आरोपी अमन अंसारी और सयाम सुजान को 7 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। इस हमले के तार दुबई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने का संदेह है। आरोपियों पर यूपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। सारंडा जंगल में नक्सलियों की धमक खत्म होने के बाद राज्य पुलिस ने जवानों के रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 3 महीने से वहां नक्सलियों की कोई हलचल नहीं है और मानसून के दौरान जवानों को बरसाती बीमारियों से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में 10,000 जवान तैनात हैं और बचे हुए 15 वांटेड नक्सलियों की घेराबंदी के लिए अभियान जारी है।
5: मॉस्किटो से जो प्रिवेंशन के जो भी एक्टिविटीज हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, दवाइयां उनको दे रहे हैं और इसका एक रोटेशन भी हम लोग जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अब रस्ता टाइप का कोई चीज नहीं रह गई है, सब तितर बितर हो गया है और कंटिन्यूस फोर्सेस की अभी भी मोटिवेशन उसी तरह से बनाए हुए है। चारों तरफ से फोर्सेस में घेर के रखा भी हुआ है, सूचनाएं हम लोगों को मिल रही है और जल्दी भविष्य में अच्छा काम होने की उम्मीद है।
0: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार

0: 8800-4400-559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थी, अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भोज वृक्ष?
8: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
6: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
8: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
6: अच्छा,
8: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
6: ये किस भाषा में है?
8: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर

0: संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ।

0: डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा,
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला

0: क्या इंजाम कर देगी।
1: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
2: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
3: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
4: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
5: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
4: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
5: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
6: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोला लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
5: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
6: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
5: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
6: रानी माँ
7: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
8: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
10: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज बस थोड़े ही देर में।
11: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज. शुरुआत करते हैं फिल्म लिबास के इस गीत से. लता मंगेशकर की आवाज है, संगीत पर किया राहुल देव बर्मन ने.

आइए सुनते हैं अनजान का लिखा हुआ ये गीत, पाप की दुनिया। आवाज लता मंगेशकर और शबीर कुमार और साथियों की है, संगीत पर किया बप्पी लाहिरी ने।

जीते हैं शान से, इस फिल्म से गाना सुनते हैं। आवाजें अमित कुमार, शब्बीर कुमार, शैलेंद्र सिंह, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति की है। शब्दों में पिरोया है इंदिवर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: हर दिल को किसी के क्या तोड़ेंगे, फूल हमने तोड़ा।
1: अरे पाया जिसे दिलों का दुश्मन, उसे कभी ना छोड़ा।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से। आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत पथ किया राहुल देव परमन ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रांची मेलोडीज यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य सरकार ने कैथी लिपि में लिखे पुराने भू अभिलेखों और खदियान को पढ़ने के लिए कैथी लिपि पाठ्य पुस्तक तैयार की है। विभाग के सचिव चंद्रशेखर के अनुसार वर्तमान में इस प्राचीन लिपि के जानकारों की कमी के कारण भूमि विवादों को दूर करने के लिए यह पहल की गई है। UIDAI ने आधार ऐप पर मुफ्त ईमेल अपडेट सेवा शुरू कर दी है। 1 जुलाई से 6 महीने के लिए जारी इस सुविधा से 2 दिन में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने ईमेल अपडेट किया। इससे हर ऑथेंटिकेशन का रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आधार की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरायकेला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आज नगर पंचायत सरायकेला के इंदिरा टाणी मोहल्ले में घर घर जाकर SIR कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पदाधिकारियों को त्रुटि रहित और समयबद्ध कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। गुमला प्रशासन और CUD लाइफ इंश्योरेंस ने डुमरी के लवाबार में वाटर लिफ्टिंग सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सिरमी और ओखरागढ़ में नवनिर्मित विद्यालय भवन शिक्षा विभाग को सौंपे गए। इस दौरान स्कूल परिसरों में पौधारोपण भी किया गया। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के सियाटांड और लकड़ा

0: तार गांवों में छापेमारी कर 3 अशातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी अमित कुमार के अनुसार इस कार्रवाई में अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 6 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। राज्य के 7 जिलों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा में अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन, वर्षपात और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में न जाने और सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: आकाशवाणी रांची से नशर उर्दू प्रोग्राम में हम अपने तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करते हैं। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपके दोस्त फौजिया तजीन। सामईन को प्यार भरा आदाब। और सामईन, हमारे साथ हैं हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह। आदाब फौजिया।
0: आदाब।
1: और कैसे हैं?
0: बखैर हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे और हमारे सामईन भी।
1: बिल्कुल फौजिया, और मौसम तो आप देख रही हैं, मौसम ऐसा है जो कि खैरियत से रहने नहीं दे रहा है।
0: बिल्कुल, जुलाई का महीना शुरू हो गया है सामईन, तो हम समझ ही रहे हैं कि बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में तबीयत तो नासाज होनी ही है।
1: देखिए, और वैसे भी रांची जो है ये फर्स्ट हाफ में सख्त धूप होती है और सेकेंड हाफ में धुआंधार बारिश।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मौसम ऐसे तब्दील होता है जैसे कि लगता ही नहीं है कि सुबह निकले हैं कि छाते की जरूरत पड़ेगी और बाद में फिर छाते की जरूरत पड़ जाती है।
1: इसी को पल में शोला पल में शबनम कहते हैं फौजिया।
0: जी हाँ,
1: तो ये जरूरी है कि हम अपना खास ख्याल रखें। ये कहा जाए कि बहुत सारी बीमारियों का दस्तक होता है।
0: बिल्कुल, तो सामईन, आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मौसम में बरसात में होने वाली बीमारियों से आप कैसे बचें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है फौजिया, और इसके लिए एक तरह से बेदारी पैदा करना नहायत ही जरूरी है। मौसम बरसात में आम तौर से छतों के ऊपर पानी का जमाव होता है, पानी का संचार सही नहीं होता है, तो उसके वजह से मलेरिया के, डेंगू के बहुत सारे मच्छर जो है ना जन्म लेते हैं
0: बरसात में। हिदायतुल्लाह, सबसे पहले तो इन मच्छरों से और मक्खियों से ही बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं, तो हम अपने सामईन से यही कहेंगे कि वो पानी का जमाव जो होता है उसे ना होने दें। और हम ये भी कहना चाहेंगे अपने सामईन से कि आप ज्यादातर हो सके तो आप घर के खाना खाने की कोशिश करें, बाहर के खाने से बचें, क्योंकि बाहर ठेले पर जो इतनी सारी मक्खियां भनभनाती हैं उससे बहुत सारे जरासीम होते हैं जो हमारे अंदर चले जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल फौजिया, ये बात तो है, इन साथ में ये बात भी है कि अगर आप अपने घर का भी खाना खाएं तो कोशिश करें कि ताजा खाना बनाकर ही खाएं, और अपने घरों को फेनाइल से जरूर पोछा लगाएं। यूं ही पानी से पोछा ना लगाएं, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है होते हैं कोने में इधर उधर, तो जरूरी है कि पानी में फेनाइल डाल दें। और एक चीज और फौजिया हम अपने सामीन को कहना चाहेंगे, अपनी बहनों को, अपनी माओं को कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में जो बर्तन मलते हैं और उसका जो स्कॉच होता है उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप उस स्कॉच को हफ्ता रोज से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, या ये कहा जाए कि आप उसको इस्तेमाल करने के बाद एक बार खौलते हुए पानी में जरूर डालें,
0: या उसको सुखा कर रखें, नम रखने से भी उसमें कीटाणु पैदा हो सकते हैं।
1: धूप में जो ना रखा जाए। जी,
0: तो ये सब तो बातें हो गई हिदायतुल्लाह, अब हम बातें करते हैं हमारे 1 से 7 जुलाई तक हम मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह। तो सामईन, वन महोत्सव पेड़ों का एक बहुत बड़ा त्योहार है जो हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इसका आगाज 1950 में कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी ने किया था, ताकि लोगों में जंगलात की हिफाजत और शजरकारी यानी कि पेड़ लगाने के तई बेदारी पैदा की जा सके। इस खास मौके पर लाखों नए पौधे लगाए जाते हैं जिससे हमारी जमीन सरसब्ज और शादाब बनती है। वन

0: और यही पेड़ पौधे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करते हैं। इस तरह से हमारी माहौलियात खूबसूरत बनती है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अच्छी रहें, सेहतयाब रहें, तो पेड़ पौधों की कटाई के बजाय आप उस पौधों को लगाने में ज्यादा तवज्जो दें।
1: बिल्कुल, मैं तो अपने सामईन से ये कहूंगी कि आप कोई भी खुशियां मनाते हैं, जैसे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो या कुछ भी आप करते हैं, तो उसमें आप ये एहतमाम करें कि एक पौधा भी आप जरूर लगाएं, ताकि वो एक तनावर दरख्त हो जाए जिससे हमारा माहौल खुशगवार हो, हमारे माहौल में आलूदगी कम हो, जो हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत बेहतर और कारामद होगी।
0: ये तमाम बातें तो है फौजिया, और हम और भी बातें करेंगे अपने सामीन से, लेकिन हम अपने सामीन को अभी लिए चलते हैं एक खूबसूरत नगमे की तरफ।
1: तो सामीन आइए सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

0: में नहीं कि वो एक बड़े सियासी रहनुमा थे, बल्कि इसमें भी है कि उन्होंने दलित सियासत को कौमी सियासत से जोड़ा। उन्होंने ये दिखाया कि समाजी महरूमी के बावजूद इल्मी, अखलाकी और सियासी क़यादत मुमकिन है। इनकी जिंदगी हिंदुस्तान में जमहूरियत, समाजी इस्लाह और नुमाइंदा सियासत की तारीख का एक अहम बाब है।
1: और फौजिया, एक और अहम टॉपिक है जो कि 4 जुलाई को हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का आलमी दिन हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में हम मनाते हैं और इसका मकसद इमदाद, बाहमी के उसूल, इज्तमाई ताउन और समाजी व इकतसादी तरक्की की अहमियत उजागर करना। फौजिया, इसी को जो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव को उर्दू में हम आलमी योम इमदाद बाहमी कहा जाता है, और इसकी अहमियत यह है कि ये दिन लोगों को बाहमी ताउन, मदद, मुश्तरका जिम्मेदारी और इज्तमाई फलाह की तरफ मतवज्जह करता है। इसके ज़रिए ये पैगाम दिया जाता है कि मिलजुल कर काम करने से माशी, समाजी और इंसानी मसाइल का बहुत ही खूबसूरत तरीके से हल निकलता है।
0: जी हाँ सामईन, ये दिन ख़ास तौर पर इस बात की याद दहानी कराता है कि इमदाद बाहमी सिर्फ एक तंजीमी उसूल नहीं, बल्कि एक ऐसा समाजी रवैया है जो इत्माद, मसावात और तरक्की को मजबूत बनाता है। और सामईन, कोऑपरेटिव खवातीन की माशी खुद मुख्तारी में बहुत मौसर किरदार अदा करती है, क्योंकि ये इन्हें मुश्तरका सरमाया, कर्ज, तरबियत और मंडी तक रसाई फ्राहम करती है। इससे खवातीन को छोटे कारोबार, दस्तकारी, ज़राअत और घरेलू सनतों में खुद मुख्तार तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इसके नतीजे में खवातीन की आमदनी बढ़ती है, इनका फैसला साजी में मुकाम मजबूत होता है और घर व मुआशरे में इनकी आवाज़ ज्यादा मुअसर बन जाती है। कोऑपरेटिव मॉडल खास तौर पर देही और कम आमदनी वाले तबकात की खवातीन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये इनफरादी नहीं बल्कि एक इज्तिमाई ताकत को फरोग देता है।
1: हम बिल्कुल फौजिया, हम बातें तो और करना चाहते हैं लेकिन स्टूडियो की घड़ी हमें मज़ीद बात करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए सामीन आप अपने दोस्त हिदायतुल्ला
0: और फौजिया को अगले हफ्ते तक के लिए दें इजाज़त। तब तक अपना ख्याल रखें। आदाब।
1: आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 5:02 का समय होगा युववाणी कार्यक्रम का। 5:30 श्रमिक लोग। शाम 6:02 पर खेती बारी। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम है हो भाषा में। 7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम सहिया का। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा। 8:30 का समय होगा सुर्खियों में। 8:45 से हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरी यादें। रात्रि 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे कलाकार सबिता राय को। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म परदेस के इस गीत के साथ। गायक हैं कुमार सानू, संगीत नदीम श्रवण का है और बोल हैं आनंद बख्शी के।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म बाजीराव मस्तानी से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, संगीत संजय लीला भंसाली का है और बोल हैं एम टुरस की।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनी प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य में SIR अभियान चल रहा है, जिसके तहत BLO घर घर जाकर 2,64,00,000 वोटरों की जांच कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि QR कोड वाले प्रपत्र को सावधानी से भरें और हस्ताक्षर कर रसीद लें। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। श्री बाउरी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया। देवघर एम्स में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जल्द ही

0: ECHS स्वास्थ्य सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें ओपीडी और जांच में प्राथमिकता मिलेगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के निर्देश पर प्रबंध ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति से एम्स में विशेष काउंटर बनाकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर में आज मिशन परिवार विकास अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ अगले 3 महीनों तक जिले के विभिन्न गांवों में घूमकर लोगों को परिवार नियोजन, सही उम्र में विवाह और बच्चों के बीच सुरक्षित अंतर रखने के प्रति जागरूक करेगा। देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार में कम अनाज देने वाले डीलर और मोहनपुर प्रखंड में म्यूटेशन मामलों में लापरवाही की जांच के लिए समिति गठित की है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए उन्होंने अवैध भूमि कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के युवाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी दोस्त अनिष्का।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, खुश और अपने दिन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौसम की जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, बारिश का मौसम।
0: बिल्कुल प्रीति, तेज धूप और उमस भरे दिनों के बाद जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है और बारिश की पहली बूंदें धरती को छूती हैं, तो मन अपने आप खिल उठता है।
1: सही कहा, बारिश की पहली फुहार के साथ मिट्टी में उठने वाली भीनी भीनी खुशबू जैसे पूरे वातावरण को महका देती है। और बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि ढेर सारी यादें भी साथ लेकर आती है।
0: बचपन में कागज की नाव बनाकर बहाना, दोस्तों के साथ बारिश में भींगना, स्कूल की छुट्टी के समय अचानक बारिश होना, ये छोटी छोटी बातें आज भी याद आती हैं।
1: बिल्कुल, हर किसी की बारिश से जुड़ी कोई ना कोई प्यारी याद जरूर होती है। किसी को खिड़की के पास बैठकर चाय पीना पसंद है, तो किसी को बारिश देखते हुए अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना, और कुछ लोगों को सिर्फ बारिश की आवाज सुनना ही बहुत सुकून देता है।
0: और अगर बात खाने पीने की हो तो बारिश का मौसम पकौड़ों, भुट्टे, समोसे और अदरक वाली गर्मा गर्म चाय के बिना कैसे पूरा हो सकता है।
1: बिल्कुल, लेकिन स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि और कोशिश करें कि बाहर का खुला या अस्वस्थ खाना कम खाएं।
0: दोस्तों, बारिश का मौसम सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को नई जिंदगी देता है। सूखे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, नदियाँ और तालाब भरने लगते हैं, पक्षियों की चहचहाहट बढ़ जाती है और चारों ओर हरियाली नजर आती है।
1: और हमारे देश के किसानों के लिए तो यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छी बारिश होने पर खेती को लाभ मिलता है, फसलें अच्छी होती है और इसका सीधा असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है।
0: इसलिए मानसून का महत्व सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हर मौसम में भी कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। बारिश के दौरान जल भराव वाली जगहों से बचें, बिजली चमकने पर खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े ना हों,
1: साथ ही अपने आसपास पानी जमा ना होने दें क्योंकि जमे पानी में मच्छर पनपते हैं और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। छोटी छोटी सावधानियां हमें स्वस्थ रख सकती है।
0: आज के समय में हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में इतना उलझ जाते हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। बारिश का मौसम

0: हमें थोड़ा रुककर गहरी सांस लेकर और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने का मौका देता है।
1: बिल्कुल, कभी कभी बस कुछ पल बालकनी या खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना भी मन को शांति देता है। ऐसे पल हमें ये याद दिलाते हैं कि खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में भी छिपी होती है।
0: दोस्तों, बारिश का मौसम जितना सुहावना होता है, उतना ही इस मौसम में अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। थोड़ी सी सावधानी हमें कई परेशानियों से बचा सकती है।
1: बिल्कुल तनिष्का, बरसात के मौसम में अक्सर मौसम में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया और मच्छर के पनपने की संभावना

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के उस हिस्से का जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन यानी 3 जुलाई को भारत और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी।
4: बिल्कुल, इतिहास में सिर्फ बीते हुए समय की जानकारी ही नहीं देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि समय के साथ समाज, विज्ञान और दुनिया किस तरह आगे बढ़ी है। तो आइए जानते हैं 3 जुलाई से जुड़ी कुछ खास बातें।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को कम करने के लिए हर साल मनाया जाता है।
4: आज ही के दिन 1928 में लंदन में पहली बार कलर टेलीविजन प्रोग्राम का प्रसारण किया गया था।
3: 1962 में अल्जीरिया को लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस से आज़ादी मिली।
4: 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
3: तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात भारत और जापान की। हाल ही में दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा, तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में नए समझौते हुए।
4: तकनीक की बात चली है तो एक और दिलचस्प खबर, भारत की पहली निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग और तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्रों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी।
3: अब मौसम की बात करते हैं। देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है तो कई इलाकों में बहुत तेज बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है।
4: दोस्तों, बातें हम और भी करेंगे, लेते हैं एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि पहली बारिश की भीनी भीनी खुशबू का वैज्ञानिक नाम पेट्रिकोर है?
1: एक बिजली की चमक सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म हो सकती है, जिसका तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
0: कोआला एक ऐसा जानवर है जो लगभग 18 से 22 घंटे प्रतिदिन सोता है।
1: बांस दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाले पौधों में से एक है। कुछ प्रजातियां एक दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं।
0: डॉल्फिन एक दूसरे के नाम जैसी विशेष सीटी सिग्नेचर विसल से पहचानती है। तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बातें तो होती रहेंगी, उससे पहले लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, यादों का मौसम मानसून। बारिश का नाम सुनते ही मन में ढेर सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहीं कागज़ की नाव, कहीं भीगती गलियां, तो कहीं गरम गरम चाय और पकोड़े की खुशबू।
1: बिल्कुल, बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एहसासों का नाम है। पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू शायद ही कोई भूल पाए। बचपन में स्कूल से लौटने समय बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ पानी में छप छप करना और घर पहुंचकर माँ की डांट आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है।
0: सही कहा आपने, मानसून हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी धूप है तो कभी बारिश, लेकिन हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। गाँव में तो बारिश का अलग ही महत्व है, खेतों में हरियाली छा जाती है और किसानों के चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है।
1: और शहरों में भी बारिश का अपना रंग होता है। छतरी लेकर निकलना, सड़कों के किनारे चाय की दुकान पर रुकना, दोस्तों के साथ गर्म गर्म भुट्टा खाना, ये छोटे छोटे पल ही तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं।
0: बारिश का रिश्ता हमारे गीत संगीत से भी बहुत गहरा है। हिंदी फिल्मों के कई यादगार गीत बारिश पर बने हैं, जिन्हें सुनते ही मन भावुक हो जाता है।
1: लेकिन दोस्तों, बारिश का आनंद लेते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी है। भीगने के बाद सूखे कपड़े पहने, साफ पानी पिए, आसपास पानी जमा ना होने दे और मच्छरों से बचाव करें। अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। तो दोस्तों, इसी के साथ हो चला है समय आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त तनिष्का।
0: मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति।
1: हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: सुबह के पहले सायरन से लेकर रात की आखिरी ईंट तक, जिसकी हथेली की लकीरों में देश का नक्शा बनता है, जिसके पसीने की बूंद से हर मशीन में जान आती है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपके इस सफर की हमसफर पूजा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आपका अपना श्रमिक लोक कार्यक्रम।
1: और आज इस मंच में जया का भी पहला जोहार। और पूजा, आज हम अपने कार्यक्रम में क्या क्या लेकर आए इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं। तो पूजा, ये बताओ कि हमारे जो श्रमिक साथी हैं वो फिलहाल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अभी फिलहाल हमारे कार्यक्रम को सुन भी रहे होंगे, क्योंकि आज पूजा है और पूजा जब रहती है तो बहुत सारी जानकारियां शेयर करती हैं है ना। तो पूजा, आज हम सबसे पहली जो जानकारी शेयर करने वाले ना, तो ऐसे तो कहते हैं ना कि हमारी जो श्रमिक साथी है ना, अपने काम में हमेशा व्यस्त होते हैं और व्यस्त होना अच्छी बात भी है।
0: बिल्कुल, व्यस्त होना अच्छी बात है। काम के व्यस्त होने से ये पता चलता है कि आप अपना जो समय है वो खाली कहीं नहीं दे रहे, आप अपना समय काम को दे रहे हैं और इस व्यस्त वाले समय में आप सभी को बहुत सारी जो जानकारियां है ना वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारा कार्यक्रम हम लेकर आते हैं जिसमें हम तरह तरह की योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उन योजनाओं के साथ जुड़े और उनसे फायदा ले सके।
1: तो हम सबसे पहले आज अपने श्रमिक साथियों को जो जानकारी देंगे वो अटल पेंशन योजना की जानकारी देने वाले हैं पूजा। और आज ये जो अटल पेंशन योजना है ना, ये भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई है और ये काफी एक कहते ना कि गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है।
0: बिल्कुल, और इसे आप जैसे 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1000 से 5000 तक की जो मासिक पेंशन है ना वो मिलती है। 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, इसका जिसका अपना बैंक अकाउंट हो, उनके पास अपना आधार हो, तो वो इस योजना के साथ बड़ी आसानी से जुड़ सकता है।
1: और निवेशक जो होते हैं ना, वो अपनी क्षमता और जरूरत के अनुसार जैसे 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 की मासिक पेंशन चुन सकते हैं पूजा। और प्रीमियम की जो राशि है ना, आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन पर निर्भर करती है।
0: बिल्कुल, जैसे आप मान सकते हैं कि आपकी वर्ष आपकी हो रही है 18 वर्ष की आयु, तो आप 5000 की मासिक पेंशन जो पेंशन का जो विकल्प है वो चुन सकते हैं। तो आपको हर महीने केवल 210 रुपए का जो योगदान है वो करना होगा।
1: और साथियों, अटल पेंशन योजना किफायती है और कम आय वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि जो अंशदान है ना उसकी जो राशि है ना पूजा बहुत ही कम है और निवेशक की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को वही पेंशन मिलती रहती है और दोनों की मृत्यु के बाद जमा किया गया जो मूलधन होता है ना, वो जो नॉमिनी होते हैं ना, उन्हें वापस कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है।
0: सचमुच ये एक ऐसा कह सकते हैं आपके पास एक ऐसी योजना है जिससे आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हुए भी अपने बुढ़ापे की कह सकते हैं सही से तैयारी कर सकते हैं, जहां आप बिल्कुल जो आपने सालों भर कमाया उसका एक तरह से आपको मुआवजा मिल रहा है, जो आप बैठ के अपने जीवन को सही तरीके से सुचारू रूप से चला सकें।
1: यानी कि ये जो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और उनकी भलाई के लिए बहुत ही जरूरी भी है पूजा। और साथ ही साथ ये जो वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ ना श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और ये जो आयुष्मान भारत योजना है ना, ये भी असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान है।
0: बिल्कुल, तो सफर में और भी कुछ है या हम पहले ढेर सारी जानकारियां ही देंगे आज?
1: देंगे जरूर। तो सफर में तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं समझ रही हूँ कि तुम चाह रही हो कि पहले हम एक गीत अपने श्रमिक साथी को सुना दें, फिर बाकी की बातें तो हम करते रहेंगे।
0: बिल्कुल।

0: तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रमिक लोग पूजा और जया के साथ। अब सफर में आगे बढ़ते हैं और चंद लाइनें मैंने लिखी है वो आपको भी सुना देते हैं। उन हाथों को जो रजिस्टर पर दस्तखत करते हैं और उन हाथों को भी जो मिट्टी में सने हैं, संगठित क्षेत्र के श्रमिक साथी जिनके पास आईडी कार्ड है, पीएफ की पर्ची है और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो वो बेनाम हमारे योद्धा हैं जो बिना पते के भी देश की इमारत खड़ी करते हैं।
1: वाह, क्या बात कही हो पूजा। और भारत में लगभग पूजा 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। खेतिहार मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक, बीड़ी कत्था बनाने वाले, मोची कारीगर, ये सभी ना जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी
0: अनिश्चित
1: है। बिल्कुल कोई नियुक्ति पत्र नहीं है इनके पास। कुछ तो मौसमी काम करते हैं जैसे कि ईंट भट्टा में निर्माण है, खेती है, 4 से 6 महीने काम करते हैं, उसके बाद इन्हें बेरोजगारी हो जाती है।
0: बिल्कुल, कई बार तो ठेकेदार ही इन मजदूरों की जो कमाई है ना वो बीच में ही खा जाते हैं। इन्हें जो रकम मिलनी चाहिए वो रकम तक इन्हें नहीं मिलती, जिसके चलते इनका जो दिनचर्या है वो बहुत अव्यवस्थित हो जाता है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है और तरह तरह की समस्याएं भी इन्हें झेलनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, कई दफा काम के दौरान इन्हें चोट लग जाती है, जख्म पड़ जाते हैं, लेकिन इलाज के लिए भी इन्हें कोई मदद बाहर से नहीं मिल पाती, तो वो उस वक्त अपना जो कह सकते हैं जमीन जायदाद जो गहने होते हैं उसे बेचकर वो अपने जीवन को सेफ यानी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं,
1: जो कि बहुत ही दिक्कत होती है इन्हें आगे बाद में। और इलाज के लिए जैसा कि आपने बताया कि उन्हें अपने घर तक को भी बेचना पड़ता है, जेवर भी। तो हमारे बहुत सारे और कुछ ऐसे भी मजदूर होते हैं जिन्हें काम तो करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, तो भी उन्हें उनकी जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और अगर श्रमिक महिलाओं की हम बात करें ना, तो उन्हें जो मातृत्व लाभ मिलना चाहिए वो भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाते। यहाँ तक कि महिला कामगार को जो डिलीवरी के समय भी ना तो छुट्टी और ना ही पैसा मिलता है, जो कि बहुत बुरी बात है।
0: ये असंगठित क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उन्हें इस तरह के जो समस्याएं हैं वो आए दिन देखनी पड़ती हैं, लेकिन इसलिए देखनी पड़ रही हैं क्योंकि वो अब तक जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन तक कह सकते सही मायने में नहीं पहुंच पाई है, या फिर वो नहीं जान पाए हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप हमेशा हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमारे कार्यक्रम में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक उन सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं जहां से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के दौरान आपको कई बार हम लोगों ने बताया है कि ई श्रम कार्ड होता है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए होता है, जो आप उसमें अपना रजिस्टर करते हैं, अपना उस पोर्टल पर जाकर अपना नाम दर्ज करते हैं, आपका भी एक आईडी बन जाता है और आप सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसे सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं और ऐसे जुड़ते हैं जहां बिचौलियां भी नहीं होते।
1: जैसा कि पूजा ने बताया कि आपको ई श्रम पोर्टल से जुड़ना है और जहां आपका नाम दर्ज हो जाता है तो आप अटल पेंशन योजना से भी जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें आप 18 से 40 साल के जो श्रमिक है ना वो 42 तक से लेकर 210 रुपया महीना जमा कर सकती हैं और 60 साल के बाद 1,000-5,000 रुपया महीना गारंटी पेंशन पा सकते हैं, जबकि हमने इसके बारे में पहले भी हमने
0: कह रखा है। बिल्कुल, तो बस करना इतना है आपको कि जो भी जानकारियां सरकार आपके लिए लेकर आती है, अभी तो सभी कह सकते हैं जितने भी हमारे श्रमिक हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, वो पहले के मुकाबले बहुत हाईटेक हो चुके हैं, उनके पास भी बहुत सारी जानकारियां बहुत आसानी से पहुंच जाती है। जैसे कि सबके पास अभी स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में आप अगर अपना ई श्रम कार्ड अगर बनवा लेते हैं तो आपको जो भी योजना है उसकी तो जानकारी मिल ही जाती है और कैसे करना है, कब कहाँ पैसे जमा करना है, किस योजना से आपको कब जुड़ना है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद जान जाते हैं।
1: और पूजा, हम अपने श्रमिक साथियों को आगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी जानकारी देंगे जो कि इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन हमें लगता है कि इससे पहले हम अगर एक गीत सुना दें या फिर वार्ता तुम्हारे ऊपर है कि हम बोलो क्या सुना सकते हैं।
0: नहीं, एक गाना सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर जानकारी आपको देते हैं।

0: यार बहुत ही खूबसूरत सा गीत था पूजा। और अब हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और एक और जानकारी हम अपने श्रमिक साथियों को देते हैं। हमने इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे अटल पेंशन योजना के बारे में और अब हम चर्चा करने वाले हैं आयुष्मान योजना के बारे में। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे जो श्रमिक साथी हैं ना, उनकी वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी हम सभी को बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि आयुष्मान भारत योजना जो है ना, वो असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वरदान है।
1: बिल्कुल। और आयुष्मान भारत योजना प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान करती है, जिसके जरिए जो भी बीमित जो व्यक्ति है या जो श्रमिक है वो देश भर के कहीं पर भी इसका फायदा ले सकता है।
0: और गंभीर बीमारियों और आपातकालीन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी और दवाओं का पूरा खर्च सरकार उठाती है। और जिन श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल या श्रम विभाग में पंजीकरण कराया है, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलता है, जैसा कि पूजा ने पहले भी बताया है इस बात को।
1: बिल्कुल। तो आप जरूर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। फिलहाल जैसे घड़ी की सुइयां कह रही कि बहुत कम वक्त है हमारे पास, तो कुछ चीजें और भी हैं, तो हम चलिए एक वार्ता सुन लेते हैं जहां हम जान पाएंगे नई श्रम संहिता के बारे में, जिसे लेकर आई है मौली सिन्हा।
2: चौथा श्रम संहिता अर्थात व्यवसायिक। नमस्कार श्रमिक साथियों, आज मैं सभी के समक्ष भारत की श्रम व्यवस्था, ऐतिहासिक परिवर्तन, चौथा श्रम संहिता अर्थात व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूं। श्रमिक किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वे अपने श्रम, परिश्रम और कार्य कौशल से समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेतों में काम करने वाले किसान, कारखानों में कार्यरत मजदूर, निर्माण स्थलों पर पसीना बहाने वाले श्रमिक, सभी राष्ट्र निर्माण के मौन शिल्पकार हैं। श्रमिक का अर्थ है केवल शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह हर व्यक्ति जो अपने मेहनत से समाज के लिए मूल सृजित करता है। श्रमिक के बिना ना तो उद्योग चल सकता है, ना ही सड़कें, भवन, पुल, स्कूल और अस्पताल बन सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था का आधार श्रमिक वर्ग ही है। भारत जैसे विकासशील देश में श्रमिकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये श्रमिक सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समाज का यह वर्ग कितना संवेदनशील और आवश्यक है। आज मैं सभी के समक्ष देश के श्रमिकों के लिए लाए गए प्रावधान को श्रोतागण के सामने रखना चाहती हूँ। यह संहिता 13 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाई गई है, जिनमें फैक्ट्री अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, अनुबंध श्रम अधिनियम 1917 शामिल है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। इन लेबर कोड श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रमिकों के हितों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियां और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इसलिए समाज और सरकार का दायित्व है कि श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिले। हमें श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले भारत में 29 अलग अलग श्रम कानून थे, उन्हें सरल, प्रभावी और श्रमिक हितैषी बनाने के लिए सरकार ने 4 श्रम संहिताएं बनाई। मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979, भवन एवं अन्य शून्य निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। कारण स्पष्ट है, औद्योगिकरण, तकनीक और वैश्वीकरण के इस युग में कार्यस्थलों की प्रकृति बदल चुकी है। ऐसे में श्रमिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को कानूनी संरक्षण देना समय की मांग बन गई है। साथियों, इस संहिता का मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना, कार्यस्थल पर मानवीय एवं गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना। अब मैं इस संहिता के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। पहला, कार्यस्थल की सुरक्षा। इस संहिता के तहत नियोक्ता की यह जिम्मेवारी तय की गई है कि मशीनों, औजारों और कार्य प्रणाली श्रमिकों के लिए सुरक्षित हो, दुर्घटना की।
1: तो चलिए, सफर में अब वक्त हमें विदा कहने को कह रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पूजा
0: और जिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। हजारीबाग सदर से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने जनता की समस्याओं के निवारण के लिए कटकमदाग प्रखंड से जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमीन विवाद, आवास योजना, राशन कार्ड जैसी समस्याओं को लेकर पहुंचे और प्रखंड कार्यालय की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विस्तृत चर्चा की। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग नगर भवन में दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में पहुंची 13 कंपनियों ने लगभग 50 बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ते हुए ऑफर लेटर सौंपे। रामगढ़ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपायुक्त ऋतुराज सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों और समाज सेवियों ने निक्षय मित्र की भूमिका निभाते हुए टीबी मरीजों को पोषण पोटली उपलब्ध कराई। इस सराहनीय पहल में जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय डॉक्टरों ने स्वेच्छा से वित्तीय सहायता प्रदान की। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र के किताहा तू गांव में 75 वर्षीय इतवारी देवी की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। डायन के संदेह में पड़ोसी दीनय मुंडा और मंगल मुंडा ने धारदार हथियार से हमला किया था। एसपी ऋषभ गार्ग के निर्देश पर गठित टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धनबाद में होमगार्ड भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को उपायुक्त अजय रंजन से मिलकर मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन जल्द पूरा करने की मांग की। 2017 की लंबित बहाली का असर पड़ने की आशंका पर उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि वर्तमान प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी और शेष औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

0: अन्न कर वृद्धि में देश कर समृद्धि।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम में सब सुनवाया भाई बहन मन के मोनिका भाटले जोहार और अरविंद भाई रौर को जोहार।
0: जोहार जोहार मोनिका बहन और कार्यक्रम सुनविया सब भाई बहन मन के हमार बटले भी बहुत बहुत जोहार है रोल मन का स्वागत है भाई बहन मन। और मोनिका हाल समाचार कैसन है?
1: हाल समाचार नगदे है अपन कहो।
0: एकदम हमरो बटे नगद है, ढेर दिन बाद भेंट हुआ थे।
1: कार्यक्रम कर माध्यम से चल एक दूसरे से भेंट मुलाकात भी हो जाए तो बड़ी खुशी हो वेला है नहीं।
0: एकदम एकदम
1: क्योंकि अभी का डेट में समय में भाई सो मन अपन अपन काम में इतना ही व्यस्त हती कि मत कहूँ।
0: हाँ,
1: और गांव भर में तो दिन बग रहे व्यस्त हती।
0: हाँ, अब एकन खेती बाड़ी कर दिन है और भरखर अब तो देखो बीड़ा करे कर बेरा हुई जाए। पानी जैसन भी आवत है, पानी तो तनिसन टानत है, जे पानी जैसन आवे रहे मानसून में वैसन बरखा एखन नहीं हुआ थे, लेकिन बहुत ठाव में पानी आ है और किसान मन बीड़ा कर तैयार शुरू कर दे हैं।
1: सही बात है भाई। और हमारे घर बटे तो देखा थे घर घर सब अपन बीड़ा करके रेडी कर दे हैं और जनत तनी तनी तो बिहन भी निकल जाए। हमको अरे हुआ बहुत जल्दी बिचड़ा तैयार कर रहे थे,
0: बहुत बढ़िया है। तनी आगे आगे खेती कर ले तनी ठीके रहे ना, लेकिन भरखर खेती अगर कहब नहीं तो एखन सब किसान मन जुटल हैं। और देखो साल भर कर खेती है के मोनिका बहन, धान कर फसल ऐसा फसल है कि हर किसान अपन खेत में लगाबे करेला। कारण है कि सीधे हमरे मन करी अपन जे अनाज है और साल भर कर जे अपन पूंजी है से कर से जुड़ल खेती है के तो सब किसान मन करे नहीं के।
1: सही बात है भाई। और कल की देखो समय से अगर कौन में काम के कर रहे थे तो बढ़िया हो वेला फसल है ना। और देखो भाई हमरे तो हमरे कर भारत देश में हमरे कर किसान भाई बहन मन सब बेरा कोनो ना कोनो फसल के लगाते रहती ला है नी।
0: हाँ, हाँ।
1: अब जैसे फसल कर संगे का कोनो हो गेला कि जैसे फूल कर खेती कर रहती, पशु पालन मन कर रहती तो ये सब यानी कि अलग से हमरे के मुनाफा हो गेला है नी।
0: हाँ हाँ एकदम सही कहा थी। आय कर जे साधन है उके बढ़ाएला और हमरे मन कर जैसे सरकार कर भी कोशिश है कि कैसे किसान मन कर जे आय है आर्थिक स्थिति है से सुधरी और दुगुना ही मन कर आमदनी होगी कर प्रयास सरकार बटले भी करल जाते। तो हमरे मन के भी दू कदम आगे बढ़ा के आगे चले है तो उकर में एकदम ठीक कहली। व्यावसायिक खेती बटे हमरे मन के बगरा से बगरा ध्यान देवे के चाहिए। बहुत किसान मन इकर से जुड़ल भी है। फूल कर खेती जैसन उड़े कहली, फूल कर खेती बहुत फायदेमंद है।
1: और आंगना में भी तो सब बटे कितना फूल दिशे थे, रकम रकम कर फूल दिखाते फोटो में रोरे दिखा रही, बहुत सुंदर लग रहा, बहुत बेस भी लग रहा
0: एकदम
1: पूरा फूल से सजा दे ही है नहीं।
0: बढ़िया लगे ला जब देखो अपन आसपास में फूल मन कर अगर खेती कर थी नहीं तो बिहाने जब उठब नहीं रोरे तो सबसे पहला नजर जब फूल में पड़ेला तो फूल तो ऐसे भी खुशबू कर साथ साथ बड़ा क्या कहे ना कि वातावरण मन के भी खुश करेला, वातावरण भी शुद्ध करेला। तो और देखो फायदेमंद भी है कतना कि विशेषज्ञ मन से अगर उन्हें बात करब हमरे मन मिलते भी रही ला तो मन बताए ना कि हमरे कर राइज में इकर बहुत संभावना है खेती कर।
1: सही बात है भाई। और देखो अगर हमरे फूल कर खेती करा थे तो देखो शुभ काम में भी फूल कर प्रयोग हो गया, फिर और दुख में भी प्रयोग हो गया है ना, यानी कि सब काम में तो फूल कर बिना हमरे कर जिंदगी अधूरा है।
0: एकदम सही कहते रोड़े, शादी ब्याह हो गलक चाहे पर्व त्योहार हो गलक चाहे रोज दिन कर काम में देखो आदमी मन मंदिर जाए ना घर में पूजा पाठ होला तो रोज दिन फूल कर काम रहबे करेला, चाहे मरनी जीनी जितना भी है सब चीज में फूल कर दरकार लगेला। और देखो फूल कर मांग भी बहुत ज्यादा है, खास करके ऐसा बड़ बड़ जो त्योहार मनावेला निशेकर में तो फूल कर देखब नी दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएला मोनिका बहन। अब तो धीरे धीरे हमरे मन भी अब आधुनिकता वाला युग में जी एक लाएगी तो आदमी एक दूसरे से जब मिले ना तो क्या कहे ना गुलदस्ता दे के एक दूसरे का स्वागत करें ना।
1: हाँ भाई हाँ, बहुत नगर कहानी। और काल के देखो ताजा ताजा भी रहेगा, बढ़िया दिख रहा तो दे के ही मन गदगद हो जाए। हाँ,
0: तो फूल का खेती कर ले बहुत फायदा है। और इकर में सबसे बड़ फायदा का हो नहीं कि पानी का बहुत कम इकर में जो दरकार लगेला और समय भी बहुत कम लगेला, माने एक साल में रोरे 3 से 4 फसल ले सकीला और एक फसल
1: फायदा हो।
0: और एक बार एक धाम अगर

0: बड़ी नगद गीत रहे और देवदास विश्वकर्मा कर गावली गीत रहे उनकर संगी मनकर। और देखो खेती बाड़ी से जुड़ल गीत रहे, संदेश से भरल पूरल गीत रहे। और देखो हमरे मन तखन फूल कर खेती कर बारे में बात करत रही। अब धीरे धीरे और किसान मननी व्यावसायिक जे खेती है से के तो अपनाते हैं, संगे संगे अबनी माटी और जे हमरे कर पर्यावरण है उकर बटे भी किसान मन कर ध्यान है कि कैसे उके शुद्ध रखल जाए, माटी कर स्वास्थ्य कैसे बनाल जाए।
1: रोरे नगर देख बात कहली भाई काली के देखो हमरे कर माटी अगर बढ़िया रही तो हमरे कर कोई भी फसल के अगर हमरे मन उत्पादन कर रही तो बढ़िया हुई है नहीं, और माटी ही खराब रही भाई तो कैसे उत्पादन हुई, तब तो
0: एकदम
1: हमरे के बहुत बड़ा नुकसान भी होगी
0: हाँ
1: और आवे वाला समय में बहुत बगरा घाटा भी होगी,
0: एकदम।
1: तो हमरे कर
0: तो
1: किसान मन भी पढ़ लिख के बगरा जाग भी जाए हथिन
0: हाँ हाँ
1: है नहीं।
0: तो देखो इकर ले सबसे ज्यादा जरूरी है नी कि हमरे मन के जैविक खेती करे के लिए। और बहुत किसान मन करत भी हैं और जे किसान मन नहीं करत हैं उ मन ले आइज हमरे मन एक ठो बढ़िया जानकारी लेके।

0: रोरे सुपर काली भाई, तो चलो जानकारी करवाइला। झारखंड में जैविक खेती कर संभावना है और इके बताते हैं श्रीमती रिमी सिंह और इनकर से बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों अपने प्रदेश झारखंड की हम बात करें तो यहाँ जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। वक्त आ गया है, समय की मांग है कि हम जैविक खेती की ओर अपने कदम बढ़ाएं। जैविक खेती करने के एक फायदे आपके साथ ये है कि इसमें किसी भी तरह की रासायनिक दवाओं का छिड़काव नहीं होता है। फसल की जो उत्पादन होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, दाने में चमक होती है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि यदि हम रासायनिक दवाओं छिड़की हुई फसल का खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है। तो वक्त की मांग है, समय की चाहत है कि हम जैविक खेती की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे ही सही, शनय शनय ही सही। और हमारे कृषि मंत्री जी भी कहते हैं कि ऐसे फसल हमारे किसान साथी लगाएं जिसमें लागत कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जैविक खेती की कितनी संभावनाएं हैं झारखंड में और कौन सी फसलों का हम चयन करें जो कम खर्च में, कम लागत में बम्पर मुनाफा दे, अच्छा उत्पादन दे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं कृषि उद्यमी श्रीमती रिमी सिंह साहब। रिमी सिंह जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार संजीव जी, और किसान भाइयों को भी जोहार।
1: देखिए झारखंड की मिट्टी लाल है और लाल मिट्टी इस बात का घोतक है कि इसमें पौष्टिकता भरी भी है, पोषक तत्व तो इसमें प्रचुर मात्रा में है। तो क्यों ना इस मिट्टी को हम दोहन करें और अच्छा उत्पादन हम इससे ले पाए। तो क्या संभावनाएं आपको दिखती है झारखंड में जैविक खेती की और कौन से फसलों का हम चयन करें?
2: झारखंड की मिट्टी लाल है, यहाँ आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसमें संभावना बढ़ जाती है कि हम मिलेट्स का उत्पादन कर सकते। झारखंड इसके लिए जाना भी जाता है और अब भारत सरकार के सहयोग से, पहल से मिलेट को दुनिया भर में पहचान मिली है। झारखंड में मड़ुआ, सावा, कोदो, चीना जैसे कई सारे मोटे अनाज उगाए जाते हैं और जाहिर सी बात है जैविक खेती सिर्फ पुण्य कमाने के लिए नहीं करना होगा। किसानों का पेट भी भरा होना चाहिए, उनका जेब भी भरा होना चाहिए। जेब होगी भरी तो मिजाज भी होगा हरा। इसलिए आप सिर्फ धान, गेहूं इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। एकीकृत जो जैविक कृषि मॉडल है उसको अपनाइए। खेती में आप मोटे अनाज भी उगाइए, उसको इंटरनेशनल मार्केट मिलता है। यहाँ के किसान ना दुनिया के किसी भी कोने में इन चीजों को बेच सकते हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज के डेट में, कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है।
1: जी मड़ुआ यहाँ काफी डिमांड में है और मड़ुआ के बहुत सारी प्रोडक्ट, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो केक हो या मड़ुआ की रोटी हो, इसकी पौष्टिकता बहुत है। प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए आह्वान कर चुके हैं कि मोटे अनाज की ओर हम अग्रसरित हों और मोटे अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है। समय को देखते हुए, समय चक्र को देखते हुए किन किन फसलों का चयन किया जाए ताकि हम जैविक खेती सही से कर सके, उत्पादन अच्छा मिल सके?
2: देखिए जैसे मोटे अनाज तो झारखंड के लोग बहुत समय से उगा रहे हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो एक्सपर्टाइज उनके पास है इसके लिए। पर उसके साथ साथ हम दो चार चीजें और कर सकते हैं। जैसे मौसम के हिसाब से हम बेमौसमी सब्जी जब उगाते हैं, अभी के मौसम में अगर आने वाले कुछ महीनों में बाजार में हरी सब्जियां लगभग गायब हो जाएंगी, तो अभी अगर किसान भाई मोटे अनाज की खेती के साथ साथ कुछ सब्जियां जैसे लौकी, करेला या बैंगनी वाली फूल गोभी, पीला वाला तरबूज ये भी लगाते हैं ना, तो बाजार में जब ये सब्जियां अगले दो तीन महीने बाद तैयार होके आएंगी तो इसकी बहुत अच्छी कीमत उनको मिलने वाली है।
1: अभी समय है कि अभी इसे तैयारी
2: शुरू कर दी जाए। मशरूम भी झारखंड में बहुत ज्यादा उगता है और उसको पसंद भी किया जाता है, बाजार भी अच्छा मिल जाता है और छोटे जगह में हो जाता है, छोटे से कमरे में भी हो जाता है, तो मशरूम भी उगा सकते हैं।
1: जी तो फसलों के चयन में यदि हम सावधानी बरतते हैं तो जाहिर सी बात है हम बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। और समय का भी ध्यान रखें, जब नए नए फसल, नई नई सब्जियां मार्केट में आती हैं तो उसकी कीमत भी अधिक होती है। रमेश सिंह जी, जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं तो जैविक खाद है आपके खेतों पर ही उपलब्ध हो जाता है, तो किस प्रकार हम ध्यान दें, किसान साथी किन किन बातों का ख्याल रखें कि बहुत सारे सूखा कचरा आपके पास होता है, सूखी पत्तियां होती है आपके पास, आपके पास पशु होती है तो उसके गोबर है उससे भी हम जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं और कम पैसे में बढ़िया खाद खेतों में ही निर्माण कर सकते हैं, तो कैसे किसान साथी इस चीजों का दोहन करें?
2: जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। खेती के साथ साथ पशुपालन लगभग सभी लोग करते हैं। अब वो चाहे कुक्कुट पालन करें, मुर्गी बत्तख पाले, या फिर बकरी गाय, तो उनका जो अवशेष होता है, जो उनका मलमूत्र होता है, उसको खाद बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सूखी पत्तियां, सड़े गला, किचन का कचरा, वो सब भी खाद बनाने में उपयोग होता है। अगर आप मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, तो मशरूम उत्पादन के बाद जो बचा हुआ स्ट्रॉ या पुआल रहता है जिसपे आपने मशरूम उगाया है, वो तो समझिए काला सोना है। उसको आप अपने खेतों में डालते हैं तो उसमें यूरिया से ज़्यादा नाइट्रोजन है, साथ में फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। तो यूरिया और डीएपी पे जो आप खर्च करते हैं और जो रसायन खेत में डाल रहे हैं, वो खर्च भी बच जाएगा, उससे बेहतर वो प्रोडक्टिविटी देगा, फसल ज़्यादा अच्छा आएगा आपके पास, उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। हाँ, अच्छी कीमत के लिए एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आप अपने खेत के बाहर बोर्ड लगाइए, यहाँ जैविक उत्पादन होता है। आप जिस स्टोर में या जहाँ अगर आपका सब्जी का ठेला है या कहीं भी आप बेच रहे हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगाइए, साफ शब्दों में वहाँ लगाइए कि यहाँ जैविक, बिना रसायन का या रसायन मुक्त सब्जियां मिलती हैं, फल मिलता है। लोग 10 रुपए ज़्यादा दे के आएंगे और आपके पास जरूर आएंगे।
1: लोगों में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग जैव उत्पाद की ओर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है किसान साथियों कि आप मोटे अनाज का या जैविक उत्पाद का बाजारीकरण करें। जब तक आप मार्केट में नहीं जाएंगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दर्शाएंगे नहीं, तब तक आपको बढ़िया रकम नहीं मिल पाएगा, बढ़िया आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहचानने की आवश्यकता है कि किन फसलों में, जिनमें हमारी लागत कम आ रही है और उत्पादन बम्पर हो रहा है, भरपूर उत्पादन हो रहा है, यदि उस चीज़ को हम पहचान जाते हैं, और जैसा आपने रिमी सिंह ने बताया कि वहीं पर आपके खेतों में ही, आपके पास ही, वहीं पर सारा चीज़ उपलब्ध है, पहचानने की ज़रूरत है। गाय है, भैंस है, बत्तख है, कुक्कुट है, बहुत सारी चीज़ें आपने पाल रखा है, आपने एकीकृत फार्मिंग कर रखा है, वहीं पर तालाब भी है, तो इस चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है। जो बढ़िया किसान है, जो बढ़िया कृषक है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा है, जिसे हम एकीकृत फार्मिंग कर रहे हैं, खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन का भी काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और साथ साथ मछली भी पाल रहे हैं। तो एक साथ जब हम फार्मिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अच्छा कमाएंगे और देश के विकास में, देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। तो कैसे किसान आत्मनिर्भर बने, कहते हैं ना कि जब किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा, जिस दिन किसान के पास मोटी रकम आ जाएगी, कहते हैं ना आप, जैसे शुरू में आपने कहा हमारे पास अभी रकम होगी तो चेहरे पर लाली होगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। तो कैसे किसान साथी आत्मनिर्भर बने, देश के विकास में अपनी भागीदारी रखें और जैविक उत्पाद अधिक से अधिक उसका उत्पादन करें।
2: देखिए संजीव जी, हमने खेती कर ली, उगा लिया सब चीज़, उसको बाजार, सही बाजार तक पहुंचाना और सही कीमत लेना, ये हमारे हाथ में है। हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां तो आपने बेच दी, लेकिन जैसे मशरूम की हम बात कर रहे हैं, उसकी कीमत अच्छी मिलती है, फिर भी अगर आपके पास सरप्लस है, आप उसको सुखा सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, या मोटे अनाज तो वैसे भी जल्दी ख़राब नहीं होते। मशरूम के पाउडर को प्रोटीन बनाने वाली कई कंपनियां खरीदती हैं और आज की तारीख में लोग प्रोटीन बहुत ऊंची कीमत पे खरीद रहे हैं, तो उसकी कीमत आपको मिल जाएगी। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जाते हैं, मैंने जैसा बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जा सकते हैं, ये सबके लिए सुलभ है, आसान है, तो वहाँ आपको इसकी कीमत अच्छी मिल जाती है।
1: तो किसान साथियों, आज से ही और अभी से ही जैविक उत्पाद के लिए आप अपनी कमर को कस लें, अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक आप इस्तेमाल कीजिए, और जैसा आप बता रहे हैं, आप अपने आसपास एक बोर्ड लगा दीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि आप जैविक उत्पाद तैयार करते हैं, जिसकी आपकी कीमत भी अच्छी मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रिमी सिंह, कृषि उद्यमी, आप इस कार्यक्रम में, और किसानों को जैविक खेती पर कैसे ध्यान दें, कैसे आगे बढ़े, इस पर आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो भाई, अखन हमरे मन नगद जानकारी करवा ली, झारखंड में जैविक खेती कर संभावना है। और देखो भाई, अगर हमरे कर किसान भाई बहन मन इस सब बात के अगर बगरा ध्यान देवत है, तो हमरे कर कृषि उत्पादन में उनके बहुत बगरा फायदा भी होगी,
3: है नहीं? अभी हाल फिलहाल में एक ठो किसान से बतियात रही और उनका कहना है कि वो अपन से अपन मेहनत से इतना जैविक खाद का उत्पादन करते हैं कि अब अपन खेत में तो लगाबे करे ना और दूसर बटे बेचते हैं और बेच के मतलब वो अच्छा खासा एकदम पैसा कमाते हैं। तो देखो जैविक खेती हमारे मन ले फायदेमंद भी है और इकर से क्या है कि आय कर जो साधन है से हमारे मन अलग से जुटा सकेला। जैसे केचुआ खाद है तो केचुआ खाद बनाना कोई बहुत मेहनत कर काम ना लगे, हमारे मन केचुआ लेके आना है, उकर ले जो तैयारी करे है

0: पशु के कर देते थे, नहीं तो केचुआ अपने आप खाद बनाए के देवत थे और इतना बढ़िया खाद बनाए के देवत थे कि ऊपर से उत्पादन बहुत किसान मन कर जे करत हैं जैविक खेती। मन कर कहना है कि जे पारंपरिक तरीका से हमारे मन खेती करत रही उगर से दुगुना तिगुना तक खेती हो एक शुरू भेजा है।
1: सही बात है भाई, जैसन की रोर एक बार बताते रही कि केचुआ खाद हम भी खुद से तैयार कर रही के कहत रही और भी उकर बारे में बहुत बढ़िया बतात रही। तो देखो भाई, ये सब हमरे मन घर बैठ के ही यानी कि खेलते कूदते हमरे ये सब के प्रयोग कर सके है नहीं? और तैयार भी कर सके
0: एकदम।
1: तो भाई चलो, जानकारी तो करवाबे करी, अब बेरा बचल है तो रिझरंग कर ले मिला है नहीं?
0: बहुत जरूरी है।
1: तो चलो खोरठा में एगो लोकगीत सुनिला, सुकुमार और संगी मन गावल की।
2: ए जागा।

0: भाई तो एखन हमरे मन सुनत रही खोरठा में लोकगीत सुकुमार और संगे मने गावल गीत बहुत नगद गीत ही रहे और इस रहे संगे हमरे कर खेती बारी कर कार्यक्रम सिरा लग लेकिन जाय के नखे है नी।
1: हाँ भाई अब बेरा हो गेलक हमारी दुनिया और आज कर दिन में हमरे मन खास करके जे हर हफ्ता हमरे मन करेला सुख के युवा सब है नहीं और सब नौजवान भाई बहन मन के फिर से हमरे मन अपन कार्यक्रम में स्वागत करेला और युवा कहले किसान मन में भी जा जावेला सोच कैसा ना वेला।
0: अरे मत पूछू युवा कहे से देखो भाई जैसे कि युवा कहती तो आज हमरे युवा मन के सब बटले बहुत आगे भी होवे के और देखो देखत ही सब बटले तो युवा मन आगे बढ़ते हैं जाते हैं युवा मन है कि हमरे कर देश के आगे बढ़ाक में बहुत बड़ योगदान है नहीं
1: एकदम। अरे युवा मन में भी अगर बेटी छुआ के आगे बढ़े अगर देखी ला नहीं मोनिका बहन तो गर्व से एकदम छाती एकदम चौड़ा भेजेला हमरे घर और कितना बेस लागेला जब हमरे मन अपन देश कर प्रथम नागरिक की अगर देखी ला नहीं ठाव में बैठल और राष्ट्रपति हमरे मन कर महिला हैं जब उनके देखी ला तो और हमरे मन खुश हो जाए कि भाई बेटी छुआ कितना आगे बढ़ते जाते
0: सही बात है भाई और देखो देश के भी चलाक में हो जैसे जैसन के जैसन खेल होलक रेलगाड़ी चलाक होलक अंतरिक्ष यान हो गलक सब बात ले हम घर बहन मन आगे बढ़ते हैं जाते हैं और परचम लहराते जाते हैं
1: एकदम। और खुशी कर बात है कि देखो पहले देश कर सुरक्षा में कम से कम अब महिला बेटी छुआ मन हुआ पहुँचल हैं और हमरे मन अगर खुला में सांस अगर ले थी तो उकर में भी उमन कर प्रमुख योगदान है मोनिका बहन तो अच्छा लगे कि बेटी छुआ पहले हमरे मन सोचत रही कि बेटी छुआ पढ़ी के का करी ओके तो चूल्हा फूके है लेकिन अब वो सोच धीरे धीरे खत्म होते जाते हरिकर में सबसे बड़ योगदान है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ
0: वाला।
1: और एक ठो बात और हम जरूर बोले खोजे मोनिका बहन कि एक ठो अगर बेटी छुआ पढ़त है नी तो कई ठो पीढ़ी पढ़ी जाते और एक ठो बेटा अगर पढ़त है एक ठो आदमी पढ़त है लेकिन अगर एक ठो बेटी पढ़त है तो कई ठो पीढ़ी के अपन परिवार के तो जहाँ जन्म ले है से उठाओ के शिक्षित करते है जहाँ बिहा हो के जाते उके भी शिक्षित करते आवे वाला पीढ़ी के भी शिक्षित करते एक ठो बेटी के अगर उड़े पढ़ाती तो तीन ठो पीढ़ी रोड सुधर जाते
0: कितना बढ़िया है ना। और सच में भाई ऐसा होवे के चाहिए काले कि अगर ये हमारे कर देश में लगातार हुई तो हमारे कर देश भी लगातार विकास कर धर्म में आगे बढ़ते जाए और अभी कोला समय में हमारे कर बेटी बहन मन है से मन सब से सब बटले अपन परचम के लहराबे कर बतिन और बेटा छो मन कहावतिन कि हम नहीं कर से पीछे कह रहा है नहीं।
1: हाँ अब सबसे समाज में बहुत बदलाव है मोनिका बहन अब क्या है कि बेटी और बेटा में कोई किसी किस्म कर फर्क नहीं करल जात रहे पहले है कि आदमी मन सोचत रहे कि बेटी का करी पढ़ के तो दोसर घर जाएगा लेकिन अब नहीं अगर बेटा भी है तब भी ठीक है बेटी है तब भी ठीक है दुयो के बराबर नजर से देखल जाते तो समाज में काफी बदलाव आए है और खास करके ईसन अभियान अगर चलाल जाते तो ये अभियान कर असर भी दिशत है कि हर बेटी छुआ अब स्कूल पहुंचत है वहां से पढ़ के आगे भी बढ़त है और उनके आगे बढ़े के लिए सरकार तो मदद करते है घर परिवार मन भी रोज दिन लागल है कि हमर बेटी छुआ कैसे पढ़े खुद हमर एक ठो बेटी छुआ है हमर भी बेटी है हम भी कोशिश में लागल रही ला कि हमर बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़े आज जरूर के हम बताए खुद कि हम अपन बेटी के कराटे सिखा थी तो अच्छा लगेला जब भी उके हम देखिला नहीं कि कराटे करते हुए देखिला तो बड़ा एकदम अच्छा लगेला एक ठो बेटी छुआ के हमरे मन हर परिवार हर माता पिता अब लागल है कि बेटी छुआ के कैसे हमरे मन आगे लेके जाओ।
0: सही बात है भाई रोरे बहुत नगर बात कहली कि देखो रोरे कराटे सिखाती तो बहुत बेस बात है और देखो आज कल रेट में कराटे सीखे भी बहुत जरूरी है नहीं?
1: हर क्षेत्र में हर खेल में और देखो हम तो कहब कि बेटी छुआ चाहे बेटा के एकदम छोड़ दो उनके जोन क्षेत्र में जाए मन है उनके वह क्षेत्र में जाए दो अगर मैं लोग गीत गाते तो गीते गायक में डहर में उनके भेजू देखो एक दिन आगे जाए के रोर घर परिवार समाज और देश का नाम के करी खेल कर अगर क्षेत्र में है आज देखो हमरे कर राज्य से हमरे कर जिला से महेंद्र सिंह धोनी आज गोटा दुनिया में जानल जाए ना अगर माए बाप उनके अगर खेले से अगर मना कर देते हैं तो आज महेंद्र सिंह धोनी हमरे के नहीं मिलता
0: लग नहीं भेटात लग और हमरे के देखे के भी नहीं भेटात ले है नहीं तो इसलिए हमरे का भाई बहन और छोटे छोटे छुआ मन है से मन के उकर जे इच्छा है भाई से के चीज
1: एकदम
0: करे चाहिए और माए बाप मन के सब के सहयोग करे चाहिए आगे के बढ़े में है नहीं तो भाई चलो बातचीत करते रह लेकिन रिज रंग बटले भी वो हमने मन गीत सुनी ला नागपुरी में रूना देवी और संगे मन गावल गीत

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मोनिका बहिन, देखो एखन जैसन मौसम बदलैक लायक है, और देखो झारखंड में मॉनसून एखन एकदम से भरखर रूप से पानी आवे के रहे नी, लेकिन अभी देखा थी कि पानी तनिसन कटमटी कर दे है, तो कभी हो ना कि बहुत जोर से बरखा पानी आवे के लगे। कई ठो ऐसा राइज है जहाँ एखन बाढ़ कर स्थिति है, तो रोज दिन देखब नी कि परिवर्तन आते जाते हैं हमरे कर जलवायु में, पर्यावरण में, हर तरह से उतार चढ़ाव होते जाते। तो इकर ले हमरे मन बहुत ज्यादातर हमके लगे कि जिम्मेवार ही कर ले।
4: सही बात है, एकर में हमरे मन जिम्मेवार ही कर के देखो, हमरे अपन स्वार्थी ले कितना दिनों दिन जंगल के कटाई करते है जाती, अंधाधुन कटाई करा थी, कने जंगल के जला थी, कने वहाँ का जानवर मकर हनन करा थी, तो हमरे कर महत्वपूर्ण हाथ है एकर में, है नहीं?
3: तो भाई हमरे मन के अपन जलवायु, अपन पर्यावरण के बचाए कर बहुत दरकार है आज। तो हम खेला गया कि मोनिका बहन, अगर एक बारे में कुछ बढ़िया से जानकारी हो जाते लग तो बढ़िया रहे।
4: हाँ भाई, एकदम बढ़िया है। तो चलो हमरे मन जानकारी करवा दी। नागपुरी में जलवायु परिवर्तन और इके बता दें नीलम कुमारी।
5: जलवायु कर बदलाव शब्द के हमरे मन रोजे सुने लायक ही, काले की ई आज वैश्विक समस्या बन जाए है। ई कोनो एक आदमी के प्रभावित नी करे लायक है, मुदा गोटा परानी जगत ले एक ठो बड़ समस्या बन जाए है। आज जे हमरे मन समाचार में देखीला सुनीला कि कोनो ठाँव बोन आग से सलगे लायक है, तो कोनो ठाँव बदरी फाट जाए लायक है। इकर संगे संगे पहाड़ों कर धसेक से सब आदमी चीज बसुत नाश हो लायक है। चलू ने इके आज विस्तार से समझे प्रयास करल जाए। जलवायु के कहे ना जलवायु, तो इकर जवाब आहे कोनो एक क्षेत्र कर लगभग 30 बछर से मौसम कर जोन रूप के देखल जाए सकीला, उकरे हैं उ क्षेत्र कर जलवायु कहना। जैसे हमरे कर भारत देश में मुद रूप से तीन ठो मौसम देखल जात रहे, गर्म, ठंडा और बरखा, जेकर नियम आज बदले लायक है। आज कोनो मौसम कर कोनो ठिकाने नखे, सेकरे हमरे मन जलवायु कर परिवर्तन कहिला। आखिरी बदलाव कर कारण का लागे, तब मुई जान ली कि जलवायु कर बदलाव मूद कारण लागे पृथ्वी कर तापमान में वृद्धि, जे लगातार बढ़ते हैं जाए लायक है। तले मुई सोचो ना कि तापमान काले बढ़े लायक है, तले मुँह के जवाब भेटालक कि हमरे कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नाव कर एगो गैस आहे, जेकर मात्रा खने खन बढ़े लायक है, जेकर बढ़ेक से धरती माए तपाए लायक है। मुदा मोर ठीन एगो और सवाल अलग कि इकर मात्रा

के कौन बढ़ाई लाइग है, तब मोके जवाब भेटालक कि कार्बन डाइऑक्साइड कर मात्रा बढ़ाए के ले बगरा दोषी कोई और नहीं आदमी और उकर अनैत इच्छा लागे। मनुख कर इच्छा कर कोनो सीमा नखे, जेके पूरा करे खातिर आदमी पर्यावरण कर नाश कर देवे लाइग है। हमरे मन अपन काया कर सुख खातिर इतना स्वार्थी बन गेली कि एहो नी सोचली कि ई प्रकृति उपरे सब जीव जंतु मनक उतने ही अधिकार आहे जतना मनुख कर। ना जाने आदमी ई सब के अपन कैसे मान लेलै और जे पर्यावरण कर संतुलन के भगवान बनाए रहें से के बिगाड़ देवे लागली। चलू तनी कार्बन डाइऑक्साइड के हूँ जाने कर प्रयास करल जाए। कार्बन डाइऑक्साइड हमरे कर वायुमंडल में पावल जायक वाला एगो गैस आहे। वायुमंडल में पावल जायक वाला गैस मनक देखूं तो ई लखे आहे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आहे। देखू नी इकर मात्रा 0.03% आहे, मुदा सब के डराले रहेला और डरायक बातो आहे, काले की वर्तमान कर शोध से ई पता लाग है कि इकर मात्रा 0.04% हो जाए है। इकर मात्रा 0.03% प्रकृति कर संतुलन ले बेस आहे, काले की गछ बिरिछ कर वृद्धि ले इकर दरकार पड़ेला। कहे कर अर्थ लागे प्रकाश कर संश्लेषण, जेकर से गछ बिरिछ मन अपन खाना बनाएना, जेकर से उमन वृद्धि करेना, से कर ले कार्बन डाइऑक्साइड बेस आहे। मुदा कटिकुन बढ़ी होले सोब ले विपैत, इकर मात्रा कर बढ़े कारण के सोचली तो पता लागलक कोयला कर जरेक मोटर गाड़ी मन से निकसेक वाला धुंगा, कल कारखाना से निकसेक वाला धुंगा मन इके बढ़ाई लाग है। जेकर बढ़ेक से वायुमंडल में हरित गृह गैस नाव कर एगो नवा समस्या प्रकट हो जाए है, जेकर बढ़ेक से और दिख। अब फिर एगो नवा शब्द आवेला कि ग्रीन हाउस गैस का लागे। हरित गृह गैस माने कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इक कहेक अर्थ लागे सूरज से आवेक वाला रोशनी कर गर्माहट जे वायुमंडल ऊपरे परे तो लाइग है, मुदा पूरा पूरी घूरे नहीं पारे लाइग है, काले की कार्बन डाइऑक्साइड इके छेक देवे लाइग है, जेकर से धरती माए गर्म हुए लाइग है। तो सोचू कार्बन डाइऑक्साइड कर मात्रा बगरा होवे तले सूरज से आवेक वाला रोशनी बगरा छेकाई लागी, जेकर से धरती औरे बगरा गर्म होवे लागी, जे की होवे भी लाइग है। जे गछ बिरिछ मन कार्बन डाइऑक्साइड के सोख के पर्यावरण कर संतुलन बनाए ले उपयोगी रहे, सैकड़ों हमरे मन काट के सिराई लाएगी। हमरे मन जलवायु कर बदलाव के रोके खातिर उठाल कदम के देखूं तो ई लखे भेटाई। दुनिया भर कर बगरा आदमी मनक जब ई बुझाए लागलक कि हमरे मन कौन गढ़ा में जाए लाएगी, तब सब कर निशा फाटे लागलक। तले बछर 2015 कर कोप 21 कर बैठका में लगभग 195 देश मन बैठ लें और एगो परन कर लें, जेके पेरिस समझौता कर नाव से हमरे मन जाने लागली। इकर में विश्व कर देश एके साथे ई परन कर लें कि ई वैश्विक समस्या ले सब मिलीजुली काम करब। वैज्ञानिक मनक संग कर कहना है कि 21वीं सदी कर बिछा बिछी ले पर पृथ्वी कर तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक लेवल जाए होले ई समस्या से बाचल जा सकीला, मुदा इके रोके नहीं पारली होले ई दुनिया के परलय से क्यों नहीं बचाए पारी, काले की ग्रीन हाउस गैस कर मात्रा बढ़े से पृथ्वी कर तापमान लगातार बढ़े लाइग है, जेकर से दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव कर बर्फ कर पहाड़ बगरा मात्रा ले पघिले लाइग है, जेकर से समुन्दर कर पानी बढ़े लाइग है और समुन्दर कर पानी इसने बढ़ी तब कतई कतई ईसन शहर मन जे समुन्दर कर आरा बसल आहे उ समुन्दर से डबाई लागी। हाले कर बात के तो रौरे मन सुइन भी होवी कि इंडोनेशिया कर राजधानी जकार्ता डूबे कर कगार ले आहे। वैज्ञानिक मनक संग ई कहना कि जल्दी ई बटले ध्यान नी कर ले भारत कर हो कई गो शहर जे समुन्दर कर अर्रा आहे उमन डूब जाए लागमय, जेकर में सौप से बगरा खतरा भारत कर फिल्म नगरी मुंबई ले जताल जाए है। पेरिस समझौता में
कोनो कोनो इसनो देश आहे जे इकर हासी करावे लायक है, जे आपन के बगरा बुधगर और बगरा जोरगर बुझाई।

0: ऐसा नक है कि ई मन इकर से प्रभावित नहीं होवे लायक है। अब नजीके कर बात के देखू नी, अमेरिका कर लॉस एंजलिस शहर कर नजीके कर बोन में 7 जनवरी 2025 के ईसन आग लाग गेलक कि आदमी कर जान बचाए भी मुश्किल। गोटा शहर जड़ के खाक भई गेलक। सैकड़ों में ई मनक बात सुन के दिमाग ठंडा होवे लागी। ई सब से केकरो बगरा क्षति होवे लायक है तो ऊ लागे भारत और विकासशील और गरीब देश मन, काले की 18वीं सदी कर औद्योगिक क्रांति बेरा यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप कर कई गो देश मन प्रकृति के खजाना के निकसाय लेलें और अपन के धनवानो बनाए लेलें। मुदा भारत जैसन विकासशील देश मन का जे विकास करे औरो कर लें तो नवा नवा आपदा से बाज गेलक। कोनो ठाव बदरी फाटे तो कोनो ठावे पहाड़ धसे। हाले कर बात के देखुनी उत्तराखंड कर धराली कर विपैत जहाँ 40 सेकंड कर बरखा पानी गोटा गांव के माटी कर कुंदा बनाए देलक। पंजाब बिहार और उत्तर प्रदेश कर आवल बाढ़ के तो रौरे मन देखे हैं लाइग ही। जे राइज मनक खेती बारी से देश का विदेशों कर आदमी कर पेट भरत रहे तहाँ कर आदमी मन विपैत कर आवेग से टूवर लखे महसूस करे लाइग हैं। सब खेती बारी घर द्वार पानी में बोहाई गेलक। का ई देश कर क्षति ना लागे? इस सब विपैत नी रहतलक तो देश कतना कतना नवा नवा काम करे के लिए सोचतलक। ई सब समस्या से बाचे के लिए कोनो कोनो देश मन बेस काम करे लायक है। जैसे जर्मनी अपन कोयला से चले वाला बड़ बिजली घर मन में आखिरी जे रहे से के जनवरी 2025 के बंद कर देलें। ईसन नखे कि इस समस्या कर समाधान खातिर भारत व्याकुल नखे। भारत तो बिजली कर जरूरत के पूरा करे खातिर कतई कतई सोलर प्लांट लगाए है जेकर से कोयला जरक से बाची। बछर 2070 ले हमरे मन जीरो कार्बन उत्सर्जन कर लक्ष्य रखिए। ई लक्ष्य के पूरा करे के लिए आम आदमी भी सहयोग कर सकेला। जैसे बगरा गच बिरिछ के लगाऊं उतने ही सामान के किनू जितना कर जरूरत आहे। सामान के तबले इस्तेमाल करूं जबले करल जाए सकेला। काले की नवा सामान बनाए के लिए तो संसाधन लागी नी। धरती के उतने ही कब्जाऊ जितना कर दरकार आहे। ईसन नी कि घर में 2 आदमी और 4 ठीन घर बनाए के तालाल मार देली। घर कर नजी के ठाव के खाली छोड़ू जेकर से बरखा कर पानी के धरती माए सोख सके। संभव होवी तो अपन खाएक वाला सब्जी मन के अपने उपजाऊ जेकर में ऑर्गेनिक खाद मनक प्रयोग करूँ जेकर से माटी कर पैदावार बनल रहे। डीजल पेट्रोल कर गाड़ी के जरूरते भर प्रयोग करूँ। कम दूर जाए के ले तनी शरीरों के तो थकाऊ जेकर से डॉक्टरों कर खर्चा बाची।
1: तो बहुत बढ़िया जानकारी अखन हमरे मन कर ली कि जलवायु परिवर्तन के बारे में बतात रहे। और देखो मोनिका बहन कितना बढ़िया बात के बता लें कि आज जे नियर लगातार हमरे मन कर पर्यावरण जलवायु में असंतुलन होते जाते और इकर ले बहुत हमरे मन के नुकसान भी उठाए पड़ते। और सबसे बड़ बात कहे नहीं कि हमरे मन इतना अपन पर्यावरण के नुकसान पहुँचाए के लाई है कि हमरे मन अपन पीढ़ी के आवे वाला पीढ़ी के का देव बिकर बारे में भी सोचे विचार हमरे मन करे छोड़ दे। अब देखो इतना अंधाधुंध पानी कर प्रयोग हमरे मन करत थी। आज ऐसा रोड़ी भी कहली कि भाई और रोज दिना हमरे मन अपन गच्छ ब्रिज के आसपास में काटते जाती जंगल के उजराते जाती अपन फायदा चलते तो इकर आवे वाला पीढ़ी में ज्यादा हमरे मन कर भार होए वाला है।
2: सही बात कह रही भाई काली की। देखो हाँ अगर हमरे मन जैसन की पेड़ पौधा के हनन करते हैं जाते हैं लेकिन कोशिश करे है कि उकर से भी बगरा गाछ वृक्ष के लगा के है नहीं और गाछ वृक्ष के लगा के छोड़े के नखे ओके सेवा पानी भी करे है समय समय से खाद भी देवे है पानी देवे है धूपो दिखा के। तो अगर हमरे स्वमन अगर मिलजुल के जागब भाई तो बहुत जल्दी हमरे पर्यावरण में के बढ़िया से बना सकेला और पर्यावरण से हमरे मन फायदा भी ले सकेला
1: है नहीं।
2: काल के पर्यावरण के माध्यम से देखो हमरे के खाद भी एक लोग भेटाएला नाना प्रकार कर दवाई भी भेटा थे और नाना रकम कर फूल फल भी भेटाब करा थे
1: है नहीं। भाई तो हमरे मन के गच्छ लगाए के है गच्छ बचाए के है पानी के गंदा करे के न खे पानी के बचाना है तो हमरे मन का पर्यावरण और जलवायु भी बाची। तो अब देखो मोनिका बहन चले कर अब समय हो जाए हमरे मन के विदा लेवे के चाहिए सबकर से।
2: चलू तब और

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने पर घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे सिंह, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रूपये का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावार, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जनाक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मानसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 30 जून से 29 जुलाई तक मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर 2,64,00,000 वोटरों की जांच कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि QR कोड वाले प्रपत्र को सावधानी से भरें और हस्ताक्षर कर रसीद लें।
1: एक एक वोटर के लिए अलग अलग गणना प्रपत्र रहती है, उसके QR कोड के साथ उनका फोटो के साथ में सही रहती है। एप्लीकेंट बनने के समय कुछ गलती हो गया तो उसका वहां पर BLO करके सुधार करने की, फिर भी उसका कोई वोटर का डरने के लिए आवश्यक नहीं है। आप फॉर्म में कोई गलती है नोटिस एंड हियरिंग पीरियड में भी उस सुधार कर सकते हैं। आप सिग्नेचर करके BLO के पास जमा करने के बाद BLO से दूसरा कॉपी से एक रिसिप्ट ले लीजिए, आपका ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल में आपका नाम आएगा।
0: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने बताया कि झारखंड को वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच लगभग 14,231 करोड़ रूपये की अनुदान राशि मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेसवार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि इस घटना ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। श्री बाउरी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार की मांग की है। उन्होंने सफल जमशेदपुर बंद को सरकार के खिलाफ जनता का बड़ा आक्रोश बताया। राज्य के
2: जमशेदपुर और आदित्यपुर ऐतिहासिक मशाल जुलूस भी किया और स्वतः स्फूर्त बंद को समर्थन जिस प्रकार से उस लोह नगरी में अपने नागरिकों का मिला है, कंपनियां भी इसमें सहयोग की है, इसका जो समर्थन किया है ये सरकार के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर के वासियों ने दिखलाया है अपने प्रतिरोध से कि यह सिर्फ एक पार्टी का प्रतिरोध नहीं है, एक आम जनता का प्रतिरोध है।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी 16 गार्ड और कारकेड की गाड़ियां वापस कर दी है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है।
3: ये बात सही है, मेरे पास 16 पुलिस के जवान थे, मेरी सुरक्षा में लगे हुए थे और 3 गाड़ियां थी, मैंने सबको वापस कर दिया है। क्यों किया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं 3-4 दिनों में इस बात को भी सामने रखूंगा, लेकिन इतनी बात है कि इस

0: मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार का कहीं कोई ये नहीं है, नहीं उनके तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, ये भी हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं।
1: देवघर एम्स में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जल्द ही ECHS स्वास्थ्य सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें ओपीडी और जांच में प्राथमिकता मिलेगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के निर्देश पर प्रबंधन ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति से एम्स में विशेष काउंटर बनाकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग नगर भवन में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के पुराना विधानसभा परिसर में आज विधायकों के लिए साइबर एवं डिजिटल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष और सांसद महुआ माझी ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केन्द्र सरकार से कानून को और अधिक सख्त बनाने की मांग की।
1: बहुत ही चिंता का विषय है। इन दिनों जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और शायद ही कोई ऐसा घर है जहां के लोग इससे त्रस्त ना हो, तो इसके लेकर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो धाराओं को इस तरह से लगाना होगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
0: पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया, जिससे अब उन्हें प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
2: 30 साल से जो मेरे जमीन थे उनका रसीद नहीं कट रहा था, बहुत टाइम से मैं परेशान थी। तो मैंने डीसी सर से आकर के मिला और उन्होंने फिर फॉरवर्ड किया एसी सर को, तो मेरा काम हो गया। काफी परेशानी हुई थी, जैसे मुझे जमीन से ही कुछ काम करवाने हो तो उसमें रसीद क्लियर चाहिए, या फिर मुझे ओबीसी बनवाना हो तो उसमें भी रसीद क्लियर चाहिए।
0: पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका और पत्रकार कल्याण योजनाओं पर भी विचार साझा किए गए। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बसुकीनाथ धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने रूट लाइन, शिवगंगा और टेंट सिटी सहित प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मूलभूत सुविधाएं देने का निर्देश दिया। राज्य में मानसून सक्रिय होने से मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। आज गुमला और लातेहार समेत कई जिलों में भारी वर्षा हुई। 5 जुलाई को पलामू प्रभाग और 6 जुलाई को रांची तथा हजारीबाग सहित मध्य भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और गुमला सहित राज्य के 10 जिलों में अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज

बनाने की मांग और राज्य में मॉनसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले के अंचल सभागार में सोमवार को जनवितरण प्रणाली के सभी डीलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएसओ खुशबू तिर्की ने राशन वितरण, ई केवाईसी, ग्रीन कार्ड एवं चना दाल वितरण सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उधर अड़की प्रखंड क्षेत्र के एक फास्ट फूड दुकान में मंगलवार को देर रात छापामारी कर अड़की थाना पुलिस ने विभिन्न ब्रांड के 460 बोतल अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा। खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि हब्लू डब्लू के फास्ट फूड दुकान में गुप्त तरीके से अवैध और मिलावटी शराब बिक्री किया जाता था। इस संबंध में डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया,
2: अड़की बाजार में कुछ अवैध शराब की खरीद बिक्री हो रही है, उसके सूचना पर हम लोग ने छापामारी की गई। उस छापामारी में कुल 460 बोतलें बरामद हुई, जो विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें हैं। उसके बाद अवैध तरीके से कागजात की मांग की गई तो उन्होंने कोई कागजात दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और FIR दर्ज की गई, जिसमें दुकान के संचालक जो लाइसेंसधारी है उनका भी नाम सामने आया है, जो अवैध तरीके से शराब की खरीद बिक्री कर रही है।
1: खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार आपूर्ति विभाग खूंटी द्वारा प्रत्येक माह की 2 तारीख को आयोजित किए जाने वाले चावल दिवस के तहत जिले के जनवितरण प्रणाली दुकानों में राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी भीम उराव ने बताया,
3: खूंटी के जो उपायुक्त हैं उनके निर्देशानुसार हर माह के 2 तारीख को चावल दिवस मनाया जाता है। चावल दिवस का मेन उद्देश्य है कार्डधारियों को जागरूक करना और उन्हें राशन मिलना। इसमें क्या होता है कि सारे जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाती है, सारे कार्डधारियों को जानकारी दी जाती है और प्रचार प्रसार करके डीलर के यहाँ जो भी खाद्यान्न हो वो बांटने के लिए सभी कार्डधारियों को सूचित करता है और विशेष अवसर पर राशन का वितरण करता है। और इससे लोगों में जागरूकता आती है, कार्डधारियों में जागरूकता आती है, उन्हें जानकारी होती है कि चावल मिलना शुरू हो गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है।
1: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर प्रगणना अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी BLO पूरी सक्रियता के साथ घर घर जाकर मतदाताओं के बीच प्रगणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में उपायुक्त ने बताया,
4: 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक हाउस टू हाउस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एनुमेरेशन फेज चल रहा है। इसमें सारे BLOs को, जितने भी हमारे योग्य मतदाता हैं, सभी को आप फॉर्म जाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है हाउस टू हाउस। उसके बाद उन्हें 2 प्रति में फॉर्म दिया जाएगा। जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे जो फील्ड फॉर्म होगा वो रिटर्न हमारे BLOs के पास आएंगे, उनको डिजिटाइज किया जाएगा। तो ये कार्य हमारा लगभग 1 महीने अभी चलने वाला है, 29 जुलाई तक। लोगों से भी अपील रहेगी कि जो भी आपको गणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं उसको टाइमली आप कंप्लीट करके एज सून एज पॉसिबल उसको रिटर्न।
1: इधर गुरुवार को खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ पंचायत में जन समस्या निराकरण एवं परिसंपत्ति वितरण शिविर का आयोजन कर 92 लाभुकों के बीच 6,57,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सैया।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। आज के अंक में हम खास चर्चा करने जा रहे हैं सहिया बहनों में संचार कौशल के विकास, प्रशिक्षण और इस क्षमता के उपयोग के बारे में। इससे जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाने में हमेशा की तरह हमारा साथ देती हैं हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन।
1: आपको भी जोहार चंपा मुनि दीदी। अपने श्रोता भाई बहन को हम बताना चाहते हैं सहियाए समुदाय के लोगों के बीच घुल मिलकर अपना काम करती है। लोगों से संपर्क के दौरान उचित व्यवहार के साथ अपने विचार ठीक से व्यक्त करना तो जरूरी है ही, दूसरों की बात ठीक से सुनना और समझना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए सहिया बहनों में पारस्परिक संचार कौशल का होना बहुत जरूरी है। ये कौशल उन्हें समुदाय के लोगों से संवाद करने, लोगों से स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी लेने, परामर्श देने और लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान बनाने में सहायक होता है।
0: पूर्णिमा बहन, सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे गृह भ्रमण हो, फॉलोअप हो, लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाना हो या समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों में आने के लिए प्रोत्साहित करना हो, इन कामों के लिए सहियाओं का आचार व्यवहार कैसा हो, भाषा कैसी हो, लोगों से क्या बातें करनी चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए सहियाओं को संचार कौशल से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपना काम पेशेवर तरीके से कर पाए।
1: सही बात है चंपा मुनि दीदी। मेरे हिसाब से इस विषय पर और भी अधिक जानकारी लेने के लिए हमें सहिया कार्यक्रम की राज्य समन्वयक अकय मिंज जी से जरूर मिलना चाहिए ताकि हमारे श्रोता भाई बहन को भी इसका लाभ मिल सके।
0: इससे अच्छी बात और क्या होगी पूर्णिमा बहन। चलिए अकय मिंज जी से मिलते हैं।

0: जोहार अकय दीदी, हमको पूरा भरोसा था कि इस समय आप फुर्सत में मिलेंगे।
1: कहो कैसी हो पूर्णिमा, लगता है आजकल ज्यादा व्यस्त हो, तभी तो इतने दिनों के बाद आई हो।
0: अकय दीदी, दरअसल आज हम लोग सहिया रेडियो की श्रोताओं को ये बता रहे हैं कि समुदाय के लोगों से बेहतर तालमेल और सहयोग के लिए सहियाओं में संचार कौशल का होना कितना जरूरी होता है, इस बारे में आपसे कुछ जरूरी जानकारी लेने आए हैं।
1: सचमुच ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सिलसिलेवार ढंग से पूछो पूर्णिमा, मुझसे जो भी जानना चाहती हो।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि समुदाय के लोगों से बेहतर संवाद और तालमेल के लिए सहियाओं में संचार कौशल का होना कितना महत्वपूर्ण है।
1: संचार कौशल का मतलब ही है कि हमें अपनी बातचीत को लोगों तक रखना, लोगों को उन बातचीत को समझने के लिए सहायता करना और लोगों को उन बातों के अनुसार निर्णय लेकर के अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता करना। और संचार कौशल का मतलब है कि आप अपनी बातचीत से, आप अपने रहन सहन से, आप अपने भाव भंगिमा से और अपने व्यवहार से लोगों को कैसे आकर्षित करके आप अपनी बातों में उनको सहमति दिलाते हैं। सहिया हर एक गांव में एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिसे गांव ने बहुत विश्वास के साथ चुना है। और जो हमारी सहिया बहनें हैं वो 10वीं क्लास पास हैं, कुछ लोग कॉलेज भी पढ़ी लिखी हैं, परंतु जब बातचीत होती है गांव में तो गांव में हमारे विभिन्न तरह से हमारे सामाजिक वर्गीकरण है, तौर तरीके हैं और संबंधों का एक अलग हमारा प्रावधान और नियम है। तो सहिया जब समुदाय के साथ में एक गांव की बहू लोगों के साथ बात करती है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब गांव की बहू स्वास्थ्य की दूत बन करके गांव के सामने आती है तो उसके पूरे व्यक्तित्व में, ना सिर्फ बोली में परंतु उसके पूरे व्यक्तित्व में, उसके सोचने और समझने की शक्ति और बोलने की क्षमता में विकास करना जरूरी होता है और इसलिए संचार कौशल की आवश्यकता होती है।
0: अब ये बताएं कि सहियाओं को संचार कौशल के विकास के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: सहियाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न बीमारियों के बारे में और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का तो प्रशिक्षण दिया ही जाता है, परंतु हर एक इन सारे मॉड्यूलर प्रशिक्षण के समय में भी विशेष करके संचार कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि बहुत आसान तरीके हैं। जैसे जब एक सहिया गृह भ्रमण में जाती है, शिशु का नाप और भार लेना है, तो सबसे पहले जब वो घर पहुंचती है तो वो अभिवादन करे, जोहार बोले, बातचीत करे, परिवार से दुख सुख की बात करे, अपने हाथ धोए, साफ सुथरे हाथ धोने के बाद बच्चे को छुए, माँ से बातचीत करे, माँ की समस्याओं के बारे में बातचीत करे। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि हर एक प्रशिक्षण में उन्हें संचार कौशल का, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत संचार की जो क्षमता है, कौशल है, उसको बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। ना सिर्फ पढ़ा के परंतु उनको वहां पे एक्टिंग भी करना होता है, उनको ड्रामा की तरह वो करके सीखती हैं और दूसरे लोग फिर बताते हैं कि नहीं दीदी आपको इस जगह ऐसे बोलना था, क्योंकि हर समय सभी जगह एक ही परिस्थिति नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में दुख का समय है या ऐसे जगह चली गई जहां पे कि परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि वहां आए, तो कभी कभी उनको गुस्सा का भी सामना करना पड़ता है। तो उस समय अगर सहिया भी गुस्सा करने लगे तो वो गलत होगा, परंतु उस जगह वो क्षमा प्रार्थी होकर के वहां से अगले दिन आने की बात करे तो अच्छा होता है। तो इस तरह की चीजों को भी सहियाओं को प्रशिक्षण में सिखाया जाता है।
0: जब सहियाएं समुदाय के लोगों से संपर्क करती है तब उनका व्यवहार और संवाद कैसा होना चाहिए ताकि सहयोग एवं भरोसे का रिश्ता कायम हो और लोग सहज महसूस कर सके।
1: जब सहिया समुदाय में जाती है तो समुदाय में हमारे पास में बहुत अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, जब बच्चों से मिलती हैं तो उनके साथ दोस्त और माँ की भावना से मिलना होता है। जब किशोर किशोरियों के साथ मिलती हैं तो उनके साथ एक उनके दिल को जीतने वाली उनकी हमराज दोस्त के रूप में सहियाओं को आना होता है। जब गर्भवती माताओं के साथ में मिलती हैं या धाती माताओं के साथ, तो सहिया एक बहन के रूप में उनके साथ मिलती हैं और एक माँ के रूप में उनके साथ मिलती हैं। जब परिवार नियोजन की बातचीत करनी होती है तो सहिया उन दंपतियों के साथ में बड़ी बहन की तरह का व्यवहार करती हैं, और जब बुजुर्गों के साथ मिलती हैं, विशेष करके एनसीडी की स्क्रीनिंग के लिए या बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल के लिए, तो उनकी बेटी और बहू के रूप में सहिया अपने रोल के साथ में उनसे मिलती हैं ताकि उनके दिल को जीत सकें और उनकी सहायता कर सकें। हमारे गांवों में बहुत सारे मजदूर वर्ग हैं, जब उनके साथ मिलती हैं तो उनके श्रम की बातों को, उनकी तकलीफों में भी बातचीत करती हैं। जब वो गांव के मुखिया से मिलती हैं तो एक बड़े भाई के अभिवादन के साथ उनके साथ

0: मिलती है। तो विभिन्न समुदाय के विभिन्न लोगों के साथ में सैया की भूमिका अलग होती है, पर उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वो स्वास्थ्य की दूत बनकर के गांव समुदाय में कार्य करती है।
1: सैयाओं के लिए अपनी बात ठीक से कह पाना और किसी मरीज, परिजन या देखभाल कर्ताओं की बातें धैर्य से सुनना कितना जरूरी होता है।
0: संचार कौशल में केवल बोलना ही कौशल नहीं है, परंतु संचार कौशल का जो एक आधार है वो है धैर्य से सुनना। जैसे एक बच्चे, अगर कोई बच्चा रो रहा है और बच्चे की माँ बताना चाह रही है कि मेरा बच्चा, चूंकि रात से उसको उल्टी हो रहा है इसलिए रो रहा है, पर सहिया कहती है कि बिना सुने अगर कहती कि नहीं तुम दूध जल्दी जल्दी पिलाओ तो ठीक हो रहेगा, तो जो उपचार वहां पे प्राथमिक रूप से होना है वो नहीं हो करके और गड़बड़ी हो सकती है। तो ये जरूरी होता है, क्योंकि जब सैया स्वास्थ्य की दूत है, जब परिवार में कोई समस्या आती है तो लोग घबराते हैं, और घबराने के समय में बहुत बार होता है कि लोग सही बातों को बता नहीं पाते हैं, तो सैया का उस जगह काम होता है कि बहुत धीरज से उनके साथ बातचीत करें, सुने, और सुनने के बाद में उन्हें सलाह दें ताकि जो भी समस्याएं हैं उसका निदान हो सके।
1: समुदाय के लोगों से मुलाकात, गृह भ्रमण या फॉलोअप के दौरान क्या सहियाएं लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं अथवा चिकित्सा सेवाओं की भी जानकारी देती है?
0: जब सहिया निकलती है समुदाय में स्वास्थ्य की गतिविधियों के लिए, तो उसको विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी उसके साथ होती हैं, जैसे उनके पास में विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी, फ्लिप चार्ट और छोटे छोटे बुकलेट्स, और उनको साथ में कुछ चित्र के साथ बना हुआ लीफलेट्स भी दिया जाता है ताकि वो लोगों को उसको दिखा के भी बातचीत कर सकें। इसके साथ साथ जब सहिया बच्चों के लिए गृह भ्रमण में जाती है तो एमसीपी कार्ड में बहुत सारे परामर्श की जानकारी रहती है, वो भी बात करती है। उसके पास HBNC और HBYC जो बैग मिला है उसमें टूल्स है, उसके माध्यम से वो बच्चों के विकास के भी जरियों को देखती है। सैया जब 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ में सी बैग फॉर्म भरती है तो उनके साथ बातचीत करती है कि अभी जो गैर संचारी रोग हो रहे हैं उससे बचाव का क्या उपाय है और कितने लोगों को उसकी जांच की आवश्यकता है। तो सैया ना सिर्फ गृह भ्रमण के दौरान केवल माँ और बच्चे की देखभाल करती है, पर इससे संबंधित और भी जो नए नए सरकारी योजनाएं आ रही हैं उसके बारे बताती है। अभी सहिया हरेक लोगों का आभा कार्ड भी बनवा रही हैं, जिसके द्वारा लोगों को उसका लाभ होगा कि उनके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारियां एक कार्ड में, एक चिप में होगा कि जब किसी अस्पताल में जाएंगे तो वो निकल के आएगा कि इस फलाना व्यक्ति को 2 साल पहले भी कोई बीमारी थी। अभी सहिया गोल्डन कार्ड भी बनवा रही हैं और स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं से लोगों को जोड़ रही हैं।
1: अकय मिंज जी, आपने समय निकालकर सहियाओं में संचार कौशल के विकास को लेकर जो इतनी अच्छी जानकारी साझा की, उम्मीद है कि इससे हमारे श्रोताओं और सहिया बहनों का काफी लाभ होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सच में बहन, अकय मिंजी से बहुत काम की जानकारी मिली जो हमारी सहिया बहनों और श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी।
1: हाँ चंपा मुनि दीदी, इसके अलावा एक और अच्छी बात ये है कि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के प्रारंभिक पंजीकरण और 4 प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित कराने पर ग्रामीण सहियाओं को 300 रूपए और शहरी सहियाओं को 200 रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है।
0: इतना ही नहीं पुण्यमा बहन, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर प्रसव कराने और टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए भी ग्रामीण सहियाओं को 300 रूपए और शहरी सहियाओं को 200 रूपए मिलते हैं।
1: बिल्कुल चंपा मुनि दीदी, अब श्रोताओं को ये भी याद दिला दे, आप जन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
0: हाँ तो प्यारे श्रोता भाई बहन,

0: आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ नई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारियों के साथ। अब दीजिए इजाजत, जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम संयम, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म एलओसी कारगिल के इस गीत के साथ।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म फना से। इसे गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने, संगीत जतिन ललित का है।

आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में अंतराल के बाद आइए सुनते हैं फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत।

फिल्म रिफ्यूजी के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। ये गीत है फिल्म रंग से, इसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: फिल्म रंग के इस गीत के साथ ही हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: ज्ञानेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप जापान में रह चुके हैं, तो क्या ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक सम्मेलन रहा है या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बदलती हुई रणनीतियां हैं उनके लिए कोई संकेत है, या फिर आपको लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस मुलाकात से हासिल हुई है?
4: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं

0: देशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं मेरे ख्याल से, वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई अगर है तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है या किसी तरह से नीचे खींचता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि जो जापान की विद्यमान प्रधानमंत्री है वो पहली बार भारत आ रही है और वो भी जापान की पहली प्रधानमंत्री है, वो तो वो भी एक अपनी विशेषता रखते है। और 16वां जो शिखर वार्तालाप है ये रिश्ते को दिखाता है कि कितने उच्च स्तरीय बैठकें होती है और उसको कितना इस रिश्ते का महत्व है। सिर्फ प्रशांत महासागर ही नहीं, दुनिया में जहां जहां अलग अलग तरीके से इसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं उनके बारे में भी जिक्र आया है। प्रशांत महासागर के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अमरीका ने इसको इंडो पैसिफिक के बजाय यूएस पैसिफिक कहना शुरू कर दिया। और हालांकि बहुत राजनयिक प्रयत्नों के बाद इंडो पैसिफिक ये बात जो है रिकॉग्नाइज होती आई है पिछले कुछ एक दो दशकों में, तो ये प्रशांत महासागर जो है हमारे लिए सभी तरह से महत्वपूर्ण है। वहां बहुत सारे संसाधन है, वहां बहुत सारे महत्वपूर्ण देश है जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, और एक दुनिया का महत्वपूर्ण जो रिसोर्स बोलते हैं सागरी रिसोर्स।
1: भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान के संबंध वास्तव में बेहद विशेष हैं।
2: हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: दोनों प्रधानमंत्रियों की मीटिंग के बाद जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया उसमें रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को आपसी रिश्ते के 3 बड़े स्तंभ के रूप में बताया गया है, तो आपको लगता है कि भारत और जापान के जो संबंध है एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके हैं?
0: ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए और मजबूत कैसे बनाए और इसके आयाम जो है वो किस तरह से बढ़ाए, ये अभी विषय है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें AI से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, जैसे बैटरी का बड़े पैमाने पे दोनों देशों में निर्माण होने के लिए प्रयत्न, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशांत महासागर में शांति प्रस्थापित हो तो भारत का है ही महत्वपूर्ण उद्देश्य, उसके साथ साथ अन्य मामलों पे भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है जिसका प्रतिबिंब जो है हम लोग इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं जो कि 10 पन्नों तक चला जाता है।
1: अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया तमाम चीजों का, तो सेमीकंडक्टर का भी काफी बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया, हाई टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने की बात है, साइंस या फिर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लिपिक्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिशन की कई सारी चीजों में बात कर रहे हैं, तो ये भविष्य की कूटनीति और विज्ञान को मिला जुला करके दोनों देश आपसी संबंधों को आगे ले जा रहे हैं।
0: बिल्कुल ले जा रहे हैं कि हमारा जैसे व्यापार है, व्यापार के बारे में चर्चा ये हुई है कि भारत से निर्यात जापान बढ़नी चाहिए। आज के दिन में जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं वो जापान के फेवर में बड़े पैमाने पे है। भारत की निर्यात जो है वो करीबन 6 बिलियन के आसपास है और कुल मिलकर जो 27 बिलियन डॉलर ट्रेड है उसमें 5 बिलियन बहुत कम लगता है, इसलिए इसके बारे में कोशिश की जाएगी। करीबन 10 ट्रिलियन जापानीज एन की इन्वेस्टमेंट में आ रही है, इसमें रेलवे का भी जिक्र है, इसमें नए नए उद्योगों का जिक्र है, बड़े पैमानों पे सुमितोमो ने भारत में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लिया है। तो इस तरह से एक कमी ढूंढने की मुश्किल लगती है इस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में, इतना सारा इसका आयाम जो है विशाल है, दोनों देश के बीच में संबंधों को दर्शाता है।
1: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि जापान और भारत को अपनी अपनी ताकत का पूरा लाभ उठाते हुए साथ मिलकर और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बनना चाहिए।

0: center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation.
1: आपने ट्रेन की बात की है तो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है भारत के लिहाज से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जापान ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, निवेश भी किया है। तो ये परियोजना जो है एक तरह से कह सकते हैं भारत और जापान की साझेदारी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रतीक बन चुकी है। व्यापक अहमियत अगर हम देखें इकोनॉमिक दृष्टि से तो आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट होगा? ये
2: बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जैसा कि मैंने कहा, व्यापार की चर्चा हुई है, निवेश की चर्चा, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की चर्चा हुई है, बैटरी और अन्य उत्पादों के प्रोडक्ट्स की बात हुई है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जितनी चीजें जरूरत है उन सब के बारे में चर्चा हुई, एआई के बारे में कोलैबोरेशन का जिक्र है। तो मैं समझता हूं कि कुल मिलकर आर्थिक जो नीतियां हैं, वित्तीय नीतियां हैं, उसके बारे में काफी प्रगति इसमें हो चुकी है और जापान ने कमिटमेंट दिया है कि वो बड़े पैमाने पर भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा।
1: और उसमें एक चीज ये भी देखने में आई है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई अहम फैसले हुए हैं और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया गया, क्लीन अमोनिया की बात हुई, बायोगैस क्षेत्र की नई साझेदारी शुरू करने की बात हुई है। भविष्य की ऊर्जा को लेकर के भारत के अपने एजेंडा है, भारत ने बहुत कुछ सोच रखा है कि हमें कितना ज्यादा करना, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने पर लगातार बात होती है। तो आपको लगता है कि ये जो नई चीजें शुरू हो रही भारत और जापान के बीच में, तो इससे हमारे जो अपने गोल्स हमने डिसाइड किए हैं भारत ने, उसमें उन्हें प्राप्त करने में बड़ी भूमिका होगी?
2: बिल्कुल। जैसे हमारे लिए हॉर्मुज का जो कन्फ्लिक्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे देश के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। उसी तरह से बिल्कुल जापान भी ऊर्जा के लिए बहुत निर्भर है। तो दोनों देशों ने जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए कदम उठाने का इसमें जिक्र किया है। ये मैं समझता हूँ कि ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चर्चा हुई है कि किस तरह से यूक्रेन में शांति प्रस्थापित होना जरूरी है, किस तरह से कोई एक देश खुद के टर्म पे ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। गाजा जो है, पैलेस्टीनियंस और इसराइल का जो वहां मुद्दा उठा है, उसके पुनर्स्थापन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए चर्चा हुई है। और ये मैं समझता हूं कि भारत जापान के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आगे ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जो है सदस्य रूप में आना चाहिए, इसके ऊपर भी सहमति पहले ही हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा एक बार स्टैंपिंग जो है मैं कहता हूँ इस बैठक में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर ये बहुत सफल यात्रा रही है।
1: भारत और जापान कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखते हैं, क्वाड की हम बात करें, आसियान का जिक्र करें या फिर बिम्स्टेक जैसे मंचों का उल्लेख करें, ऐसे स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं जहां पर दोनों देश मिल करके बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ में काम करना चाहते हैं। तो जो नई रणनीतिक व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनी हुई हैं उनको देख करके भविष्य को कैसे देखते हैं?
2: भारत और जापान मुझे लगता है कि दुनिया की जो डेस्टिनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं और उसकी नींव जो है भविष्य की, आगे आने वाले दशकों की तैयारी जो है इसमें ये डॉक्यूमेंट जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट दर्शाता है, किस तरह से दो देशों के बीच संबंध होने चाहिए और किस तरह से उनको विश्व में शांति और समृद्धि लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
1: भारत के आंतरिक हिस्सों की अगर हम देखते हैं तो जापान का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है पूर्वोत्तर भारत में निवेश करने का, हालांकि ये हमारे लिए क्षेत्रीय विकास की बात है, लेकिन भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जापान की क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं?
2: देखिए, जापान दूसरे विश्व युद्ध में हमारे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया था, जैसे अंडमान निकोबार में पहुंच गए थे उसी तरह से, तो जापान अच्छे से इससे एक उनका कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है उस इलाके से। दूसरा जो है कि उनकी ये सोच है कि जहां विकास कम है वहां जाके हम विकास के कार्यों में सहभाग दे, तो जापान का पूर्वोत्तर में रुचि लेना जो है भारत के लिए भी बहुत सहायक है। वहां से बड़े पैमाने पे जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की ट्रेंड मैनपावर जो है बहुत बड़े पैमाने से पूर्वोत्तर के राज्यों से जापान आज के दिन में जा रही है और ये बहुत ही स्वागत करने वाली बात है।
1: संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और दोनों देशों ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा भी की है। तो जापान का इतना खुलकर भारत के पक्ष में आना, इसे भारत के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं और वैश्विक स्तर पर इसके क्या असर होंगे, क्या मायने होंगे?
2: जापान और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन ने दिया है और चीन और जापान के रिश्ते जो है वो भी काफी संघर्ष वाले रिश्ते रहे हैं, बहुत नकारात्मक रिश्ते रहे हैं भूतकाल में भी और आज भी उसमें काफी असंघर्ष के मुद्दे हैं। तो इसलिए भारत और जापान की जहां तक बात है, एक कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों के हित संबंध जो है, इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए जापान भी और भारत भी आतंकवाद को लेकर बहुत मजबूती से विरोध करते हैं।
1: ज्ञानेश्वर जी, अक्सर जब इस तरह के समझौतों की या स्टेटमेंट पर हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि लोगों के बीच संपर्क, खासतौर पर दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच संपर्क हो, उनकी बातचीत, जापान की भाषा हो, पर्यटन हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इस पर जोर देने का लगातार जिक्र होता है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट का जो एक थॉट है उसको लेकर के जापान का हमारे प्रति दृष्टिकोण, हमारा जापान के प्रति दृष्टिकोण, दोनों में आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है?
2: सातवीं शताब्दी में पहला बुद्ध मंदिर जो है जापान में प्रस्थापित हो चुका था और ये बौद्ध धर्म जो है यहाँ से चीन होके, तिब्बत चीन और कोरिया होके जापान चला गया। उसके अलावा जो है गांधी और नेहरू के विचारों का जापान में बहुत प्रभाव शुरू के सालों में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान की जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो भारत के राधा विनोद पाल जज थे, उन्होंने ये कहा कि हारने वाले राष्ट्र पर आप अपना जो है शर्तें लाद नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी उस जापान के लिए। बुद्धिज्म के अलावा बोनसाई हो या अन्य कलाएं हो, सुमिए हो, जहां पर जापान भारत के कवियों पर हाइकू का बड़ा प्रभाव है, तो ये सब चीजें जो है, एनिमेशन जो है बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह से आदान प्रदान जो रहा है वो सदियों का रहा है सांस्कृतिक संबंधों का। मुझे लगता है कि इस तरह के जब राजनयिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उसका असर सहज अन्य आयामों पर भी हो जाता है।
1: ज्ञानेश्वर जी, भारत लगातार अपने महासागर, पहले जो सागर था उसे महासागर में चेंज किया गया, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं जापान की अगर बात हम समझे तो वो उनका कहना है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो दोनों पहल दोनों देशों की तरफ से हो रही है पूरे क्षेत्र में, ये एक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे? और अगर चीन को लेकर के इसे हम समझें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
2: बहुत जरूरी है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व में अलग अलग तरीके से, सिर्फ राजनयिक नहीं, वो तो मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक पावर भी है और अलग अलग तरीके से वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना बहुत जरूरी था और इस जो शिखर वार्ता के समय इस पे मुहर लग चुकी है कि हम जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे और इकट्ठे जो है इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बना के रखें।
1: ज्ञानेश्वर जी, अगर हम इस पूरे संयुक्त वक्तव्य को देखें, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को देखें, ऐसे समय में जब वैश्विक हालात काफी उथल पुथल हो रखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है ऐसा एजेंडा हमारा, या फिर भारत जापान संबंधों को और भी लंबा ले जाने के लिए खासतौर पर एक दशक की रणनीतिक रूपरेखा को यह तय करेगा?
2: मेरे ख्याल से ये हर साल प्रधानमंत्री के स्तर पर शिखर वार्ता होती है, इसका अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इस तरह से द्विपक्षीय वार्तालाप हर साल होना ये अपने आप में बहुत विशेष बात है।
1: ज्ञानेश्वर जी, आपने इस चर्चा में तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से

0: स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। अब समाचार। पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के

0: देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
2: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज राउंड ऑफ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के साथ जायजा। और सनद के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $1 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामिया नुकता नजर पर मबनी है जिसमें हर रियासत जिला और तिजारती हल्का को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के बालोतरा जाएंगे जहां वो तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के जिम्न में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनांद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजुर्बाती मरकज ओएसएटी का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल हैं जिन पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सच्चाई दयानतदारी और आला तरीन पेशावराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब प्रेस अपनी साख काम करता है, सवाल उठाता है और बाशऊर अवामी मुबाहसे की हौसला अफजाई करता है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह मामूल से कम बारिश और इसके असरात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत एलनीनो की वजह से मुल्क के बाज़ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। उन्होंने वजारत ज़राअत और तमाम मुतालिका वजारतों को चौकस रहने और रियासती हुकूमत के साथ राबते में रहने के लिए कहा है ताकि किसानों को मुनासिब फसलों के बारे में मशवरा दिया जा सके। दिफाई साजो सामान की हुसूलियाबी की कौंसिल डीएसी 52,000 करोड़ रुपए मालियत की कैपिटल हुसूलियाबी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मंजूर शुदा तजावीज फौज बहरिया और फजाइया की हरबाबंदी की सलाहियतों में इजाफा करेगी। भारतीय फौज के लिए एंटी अनमैंड एरियल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आकाश तरंग की खरीदारी के लिए मंजूरी दी गई है जो फौज की सफबंदियों को मौसर एंटी यूएवी तहफ्फुज फराहम करेगा। कौंसिल ने मैन पोर्टेबल टैंक मुखालिफ गाइडेड मिजाइल निजाम, दरमियानी दूरी तक जमीन से फजा में वार करने वाले मिजाइल हथियारों के निजाम نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے۔ بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بورن انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور

0: इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन निजाम के लिए जमीनी टेस्टिंग सहूलत के क्याम की मंजूरी दी गई है। उधर भारतीय फजाइया के लिए फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की खरीदारी की मंजूरी एजेंस निगरानी मवासलात और रिमोट सेंसिंग के काम अंजाम रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों
1: आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। की वजारत के हुक्काम के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम्स फीचर के रोल आउट के मामले पर उन्हें समन नोटिस भेजने के बाद हुई। जराय ने बताया कि वजारत के हुक्काम ने इस फीचर से मुतालिक सरकार की तशवीश के बारे में उन्हें आगाह किया। जराय ने मजीद कहा कि यूजर नेम्स फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने के लिए वक्त की मुकर्रा वक्त के मुताबिक अपना हतमी जवाब पेश करेगा। इसी दौरान जराय ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजारत के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इंस्टाग्राम के उन एड्स के मामले पर मेटा को समन भेजें जिनमें भारत में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल के मवाद को फरोग दिया जा रहा है। वजारत इस मामले पर मेटा से वजाहत तलब करेगी। हुकूमत ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से बीएटी बीएमएस इपोकायन और लॉसिजी एप्स हटाने के अहकाम जारी किए हैं। ये इकदाम सिक्योरिटी के मद्देनजर किया गया है। ये कदम इन इल्जाम के बाद उठाया गया है कि इन एप्लीकेशंस को ई रिक्शा समेत ई व्हीकल्स को रिमोट के जरिए नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इतलाती कौंसिल बीएआरसी को न्यूज और गैर न्यूज दोनों तरह के प्रोग्रामों में उस वक्त तक टेलीविजन रेटिंग्स की इशात को रोकने की हिदायत दी है जब तक कि टेलीविजन रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत उसके लाइसेंस की तजदीद नहीं हो जाती। डीफ्यूरियो ने आज कोहिमा में खेलों के बुनियादी ढांचे के 16 प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले 4 और रियासती फंड से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आला रियो ने सोशल मीडिया पर कहा कि रियासती हुकूमत ने मयारी बुनियादी ढांचा तैयार करके और आलमी मयार की तरबियती सहूलियात फराहम करके खेलों के शोबे को तब्दील करने की खातिर एक तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार की है जिससे खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद मिलेगी और नागालैंड और मुल्क का नाम रोशन होगा। पंचायत राज की वजारत ने 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करने की गरज से आज नई दिल्ली में रियासती पंचायत राज वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा कि 16वें मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स की तजवीज पेश की है। वजारत ने कहा देही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: अमली अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इनफरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश कौंसिल के तहत इकाला सतही माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। यह फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है जहां किसानों ने हालिया महीनों में तोतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुत्तला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9,000 अमवात रिकॉर्ड की गई। यह तादाद गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है, जिनसे कम अज कम 2,000 इजाफी अमवात का एंदिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि यह आदादोशुमार नामुकम्मल है और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुबतला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीव में रूसी हमलों से होने वाले नुकसान की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बमबारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई। इन शहर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल सुबह मियामी गार्डन्स में अर्जेंटीना का मुकाबला काबोवर्डी से और कंसास सिटी स्टेडियम में कोलंबिया का मुकाबला घाना से होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मराकश, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमरीका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के साथ राब्ते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहदा मुअत्तल रहेगा न होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हौसलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आई
1: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म चित चोर से। इसे गाया है येसुदास और हेमलता ने।
2: है 5,000 सुनहरे।

0: You're not.
1: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मंजिल से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े
3: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म उमराव जान से।

0: I saw that my PR.
1: अब जिस गीत को सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म परिचय से। गायक हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह। बोल गुलजार के हैं, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का सुनहरी यादें कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार सबिता राय को, राग नंद में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कलाकार सबिता राय को, राग नंद में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी। हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर मार्केट। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर

0: हर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहाँ संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

49 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह इन्हीं मीटरों पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।